आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है भोर सुहानी। जीवन में राहें उलझ जाएं और दिशा समझ ना आए तो प्रभु का नाम ही सही मार्ग दिखाता है।

और समय कह रहे कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और मैं आपसे लेती हूँ अनुमति, छोड़ जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 12वीं तिथि तदनुसार 2 मई 2026 सुबह के 5:53 और 32 सेकेंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए अब आपको जानकारी दें, आज आप आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पे कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। 6:10 का समय रहेगा प्रोग्राम अर्पण का। 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। 7:10 का समय रहेगा गोल्ड सुप्रभात का। 8:45 पे आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी।

10:30 का समय रहेगा प्रोग्राम दिल का मेलबॉक्स का। 11:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम तस्वीर।

12:10 का समय होगा प्रोग्राम घर आंगन का। दोपहर एक बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कलाकार बेमिसाल।

दोपहर 3:25 का समय रहेगा प्रोग्राम मन भावन का। 5:10 पर आप सुनेंगे गाते गुनगुनाते।

शाम 7:25 का समय रहेगा, प्रोग्राम सांझ ढलेगा। 8:10 पर आप सुनेंगे मधुरिमा। रात्रि 10:30 का समय रहेगा, प्रोग्राम हार सिंगार का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कर घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बैसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए, जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Election Commission has ordered for re-polling in 15 polling stations of West Bengal today. Re-polling will be held at 11 polling stations of Magrahat Pashchim Assembly constituency and 4 polling stations of Diamond Harbour Assembly constituency in the state. More from our correspondent.
2: The Election Commission of India has ordered re-polling in 11 booths in Magrahat Pashchim and 4 booths in Diamond Harbour Assembly constituencies in South 24 Parganas district of West Bengal. Commission has taken the decision after analyzing the reports of returning officers and observers. The re-polling will start on 7 a.m. in the morning and end on 6 p.m. in the evening. Kollan Laha reporting from Kolkata.
0: Voting in these polling stations was held on Wednesday in the second phase of assembly elections in West Bengal. Government has said that it is ensuring preparedness and taking all necessary steps to facilitate energy supply, maritime operations and support to Indian nationals amid the evolving West Asia situation. In a statement, Ministry of Petroleum and Natural Gas said that enforcement actions to curb hoarding and black marketing of LPG is continuing across the country. More than 2,300 raids were conducted across the country. It said that online LPG cylinder bookings increased to 98% on industry basis. Around 49.8 lakh domestic LPG cylinders were delivered against bookings of around 41.6 lakh LPG cylinders. Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri has said India expanded its crude oil sourcing base to 41 countries from 27 earlier as part of efforts to strengthen energy security during the global energy crisis. While speaking at the vibrant Gujarat Regional Conference in South Gujarat, he said long-term planning played a key role in managing the crisis. On boosting domestic production, the minister said orders were issued to maximize LPG lead at refineries and we increased our domestic production by 60%. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement, which came into force 4 years ago, has created a transformational opportunity for Indian farmers, MSMEs and other businesses. In a social media post, Mr. Goyal noted that bilateral merchandise ties between India and UAE have grown strongly, crossing $100 billion, with services trade also rising steadily and opening new markets and greater value. The minister also highlighted that expansion across key sectors like gems and jewellery, engineering goods, electronics and agriculture is delivering tangible gains. He underlined that the foreign direct investment inflows from the UAE and India's overseas investments further reflect the deepening economic linkages of the two nations. Field operations for the house listing and housing census under Phase 1 of Census 2027 commenced in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh yesterday. The Ministry of Home Affairs said the exercise will continue till 30th of this month, during which trained enumerators will carry out house-to-house data collection following the completion of the self-enumeration period in these regions. Meanwhile, the self-enumeration facility has also begun in the Municipal Corporation of Delhi area, Rajasthan, Maharashtra, Meghalaya and Jharkhand. The online facility will remain open till 15th of this month, after which house-to-house operations will be conducted from 16th of this month to 14th of next month. In Bihar, the 15-day self-enumeration period ends today and field operations will begin today and continue till 31st of this month. U.S. President Donald Trump has rejected Iran's latest proposal to end the ongoing conflict, casting doubt on prospects for a negotiated settlement and warning of the risk of further escalation. Iran submitted its revised offer through mediators, with state media confirming the handover. Trump acknowledged that Tehran had made strides in negotiations but said he remains dissatisfied with the terms on the table, stating that Iran is seeking concessions he cannot accept. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 7 wickets at Sawai Man Singh Stadium in Jaipur. Today, Chennai Super Kings will take on Mumbai Indians at M.H. Chidambaram Stadium, Chennai at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड। समय नोट कर लें, 6:11 और 57 सेकंड। स्टूडियो की घड़ी में यही समय हुआ है। भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण के साथ मैं हूँ आज सुनीता। नमस्कार, सुप्रभात।

भगवान बुद्ध ने कहा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यानी अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए अच्छी सोच रखना बहुत जरूरी है।

स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो।

6:32 वक्त हो चला है हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर शनिवार की सुबह सुनीता है आपके साथ और आप आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का।

भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश कर

करके देवताओं को स्थापित करते हैं, धर्म शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। हर एक अवतार जिस कारण होता है वो कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हेतु अनेक हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता। शिवजी ने पार्वती को श्रीहरि के दो द्वारपालों जय और विजय की कथा सुनाई, जो सनकादि ब्राह्मण के शाप के कारण हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्यक्ष के रूप में मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ तथा हिरण्यक्ष का वध प्रभु ने वराह का शरीर धारण करके किया, किंतु स्वयं प्रभु के द्वारा मारे जाने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। कालांतर में यही दोनों रावण तथा कुंभकर्ण नामक महाबली राक्षस हुए।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान और अब समय हो चला है कि हम जाने देश दुनिया का हाल और सुने समाचार, पहले संस्कृत, हिंदी और फिर अंग्रेजी में। तो आइए सुनते हैं समाचार और समाचारों के बाद ठीक 7:10 पर एक बार फिर सुनीता होगी आपके साथ एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम रहेगा गोल्ड सुप्रभात। तो फिलहाल समय है समाचार का, आइए सुनते हैं।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। निर्वाचनायोगेन पश्चिमबंगालस्य 15 मतदानकेन्द्रेषु पुनर्मतदानाय आदेशः प्रदत्तः। मगरहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्रस्य 11 केन्द्रेषु तथा डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्रस्य 4 मतदानकेन्द्रेषु

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान शुरू हो गया है। इन केंद्रों पर आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान

0: मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने के लिए अनुमति जारी कर दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों की लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को जांस्कर घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षत वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। राज्य में आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. The Election Commission has ordered for re-polling in 15 polling stations of West Bengal today. Re-polling is being held at 11 polling stations of Mogarhat Paschim Assembly Constituency and 4 polling stations of Diamond Harbour Assembly Constituency in the state. Voting in these polling stations was held on Wednesday in the second phase of assembly elections in West Bengal. Government has said that it is ensuring preparedness and taking all necessary steps to facilitate energy supply, maritime operations and support to Indian nationals amid the evolving West Asia situation. In a statement, Ministry of Petroleum and Natural Gas said that enforcement actions to curb hoarding and black marketing of LPG is continuing across the country. More than 2,300 raids were conducted across the country. It said that online LPG cylinder bookings increased to 98% on industry basis. Around 49.8 lakh domestic LPG cylinders were delivered against bookings of around 41.6 lakh LPG cylinders. Union Minister for Petroleum and Natural Gas, Hardeep Singh Puri, has said India expanded its crude oil sourcing base to 41 countries from 27 earlier as part of efforts to strengthen energy security during the global energy crisis. While speaking at the Vibrant Gujarat Regional Conference in South Gujarat, he said long-term planning played a key role in managing the crisis. On boosting domestic production, the minister said orders were issued to maximize LPG yield at refineries and the domestic production has been increased by 60%. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement, which came into force 4 years ago, has created a transformational opportunity for Indian farmers, MSMEs and other businesses. In a social media post, Mr. Goyal noted that bilateral merchandise ties between India and UAE have grown strongly, crossing $100 billion, with services trade also rising steadily and opening new markets and greater value. The minister also highlighted that expansion across key sectors like gems and jewellery, engineering goods, electronics and agriculture is delivering tangible gains. He underlined that the foreign direct investment inflows from the UAE and India's overseas investments further reflect the deepening economic linkages of the two nations. Field operations for the house listing and housing census under phase 1 of census 2027 commenced in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh yesterday. The Ministry of Home Affairs said the exercise will continue till 30th of this month, during which trained enumerators will carry out house-to-house data collection following the completion of the self-enumeration period in these regions. Meanwhile, the self-enumeration facility has also begun in the Municipal Corporation of Delhi area, Rajasthan, Maharashtra, Meghalaya and Jharkhand. The online facility will remain open till 15th of this month, after which house-to-house operations will be conducted from 16th of this month to 14th of next month. In Bihar, the 15-day self-enumeration period ends today and field operations will begin today and continue till 31st of this month. US President Donald Trump has rejected Iran's latest proposal to end the ongoing conflict, casting doubt on prospects for a negotiated settlement and warning of the risk of further escalation. Iran submitted its revised offer through mediators, with state media confirming the handover. Trump acknowledged that Tehran had made strides in negotiations, but said he remains dissatisfied with the terms on the table, stating that Iran is seeking concessions he cannot accept. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 7 wickets at the Sawai Man Singh Stadium in Jaipur. Batting first, Rajasthan Royals posted 225 for 6 in 20 overs, with skipper Riyan Parag scoring 90. Today, Chennai Super Kings will take on Mumbai Indians at M.H. Chidambaram Stadium, Chennai at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

हल्के बादल छाएंगे पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 24 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रहेगा। जी हाँ, ये है आज के मौसम का हाल। और ये गर्मी सिर्फ हमें नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी बेहाल कर रही है। थोड़ी सी छांव, खाना और पानी, बस इन्हें हमसे इतनी सी दरकार है। अब आप सोचिए कि आप इन बेजुबानों की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप हेल्प करना नहीं चाहते, नहीं कर पाते, तो भी अगर कोई कर रहा है तो उसके इस काम में खलल ना डालें। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इनका भी ख्याल रखें, जिससे कि ये जो आपके लिए करते हैं बिल्कुल चुपचाप, जिसका आपको पता भी नहीं चलता, तो उसका एहसास आपको होना बहुत जरूरी है। गोल्ड सुप्रभात एंजॉय करते रहिए सुनीता के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM गोल्ड पर। और ये गाना है फिल्म मधुमति से लता जी की आवाज में। चलिए साथ मिलकर सुनते हैं और एंजॉय करते हैं।

अब डालते हैं एक नजर उन प्रोग्राम्स पर जिन्हें आप आज एफएम गोल्ड पर सुन पाएंगे। सुबह 10:30 बजे दिल का मेलबॉक्स, जयपुर राजस्थान की झलक प्रोग्राम तस्वीर में 11:10 पर, और दोपहर 1:10 पर कलाकार बेमिसाल में आज एक्ट्रेस नरगिस जी की बातें होंगी। तो अब अगला गाना मेरे पास है फिल्म तीसरी मंजिल और आवाज आशा।

0: आशा भोंसले जी और मोहम्मद रफी साहब का ये डुएट अभी आपने एंजॉय किया आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर म्यूजिकल दिल्ली में। एक बार फिर सुनीता होगी आपके साथ ठीक 8:45 पर। लेकिन फिलहाल समय है आज सवेरे का, जो कि प्रस्तुत करता है समाचार सेवा प्रभाग।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: सुप्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आकाशवाणी स्टूडियो में आज की हसीन सुबह से आगाज करते हैं कार्यक्रम का और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
1: नमस्कार फरहत एंड टू यू एंड आवर लिसनर्स गुड मॉर्निंग गुड डे एवरीबॉडी। वी वेलकम यू अलोंग दिस इज आज सवेरे वेयर वी शेयर द लेटेस्ट नेशनल इंटरनेशनल न्यूज मेट्रो सिटी अपडेट्स एंड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू टुडे। टुडे इज 2nd of May 2026 and there is a quote that I remember reading today. As Charles Dickens once said, "The sun himself is weak when he first rises and gathers strength and courage as the day gets on." So reflecting on this quote, listeners, get up and move, of course, while listening to us only. So the sun's been up for a while, it's had a head start, and now it's your turn to make it count, make each day count.
0: बिल्कुल शगुन, फिलहाल तो लेकिन देखा जाए तो जो सूरज है अपने शबाब पर है, क्योंकि गर्मी जो है वो फिर से

0: हो गई है, बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ा है, एक बार फिर
1: बिल्कुल,
0: तो इसलिए अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। और हाँ, जैसा कि आपने कहा कि आगे बढ़िए और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो
1: काउंट योर ब्लेसिंग्स।
0: बिल्कुल,
1: सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस।
0: जी, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं निर्वाचन आयोग से जुड़ी खबर से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। इनमें मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्र शामिल हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और आयोग ने बताया है कि संबंधित मतदान अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ये निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को इन मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ था। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग को अमान्य घोषित किया है। आयोग ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी पत्र लिखा है।
1: Reserve Bank of India has said that 98.47% of 2,000 rupees denomination banknotes in circulation have been returned nearly 3 years after it announced their withdrawal. The central bank had declared the withdrawal of 2,000 rupees notes on 19th May 2023 as part of its currency management exercise. So at that time, notes worth 3.56 lakh crore rupees were in circulation. So this has now declined to 5,451 crore rupees as of 30th of last month. The facility to exchange 2,000 rupees notes has been available at 19 RBI issue offices since the withdrawal announcement.
0: और अब जनगणना की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना शुरू हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
2: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी, जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: The government has said that it is ensuring preparedness and taking all necessary steps to facilitate energy supply, maritime operations and support to Indian nationals amid the evolving West Asia situation. In a statement, Ministry of Petroleum and Natural Gas said that enforcement actions to curb hoarding and black marketing of LPG is continuing across the country. More than 2,300 raids were conducted across the country. It said that online LPG cylinder bookings increased to 98% on industry basis. Around 49.8 lakh domestic LPG cylinders were delivered against bookings of around 41.6 lakh LPG cylinders.
0: और शगुन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही और श्री पुरी ने बताया कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है।
1: Stretching our boundaries a little, U.S. President Donald Trump has rejected Iran's latest proposal to end the ongoing conflict, casting doubt on prospects for a negotiated settlement and warning of the risk of further escalation. Iran submitted its revised offer through mediators, with state media confirming the handover. Trump acknowledged that Tehran had made strides in negotiations but said he remains dissatisfied with the terms on the table, stating that Iran is seeking concessions he cannot accept. He also described Iran's leadership as very disjointed, signaling continued mistrust between the two sides. Iranian state-linked media, including Fars News Agency, reported that the country's leadership remains fully engaged in overseeing the countering speculation of internal instability. The diplomatic impasse comes amid intensifying violence elsewhere in West Asia.

0: और बात की जाए आईपीएल क्रिकेट की, तो आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के.एल. राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
1: Now, Badminton Thomas Cup. Indian men's badminton team will face France in the semi-finals of this Thomas Cup 2026 at Horsens in Denmark today. India advanced to the semi-finals of the tournament after dominant 3-0 win over Chinese Taipei in the quarter-finals. Lakshya Sen gave India the perfect start, saving 2 match points to beat world number 6 Xu Tianxian 18-21, 22-20, 21-17 in a thrilling opener. So the doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty then extended the lead with a hard-fought 23-21, 19-21, 21-12 win over Xiu Xiang Shei and Wang Chi Lin. India sealed the tie when Ayush Shetty held his nerve to beat Lin Chunyi, confirming a comprehensive team victory. The Indian women's team, led by PV Sindhu, failed to make it past the group stage as they were eliminated by China in the Uber Cup 2026.
0: और श्रोताओ, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। रुक करते हैं चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के समाचारों का। तो शगुन, सबसे पहले चेन्नई में क्या है खास?
1: यस फरहत, बिगिनिंग विद चेन्नई, वेयर सदर्न रेलवेज चेन्नई डिवीजन हैज सरपास्ड इट्स पार्सल रेवेन्यू टारगेट ऑफ 74.22 करोड़ फॉर 2025-26, earning a record 74.56 crore and then reinforcing its position as one of the Indian Railway's leading freight and logistics hubs. The division transported 1,288 tons of tyres from Korukupet and Tambaram to destinations across the country. It also partnered with the Central Warehousing Corporation to run a parcel cargo express train carrying branded tyres to Auckland. This it did by Central Warehousing Corporation. Southern Railway has also commissioned new parcel offices at Chengalpet and Jolarpet, while additional parcel terminals have been proposed to Royapuram, Tada and Mundiyapakkam.
0: और अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में आज 3 महत्वपूर्ण खबर है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल स्वगणना के माध्यम से जनगणना में अपना विवरण दर्ज किया। राजधानी दिल्ली के सभी वार्डों में जनगणना 2027 अभियान आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने बताया कि ये डिजिटल पहल नागरिकों को अपने घर की जानकारी सीधे जमा करने की सुविधा देती है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये प्रक्रिया आसान और सुरक्षित है, जिससे प्रत्येक नागरिक सहजता से इस अभियान से जुड़ सकता है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उज्ज्वला योजना आज करोड़ों महिलाओं के जीवन में बड़े परिवर्तन का आधार बन चुकी है। 2016 में शुरू हुई इस योजना ने कल 1 दशक पूरे कर लिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना ने महिलाओं को धुएं और बीमारियों से बचाकर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और सम्मान का उपहार दिया। उन्होंने कहा कि रसोई के पुराने संघर्षों को पीछे छोड़कर स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ती नारी शक्ति की ये तस्वीर देश में हो रहे सच्चे महिला सशक्तिकरण का प्रमाण है। और राजधानी दिल्ली में कल कैच द रेन अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ये अभियान जल संरक्षण को सशक्त बनाने और वर्षा जल संचयन को जन भागीदारी का संकल्प बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि श्रीमती सरकार द्वारा 50,000 तक की सब्सिडी, पानी के बिल में 10-15% तक की छूट और निःशुल्क तकनीकी सहायता जैसे कदम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
1: Farhat, we'll focus now on Bengaluru. Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar has said that efforts are underway to restructure KR Market with proper utilization of this historic building. He was speaking after inaugurating the revamped management of the ground floor parking complex at KR Market in Bengaluru yesterday. The senior minister said that private parking will be allowed alongside government parking facilities. He added that following repairs at KR Market and the relocation of vendors, the market has been made more usable. Stating that development does not happen overnight, he added that all legislators in Bengaluru will be taken into confidence for the city's development. He also spoke of a plan to construct about 138 kilometers of elevated structures and underpasses to ensure smoother vehicular movement. The elevated structures, he then added, that they will help prevent the encroachment of roadside properties. This was the update I had from Bengaluru.
0: और शगुन, मुंबई का रुख कर लेते हैं। अब नीट यूजी 2026 परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की सुविधा के लिए सेंट्रल रेलवे ने कल दिन के समय मेगा ब्लॉक न चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि आवश्यक इंजीनियर

0: इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए रेलवे 2 और 3 मई को, माफ कीजिएगा, रेलवे 2 और 3 मई को मध्य रात्रि मेगा ब्लॉक चलाएगा और ये ब्लॉक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और विद्या विहार स्टेशनों के बीच मेन लाइन पर, साथ ही ठाणे और वाशी नेरुल के बीच ट्रांस हार्बर लाइन पर लागू रहेगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो संशोधित ट्रेन समय सारणी देखें और आवश्यक यात्रा व्यवस्था पहल से करें। वहीं महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड इस वर्ष फरवरी मार्च में आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम आज घोषित करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार परिणाम ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। छात्र परिणाम जारी होने के बाद बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं। वहीं ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों के लिए एक समर्पित बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित महालक्ष्मी सरस बिक्री और प्रदर्शनी 2026 का उद्घाटन आज मुंबई के बांद्रा कोला परिसर स्थित MMRDA ग्राउंड में किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के अधीन महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में करेंगे। ये प्रदर्शनी आज से 14 मई तक आम जनता के लिए खुली रहेगी।
1: Now turning our attention to Hyderabad, the Telangana government has introduced a new centralized procurement policy to improve accountability in educational material distribution. Chief Minister A. Revanth Reddy has set June 15th as the deadline to supply all necessary educational items to students across the state. In a review meeting, the Chief Minister emphasized that students perform better when they receive uniforms, notebooks and other educational materials on time. He pointed out that the old system had many problems. The new centralized system aims to stop these issues, and officials have been strictly warned that quality materials must be supplied without any compromise. To ensure proper distribution, the government will appoint nodal officers at the mandal level. Officials must verify that every student receives complete materials and gather feedback about quality. The government has also decided to form a coordination committee involving SC, ST, OBC, minority and education departments to work together for this initiative.
0: और पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर एक अपील पर तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की विशेष पीठ का गठन किया है। याचिका में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के संबंध में 4 मई को मतगणना केंद्रों पर केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। श्रोताओ, वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का, तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। जी बिल्कुल, आज आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। न्यूनतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मुंबई में आज दोपहर या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं कोलकाता में बारिश के साथ आंधी आने की आशंका है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: If I talk about Chennai, it is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 29 degrees Celsius and maximum will be around 38 degrees in Chennai. Bengaluru is expected to have rain or thunder showers and they would occur towards afternoon or evening. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and the maximum temperature will be around 35 degrees Celsius in Bengaluru. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky and there is a possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will be, minimum temperature will be around 25 degrees and maximum temperature will be around 41 degrees Celsius in Hyderabad Farat.
0: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो शगुन इतिहास में सबसे पहले क्या है खास?
1: Well, yes, today, Farat, let's tell our listeners that it's World Tuna Day. And this day, it's observed annually to highlight the importance of tuna and also promote sustainable fishing practices across the globe. Well, sharing the theme for this year, it's advocating for tuna conservation. And this theme, it focuses on the urgent need to manage tuna stocks sustainably as they are vital for, number one, global food security, number two, economies, number three, marine ecosystems. The day draws attention to threats like overfishing, also climate change, encouraging governments and industries to adopt responsible fishing practices.
0: बिल्कुल शगुन, और ट्यूना मछली के बारे में कहा जाता है है कि ये समुद्र की सबसे मतलब महत्वपूर्ण और महंगी मछलियों में से एक है और काफी बड़ी होती है, मोटी होती है। हम बता दें अपने श्रोताओं को जिनको नहीं मालूम है। जी बिल्कुल। और अगर आप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, प्रशांत और अटलांटिक महासागर की तरफ रुख करेंगे तो

0: इस तरह की मछलियां जो है वो वहां पर मिल जाती हैं।
1: राइट, एंड ट्यूना इज वन ऑफ देम, एज यू आर आल्सो टेलिंग लिसनर्स, इट्स मोस्ट कमर्शियली वैल्यूएबल फिश स्पीशीज विद मिलियंस ऑफ टन्स इट्स हार्वेस्टेड एनुअली, एंड दिस एक्चुअली मेक्स इट्स कंजर्वेशन क्रिटिकल फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। सो ट्यूना प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पीपल्स लाइव्स एंड इट सपोर्ट्स लाइवलीहुड्स, एम्प्लॉयमेंट एंड न्यूट्रिशन फॉर मेनी कोस्टल कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। So that's why protecting tuna stocks not only ensures economic stability for millions, but also helps maintain healthy oceans and thereby balanced marine ecosystems. So we were telling you about World Tuna Day.
0: बिल्कुल, और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। और सबसे पहले शगुन 1926 में क्या है खास?
1: Exactly, The Adventures of Prince Ahmed. It was directed by German animator Lothar Reiniger, using intricate cutout silhouettes, had its first public screening in Berlin, and it stands today as the oldest surviving animated feature film. Now, Farhat, in 1952. First commercial jet airliner service, British Overseas Airways Corporation, BOAC, introduced passenger flights with the de Havilland Comet, ushering in jet age travel. In 1986, American explorer Anne Bancroft reached the North Pole by dog's sled, officially becoming the first woman in history to travel across the ice to the pole by dog sled.
0: और 1997 की बात कर लेते हैं। अब ब्रिटेन में 18 वर्षों के बाद लेबर पार्टी सत्ता में आई और उसके नेता टोनी ब्लेयर 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। वहीं 1999 में मिरिया मुस्कोस ओपनामा की प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई। और सन 2004 में मारेक बेलका पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। वहीं सन 2010 में सेबी का प्राथमिक पूंजी बाजार में नए इश्यू की खरीद के लिए आवेदन करते समय संस्थागत निवेशकों को भी खुदरा निवेशकों की तरह शत प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश प्रभावी हो गया।
1: In 2011, US operation against Osama bin Laden was conducted in Abbottabad and the operation was a major global counter-terror milestone.
0: और अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सत्यजीत राय के बारे में। ये 20वीं शताब्दी के विश्व की महानतम फिल्मी हस्तियों में से एक थे, जिन्होंने यथार्थवादी धारा की फिल्मों को नई दिशा देने के अलावा साहित्य हो या फिर चित्रकला जैसी अन्य विधाओं को अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।
1: Well, yes, Satyajit Ray, a pioneer of Bengali cinema. Well, we know him for his very real portrayal of Indian society. His journey, though, began in 1950s with his debut film, Pathar Panchali, which went on to win multiple international awards as well. So, Farhat, he then continued to make masterpieces, naming a few, Charulata, the Apu trilogy, throughout his career. And his impact on cinema is undeniable, right?
0: Bilkul Shagun, Vishwa mein Bharatiya filmon ko nahi पहचान दिलाने वाले सत्यजीत राय भारत रत्न के अतिरिक्त पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं। इसके अलावा विश्व सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए सत्यजीत राय को मानद ऑस्कर अवार्ड से भी अलंकृत किया जा चुका है। तो एक दूरदर्शन ने इनका साक्षात्कार जो है वो लिया था, तो आइए सुन लेते हैं।
2: I had been fascinated by the Mahabharata and I'm still fascinated by Mahabharata, but I don't think the whole of Mahabharata can be tackled. So perhaps a segment of an epic, a segment of Mahabharata I'd do using our tradition of stylization, perhaps using the Kathakali. I really haven't got a very clear notion of what I want to do, but I definitely do want to do an epic, a story which everybody knows from beforehand. That is something which I want to do.
1: Wow, how great. So he has influenced generations of filmmakers and also continues to inspire them even today, Farhat, right? Today we are also remembering Leonardo da Vinci, the true genius who graced this world with his presence, and he is among the most influential artists in history, having left a significant legacy, well, not only in the realm of art but in science as well, so each discipline informing his mastery of the other. Da Vinci lived in a golden age of creativity, and among such contemporaries like Raphael and Michelangelo, and contributed his unique genius to virtually everything that he touched. So one of which is Athens in the Age of Pericles. You can find it on the internet. Renaissance Italy is a summit in human history. And so today no name better seems to symbolize Renaissance age than Leonardo da Vinci. So he not only developed his skill in drawing, in painting and sculpting during his apprenticeship,

0: but through others working in and around the studio, he picked up knowledge in diverse fields, which include chemistry, architectural drafting as well. And in 1473, he was more than halfway through his studies with Verrocchio. He completed landscape drawing of Santa Maria del Neve, a pen and ink depiction of the Arno River Valley. And this actually is the earliest work that is clearly attributable to Leonardo da Vinci.
1: बिल्कुल. और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध पत्रकार और शहीदों की स्मृति में साहित्य प्रकाशन के प्रेरणा स्रोत रहे बनारसीदास चतुर्वेदी को. उनकी गणना अगर बात की जाए तो अग्रण्य पत्रकारों और साहित्यकारों में की जाती है. हिंदी साहित्य के प्रति अनुराग और लेखक की अभिरुचि के लक्षण में पत्रकार बनने से पहले दिखाई दे चुके थे. सन 1914 से वे प्रवासी भारतीयों की समस्याओं पर लिखने लगे. बनारसीदास 12 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे. उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया. विशाल भारत छोड़ने के बाद बनारसीदास ने टीकमगढ़ से मधुकर का संपादन शुरू किया. ओरछा नरेश इनका विशेष आदत करते थे और हिंदी प्रेमी भी थे. बनारसीदास के बारे में कहा जाता है कि वे वास्तव में जीवन भर पढ़ने और लिखने के अतिरिक्त वो कुछ नहीं उन्होंने किया. और उनका अध्ययन जो था वो हिंदी, संस्कृत और भारतीय साहित्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अंग्रेजी के माध्यम से उन्होंने पाश्चात्य साहित्य का भी गहरा अध्ययन किया था. उनकी अपनी शैली थी जो बातचीत की भाषा के निकट होते हुए भी ओजपूर्ण और प्रांजल है और आकर्षक भी रही. निबंध की बात की जाए या फिर रेखा चित्र की, वर्णन उनके लिए एक लेख शैली विशेष रूप से उपयुक्त है. और उनकी रचनाओं में रेखा चित्र, साहित्य और जीवन, सत्यनारायण कवि रत्न, भारत भक्त, एंड्रयूज और संस्मरण आदि काफी प्रसिद्ध भी हुए.
0: सो फरहत, टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग के पुष्पनाथ, द ऑथर. We know him for his contributions to detective fiction writing in Malayalam. So he has been rightly called the father of Malayalam fiction. He incorporated ideologies and supernatural elements creatively in horror story writing. And he primarily focused on plausible crime stories that motivated readers to become detectives themselves and then solve the mysteries. In 1968, he released his first novel, which was Chuvanna Manushyan. This is a scientific thriller, and then went on to write over 350 works, and this includes mainstream novels, also includes science fiction and horror fiction during the 1970s and 1980s.
1: और अब हम याद कर रहे हैं भारत के पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी विल्सन जोन्स को. उनका पूरा नाम था विल्सन लायनल गार्टन जोन्स, और वो स्वतंत्र भारत के प्रथम खिलाड़ी रहे जिन्होंने बिलियर्ड्स में विश्व चैंपियनशिप मुकाबला जीता. उन्होंने 1958 और 1962 में दो बार विश्व चैंपियनशिप जीती. इन्हें 1962 में अर्जुन पुरस्कार, 1965 में पद्मश्री, 1990 में महाराष्ट्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार और 1996 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया. दो बार विश्व चैंपियन रहे विल्सन जोन्स 12 बार बिलियर्ड्स के राष्ट्रीय चैंपियन भी रहे और 5 बार स्नूकर के राष्ट्रीय चैंपियन रहे.
0: सो टुडे लिसनर्स, वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग पंडित वसंतराव देशपांडे. Well, the renowned Indian Hindustani classical music vocalist, a great performer of Marathi Natya Sangeet, on his birth anniversary today, he learned from several gurus and he thereby refused to tie himself down to a single school of schooling. He started his musical training in his hometown Nagpur, and then he also followed Suresh Babu Mane of Kirana Gharana. The most important influence on him was Dinanath Mangeshkar. So Vasantrao was the sole true inheritor of Dinanath's mercurial style of singing, and well, it is important to mention here that his renditions of rags such as Marwa and Natbhairav, Kaus, Shri Kalavati, and they had a quality to them that kept people interested. So without further ado, let's listen to his voice.

0: और श्रोताओं, आज ही के दिन हमें अलविदा कहा आधुनिक असमिया साहित्य के शुरुआती दौर के भारतीय लेखक, कवि, इतिहासकार, शिक्षक और असम के भाषाविद हेमचंद्र गोस्वामी ने। इन्होंने 1920 में तेजपुर में आयोजित असम साहित्य सभा के चौथे अध्यक्ष के रूप में वो रहे और उन्होंने ब्रिटिश असम में अतिरिक्त सहायक आयुक्त रूप में अपनी सेवाएं दी। भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत साल 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया।
1: Well, today it's also David Beckham's birthday, the footballer. Well, primarily a right midfielder, and we know him for his range of passing, crossing ability, set piece taking. Well, footballers and football lovers will be getting this easily. Beckham is considered one of the best players of his generation and one of the greatest set-piece specialists of all time. He made 115 career appearances in total, appearing at three FIFA World Cups in 1998, 2002, 2006 as well, and UEFA European Championships in 2000 and 2004 as well. Well, Beckham was the runner-up in the Ballon d'Or in 1999, and he has been a UNICEF ambassador since 2005. Along with being inducted into the English Football Hall of Fame in 2008 and the Premier League Hall of Fame in 2021.
0: और आज ही के दिन जन्म हुआ था अवकाश प्राप्त आईएएस अधिकारी होने के साथ साथ हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक, नाटककार, नाट्यकर्मी, निर्देशक और चर्चित इतिहासकार दया प्रकाश सिन्हा का।
1: वेल, वी सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। वी आर रिमेम्बरिंग लॉरेंस हार्ट, द इन्फ्लुएंशियल लिरिसिस्ट हु अलोंग साइड कंपोजर रिचर्ड रॉजर्स ही फॉर्म्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सॉन्ग राइटिंग पार्टनरशिप्स इन द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिकल थिएटर। द कोलैबोरेशन बिगन इन अर्ली 1920s, leading to notable productions such as The Garrick Gaieties, Dearest Enemy as well, and the song that you're listening to in the background, this is by Ella Fitzgerald, This Is You Took Advantage of Me.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
1: पश्चिम बंगाल के दो निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज

0: सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में है। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
2: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी जिसके बाद इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: We diversified our sources.
4: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देश भर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर 5451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
5: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कुत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कुत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चेउ हिस्यांग चिए और वांग चेलिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुनयी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है, आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिंदुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोक सत्य के शब्द हैं मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। रीपोलिंग बिगिंस इन 15 पोलिंग स्टेशंस ऑफ 2 असेंबली कंस्टिट्युएंसीज इन वेस्ट बंगाल। फील्ड ऑपरेशंस फॉर हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस अंडर फेज 1 कमेंस इन 5 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. US President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC Under 17 Women's Asian Cup after 21 years in China. Repolling has started in 15 booths in 2 constituencies in West Bengal from 7 in the morning today. More details on this from our correspondent.
3: Among these, 11 are in Pashchim Ograhat and 4 booths are in Diamond Harbour Assembly constituency. Election Commission has ordered repolling after irregularities were reported. Meanwhile, in another development, a special bench has been set up by Supreme Court to urgently hear the Trinamool Congress's appeal against the Calcutta High Court order that restricted counting centre staff to central government employees only. The bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Jayamallu Bagchi will take up the matter today. Since vote counting scheduled for Monday, the Trinamool Congress requested an

0: by 7 wickets at the Sawai Mansingh Stadium in Jaipur last night. Batting first, Rajasthan Royals posted 225 for 6 in 20 overs, with skipper Riyan Parag scoring 90. In reply, Delhi Capitals overhauled the target for the loss of 3 wickets in 19.1 overs, riding on KL Rahul's 75 off 40 balls. He was named player of the match. And now for a look at today's newspapers. It's over to Shakun Chopra.
1: Thank you, Sarabjeet. Most newspapers today open with surge in fuel costs. The Pioneer notes, steep LPG price hike to hurt all sections. The Indian Express writes, polls over, energy prices soaring due to West Asia crisis, fuel rate hike on table. Talking about the April highs, GST revenue hits record rupees 2.43 lakh crore in April, writes The Hindu. Lockdown in strong room areas after TMC-BJP clash, writes the Times of India. The Hindustan Times under the caption, Labour Day, heat awareness, the cost of labour in a simmering city, carries a picture of workers creating murals, depicting problems they face while working in the heat. The Asian Age mentions, Trump says Iran dying to make a deal, rules out fresh airstrikes. The Economic Times on its editorial page talks of a cobot experiment in Japan. Travelers with poor experience of airport baggage handling will be particularly interested in Japan Airlines' experiment with giving jobs to robot at Tokyo's Haneda Airport. Trials beginning this month will use Unitree's humanoid robots to move baggage, cargo and equipment across the airport. Depending on how they perform, their role could be widened to other ground handling services like cleaning aircraft cabins. If the experiment is successful, it will offer a solution to Japan's aging population and a surge in tourism. And finally, the Financial Express takes note, placement season seeing higher number of new age companies as traditional tech firms scale down recruitment. Startups cushion IT hiring slow down. And with that, it's back to you, Sarabjeet.
0: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Repolling begins in 15 polling stations of two assembly constituencies in West Bengal. Field operations for house listing and housing census under phase 1 commence in 5 states and 1 union territory. IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. US President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC Under 17 Women's Asian Cup after 21 years in China. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरी बंगाल में दो असेंबली हलकों के 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा वोट डालने का अमल शुरू हो गया है। 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में पहले मरहले के तहत घर घर जाकर मकानात की फहरिस्त तैयार करने और इनकी गिनती करने का काम शुरू हो गया है। आईएमडी ने शिमाल मशरकी खित्ते और जनूबी जजीरानुमा में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी तनाजे को खत्म करने की ईरान की तजवीज मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान ऐसी रियायतें चाहता है जिन्हें वो कबूल नहीं कर सकते। बैडमिंटन में डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल्स में भारतीय मर्दों की टीम फ्रांस के साथ खेलेगी। और फुटबॉल में भारतीय खवातीन की टीम चीन में 21 साल बाद 17 साल तक की उम्र के खवातीन के एएफसी एशियाई कप में अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के लिए तैयार है। खबरें तफसील से। चुनाव कमीशन ने मगरी बंगाल के 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग के अहकाम जारी किए हैं। रियासत में मगराहट पश्चिम असेंबली हलके के 11 पोलिंग स्टेशनों और डायमंड हार्बर असेंबली हलके के 4 पोलिंग स्टेशनों पर आज दोबारा पोलिंग होगी। पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। चुनाव कमीशन ने कहा है कि यह फैसला मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान और मुशाहिदीन की जानिब से मौसूल रिपोर्टों की बुनियाद पर किया गया है। مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ان پولنگ اسٹیشنوں پر بدھ کے روز ووٹ ڈالے گئے تھے۔ رپورٹوں کی بنیاد پر کمیشن نے ان پولنگ اسٹیشنوں پر ہونے والے چناؤ کا کل عدم قرار دیا۔ کمیشن نے اس سلسلے میں مغربی بنگال کے اعلی چناؤ افسر کو تحریر بھیجی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: مغربی بنگال کے دو حلقوں کے 15 پولنگ مراکز پر دوبارہ پولنگ کا عمل آج صبح 7 بجے شروع ہو گیا۔ چناؤ کمیشن نے بے ضابطگیوں کی اطلاعات ملنے کے بعد ان مراکز پر دوبارہ پولنگ کے احکامات جاری کیے تھے۔ اس دوران ایک اور واقعے میں سپریم کورٹ نے ترمنول کانگریس کی کولکتہ ہائی کورٹ کے خلاف اپیل کی فوری سنوائی کے لیے خصوصی بینچ قائم کی ہے۔ کولکتہ ہائی کورٹ نے گنتی کے مراکز پر صرف مرکزی حکومت کے ملازمین کے ذریعے گنتی کرائے جانے کا حکم دیا تھا۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس جے مالا باغچی پر مشتمل بینچ آج صبح 10:30 پر اس معاملے کی سنوائی کرے گی۔ ووٹوں کی گنتی کا عمل پیر کو کیا جائے گا۔ اس دوران ترمنول کانگریس نے معاملے کی فوری سماعت کی درخواست کی تھی۔ جمعرات کو کولکتہ ہائی کورٹ کے جسٹس کرشنا راؤ نے ترمنول کانگریس کی ارضداشت کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا تھا کہ عدالت گنتی کے عمل کی تقرری کے بارے میں انتخابی کمیشن کے فیصلے میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ اس کے جواب میں پارٹی نے فوری طور پر سپریم کورٹ کا رخ کیا۔ کل چھٹی ہونے کے باوجود سپریم کورٹ نے اس معاملے کی بلا تاخیر سنوائی کو یقینی بنانے کے لیے ایک خصوصی بینچ تشکیل دی۔ کولکتہ سے سندیپون داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
2: مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے کے تحت آندھر پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں کل سے مکانات کی فہرست بندی اور مکانات کی گنتی کے عمل کے لیے فیلڈ آپریشنز شروع ہو گئے ہیں۔ ان ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں میں از خود شماری کے عمل کے مقررہ 15 دن مکمل ہونے کے بعد یہ کام شروع ہوا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: امور داخلہ کی وزارت کے مطابق یہ عمل اس ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اس دوران تربیت یافتہ عملہ گھر گھر جا کر اعداد و شمار اکٹھا کرے گا۔ مردم شماری 2027 کے تحت از خود شماری کی سہولت دلی میونسپل کارپوریشن کے علاقے راجستھان، مہاراشٹر، میگھالے اور جھارکھنڈ میں کل سے شروع ہو گئی۔ یہ آن لائن سہولت اس ماہ کی 15 تاریخ تک جاری رہے گی، جس کے بعد 16 مئی سے 14 جون کے اور ان ریاستوں اور مرکز کے درمیان کے زیر انتظام علاقوں میں گھر گھر جا کر مکانات کی فہرست بندی کا عمل انجام دیا جائے گا۔ مردم شماری 2027 کے لیے اپنائے گئے ڈیجیٹل طریقے کے حصے کے طور پر اب تک تقریباً 82 لاکھ گھروں نے سرکاری پورٹل SE.census.gov.in کے ذریعے خود شماری کی سہولت سے استفادہ کیا ہے۔ شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
2: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ بھارت نے خام تیل کے وسیلے کی بنیاد کو 41 ملکوں تک توسیع دے دی ہے۔ پہلے ان ملکوں کی تعداد 27 تھی۔ یہ توسیع توانائی کے عالمی بحران کے دوران توانائی کی یقینی فراہمی کو مستحکم بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ جنوبی گجرات میں درخشاں گجرات علاقائی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طویل مدتی منصوبہ بندی نے بحران سے نمٹنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ گھریلو پیداوار میں اضافہ کرنے کے بارے میں جناب پوری نے کہا کہ ریفائنریز میں ایل پی جی کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور ہم نے گھریلو پیداوار میں 60% تک اضافہ کر دیا ہے۔ یہ پیداوار پہلے 36,000 میٹرک ٹن روزانہ تھی، جبکہ اب یہ پیداوار 54,000 میٹرک ٹن روزانہ ہو گئی ہے۔ جناب پوری نے عالمی قیمتوں میں اضافے سے اپنے صارفین کو محفوظ رکھنے کے لیے کیے گئے اقدامات کا بھی ذکر کیا۔
5: We diversified our sources.
6: ہم نے اپنے سروتوں میں وویدھتا لائی ہے۔ کچے تیل کی خرید اب 27 دیشوں سے بڑھ کر 41 دیشوں تک ہو گئی ہے۔ ہم نے مدھیہ پورو کے علاوہ امریکہ، ناروے اور الجیریا سے ایل پی جی کی خرید شروع کر دی ہے۔ بھارت نے بہت تیزی سے پرگتی کی ہے۔ ریفائنریوں میں ایل پی جی اتپادن کو ادھکتم کرنے کے لیے آدیش جاری کیے گئے ہیں اور ہم نے اپنے گھریلو اتپادن میں 60% کی وردھی کی ہے۔
5: Our domestic production by 60%.
2: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاری تنازع کو ختم کرنے کی ایران کی تازہ ترین تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے مذاکرات پر مبنی ایک ہلکے منظرنامے پر شک کا اظہار کیا ہے اور مزید کشیدگی کے خطرے کا انتباہ دیا ہے۔ ایران نے اپنی اثر نو پیشکش سالسوں کے ذریعے دی تھی، جس کی تصدیق سرکاری میڈیا نے کی۔ ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ ایران نے مذاکرات میں پیش رفت کی ہے، البتہ انہوں نے کہا کہ وہ پیش کی گئی شرائط سے مطمئن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایسی رعایتیں چاہتا ہے جو وہ قبول نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایران کی قیادت کو بے ربط قرار دیا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان لگاتار غیر اعتمادی کا اشارہ مل رہا ہے۔ फारस खबर एजेंसी समेत ईरान के सरकारी राबते वाले मीडिया ने बताया है कि मुल्क की क्यादत अंदरूनी गैर इस्तेहकाम की कयास आराइयों से निमटने की निगरानी में पूरी तरह मसरूफ है। यह सिफारती तातुल लबनान में तशद्दुद में इजाफा हो जाने के दौरान पेश आया है। लबनान में इसराइल के हमलों में एक ही दिन में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की इत्तला है, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं, जिससे अमरीका की सालिसी वाले पिछले महीने के जंगबंदी मुआहिदे के खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इन हमलों में जनूबी शहर सूर में शहरी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया, जबकि कई सरहदी कस्बों में लोगों से इलाके को खाली करने के अहकाम जारी किए गए। हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले किए हैं, जिनमें एक ड्रोन हमला भी शामिल है, जिसकी वजह से शिमाली इलाके में इसराइली फौजी जख्मी हो गए। लबनान में इस सरहदी जंग में अभी तक 2000 से ज्यादा लोग हलाक और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, सिक्किम और ज़ैली हिमालयाई मगरी बंगाल में आज शदीद से शदीद तर बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला और माहे में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने अलबत्ता साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक और तमिलनाडु में आज गर्म मरतूब मौसम रहने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने पेशगोई की है कि जम्मू कश्मीर में आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहेगा और अगले तीन दिन में गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। महकमे ने एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें बारिश और तेज हवाओं के मद्देनजर इस दौरान किसानों से कहा गया है कि वो खेतों में अपना कामकाज मुअत्तल रखें। वंदे भारत एक्सप्रेस ने आज से जम्मू और कश्मीर वादी के दरमियान मुसलसल रेल खिदमात बाजाब्ता तौर पर शुरू कर दी हैं। सुबह 6:20 पर यह रेलगाड़ी जम्मू से रवाना हुई, जो इस खित्ते में रेल राब्तों को मजीद बेहतर करने की समत एक अहम कदम है। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने इस रेल खिदमात का जुमेरात को इफ्तिताह किया था। एटमी तवानाई के इंजबाती बोर्ड AERB ने कुडमकुलम न्यूक्लियाई तवानाई प्रोजेक्ट के यूनिट 5 और 6 में अहम आलात नस्ब किए जाने का इजाजतनामा जारी कर दिया है। इस इजाजत के तहत न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को यह अख्तियार हासिल हो गया है कि वो रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर्स और कूलेंट पंपों के प्लांट्स पर अहम आलात नस्ब कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि तकरीबन 3 साल पहले 2000 रुपए के करंसी नोटों को वापस लेने का ऐलान किया गया था, जिनमें से 98.47% नोट वापस लिए जा चुके हैं। RBI ने करंसी के बंदोबस्त से मुतालिक अपने कामकाज के हिस्से के तौर पर 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक इस रकम में बहुत तेजी से कमी आई है और ये 30 अप्रैल 2026 को 5,451 करोड़ रुपए थी। 2000 रुपए के नोटों को बदलने की सहूलत RBI के 19 दफ्तरों में उसी वक्त से दस्तयाब है, जब से इन नोटों की वापसी का ऐलान किया गया था। पंचायती राज की वजारत आज हैदराबाद में आत्मनिर्भर पंचायत पहल से मुतालिक एक वर्कशॉप का एहतमाम करेगी। हर एक तक रसाई से मुतालिक इस वर्कशॉप में आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम के विजन, मकासिद और अमल अमरी के फ्रेमवर्क के बारे में शराकतदारों को रोशनास कराया जाएगा। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायती राज की वजारत की पहल है। पंचायती राज की वजारत के सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज अपने कलीदी खुतबे में प्रोग्राम के विजन का खाका पेश करेंगे। इस मौके पर आत्मनिर्भर पंचायत पोर्टल के कामकाज का बराह रास्त मुजाहरा पेश किया जाएगा। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत मुतहदा अरब अमारात जामे इक्तसादी शराकतदारी मुआहदे CEPA से, जो 4 साल पहले अमल में आया था, भारतीय किसानों, MSMEs और दीगर तरह के कारोबार को यकसर तब्दीली लाने वाले मौके हासिल हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि भारत और मुतहदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा तजारती ताल्लुकात में काफ़ी मजबूती आई है और यह तजारत 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो गई है। बैडमिंटन में आज डेनमार्क के हॉर्सेंस शहर में थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल्स में भारतीय मर्दों की बैडमिंटन टीम का मुकाबला फ्रांस से होगा। क्वार्टर फाइनल्स में चीनी ताइपाई को 3-0 से हराने के बाद भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत की तरफ से लक्ष्य सेन ने बेहतरीन शुरुआत की और एक सनसनीखेज मुकाबले में आलमी नंबर 6 खिलाड़ी को 18-21, 22-20, 21-17 से शिकस्त दी। जबकि सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स की जोड़ी ने एक सख्त मुकाबले में चियोसियांग जी और वैंग जी लिन की जोड़ी को 23-21, 19-21, 21-12 से हराकर सबकत हासिल की। फुटबॉल में भारत 2005 के बाद से अब तक 17 साल की उम्र तक के AFC खवातीन एशियाई कप में अपनी पहली कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। आज भारतीय टीम का मुकाबला चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 5 बजे शुरू होगा। टेनिस में मैड्रिड ओपन में आज खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में नवें सीड की मेरा एंड्रीवा का मुकाबला यूक्रेन की मार्टा क्योत्सक से होगा। नवें सीड की मेरा ने स्पेन की राजधानी में जुमरात के रोज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को शिकस्त दी थी, जबकि मार्टा कोस्तेक मैड्रिड में जारी WTA 1000 मुकाबले में पहली मरतबा फाइनल में पहुंची हैं। मर्दों के सिंगल्स में आला दर्जे के खिलाड़ी जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को 6-2, 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। ये उनकी 22वीं जीत थी। बोत्सवाना के शहर गैब्रोन में आज से शुरू होने वाले आलमी एथलेटिक्स रिलेज 2026 में 21 अरकान पर मुश्तमिल भारतीय टीम 5 मुकाबलों में हिस्सा लेगी। ये मुकाबले 3 मई को इख्तिताम पजीर होंगे। भारतीय टीम 6 में से 5 मुकाबलों में हिस्सा ले रही है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
3: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारों ने मरई बंगाल की 2 असेंबली सीटों के 15 पोलिंग बूथों पर आज दोबारा पोलिंग की खबर को शह सुर्खी बनाया है। खबरों के मुताबिक EVM से छेड़छाड़ और तशद्दुद की शिकायत के पेश नज़र इंतखाबी कमीशन ने यह फैसला लिया है। रोजामा इनकलाब और प्रताप ने राजधानी दिल्ली में डिजिटल मरदमशुमारी के आगाज की खबर को अहमियत दी है। इस बार इस अमल में RWA को भी अहलकारों की मदद करने की जिम्मेदारी दी गई है। तिजारत और सनत की वजारत के मुताबिक भारत और तंजानिया के दरमियान माली साल 2025-26 में दो तरफा तजारत $9 बिलियन से तजावज़ कर गई। भारत के चीफ जस्टिस सूर्याकांत ने सिक्किम को मुल्क की पहली पेपरलेस रियासती अदालत करार दिया। इन खबरों को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने खसूसी तौर पर शाये किया है। खजाने के वजीर मुल्कत पंकज चौधरी ने 70वें इन्फोर्समेंट डे की तकरीब में ED की कामयाबियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि माली जराइम के खिलाफ ED मजबूत ढाल की तरह काम कर रहा है। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है।
2: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मगरी बंगाल में 2 असेंबली हलकों के 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा वोट डालने का अमल शुरू हो गया है। 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 1 इलाके में पहले मरहले के तहत घर घर जाकर मकानात की फहरिस्त तैयार करने और इनकी गिनती करने का काम शुरू हो गया है। IMD ने शिमाल मशरकी खित्ते और जनूबी जजीरा नुमा में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी तनाजे को ख़त्म करने की ईरान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान ऐसी रियायतें चाहता है जिन्हें वो कबूल नहीं कर सकते। और बैडमिंटन में डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल्स में भारतीय मर्दों की टीम फ्रांस के साथ खेलेगी। इसके साथ ही खबरनामा ख़त्म हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी एफएम गोल्ड। 8:45 और 56 सेकंड म्यूजिकल दिल्ली का सफर शुरू हो चुका है सुनीता के साथ। और कैफ भोपाली साहब फरमाते हैं कि तेरा चेहरा सुबह का तारा लगता है, तेरा चेहरा सुबह का तारा लगता है, सुबह का तारा कितना प्यारा लगता है, तुमसे मिलकर इमली मीठी लगती है, तुमसे मिलकर इमली मीठी लगती है, तुमसे बिछड़कर शहद भी खारा लगता है।

टीना मुनीम ऋषि कपूर साहब के थे स्क्रीन पर और टीना मुनीम ऋषि कपूर के लिए ये गाना गा रही थी। प्लेबैक किया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी ने। ये फिल्म थी बड़े दिल वाला, जिसमें म्यूजिक था आरडी बर्मन का। वैसे आजकल जो भीषण गर्मी है ना, उसमें जी तो यही चाहता है कि कहीं ना जाया जाए, घर में ठंडी ठंडी हवा का मजा लिया जाए, या फिर जब हम चाहें मौसम बदल जाए। अब ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, पर आप अपने गानों के माध्यम से हम स्टूडियो का और आपके आसपास का माहौल जरूर बदल सकते हैं। वैसे हो सकता है मौसम भी बदल जाए, तो क्या ख्याल है, पहाड़ों में चलते हैं, ढेर सारी बर्फ है आसपास। हैवी वुलन्स में जया बच्चन, डैनी डेंगजोंगपा, अभी तो जीले फिल्म का ये डुएट, आवाजें आशा भोंसले किशोर।

जी हाँ, FM गोल्ड पर मैं हूँ सुनीता आपके साथ। लेकिन अब हम आ पहुंचे हैं अंतिम पड़ाव पर इस म्यूजिकल दिल्लगी के पहले सेगमेंट के। अब 1977 की फिल्म थी घरौंदा और अगला गाना जो मैंने चूज किया है इसी फिल्म का है और आवाज है रूना लैला की।

तो बस अब सुनीता लेगी आपसे इजाजत अगले सैटरडे तक। अब वक्त हो चला है समाचार का। इंदु स्टूडियो में आ चुकी हैं। अगला सेगमेंट म्यूजिकल दिल्ली का आपके लिए लेकर आएंगी 9:10 पर। फिलहाल सुनीता को दीजिए इजाजत, सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में है। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के तहत भारत ने अपने कच्चे तेल के निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देश तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मछुआरा समुदायों के कल्याण और विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही हैं। कल श्रीकाकुलम जिले के एर्रामुक्कम में श्री नायडू ने कोल इंडिया लिमिटेड की सामाजिक दायित्व निधि से मत्स्य सागरमाला कार्यक्रम के तहत स्थापित सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मछुआरों की समस्याओं को समझा था और उन्हें दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने शैक्षिक सामग्री वितरण में जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक नई केंद्रीकृत खरीद नीति लागू की है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्य भर के विद्यार्थियों को सभी आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 15 जून तक की समय सीमा निर्धारित की है। एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म, नोटबुक और अन्य शैक्षिक सामग्री समय पर मिलने पर छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ईरान ने अपने मध्यस्थों के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसकी पुष्टि सरकारी मीडिया ने की है। ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। ये राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। फुटबॉल में भारतीय टीम एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काल केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने तथा हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The re-polling has started in 15 booths in two constituencies in West Bengal from 7 in the morning today. Among these, 11 are in Pashchim Agarhat and 4 booths in Diamond Harbour Assembly constituency. Election Commission has ordered re-polling after irregularities were reported. Meanwhile, in another development, a special bench has been set up by Supreme Court to urgently hear the Trinamool Congress's appeal against the Calcutta High Court order that restricted counting centre staff to central government employees only. The bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Joymalia Bakshi will take up the matter today at around 10:30 in the morning. Field operations for the house listing and housing census under phase 1 of census 2027 commenced in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh yesterday. The Ministry of Home Affairs said the exercise will continue till 30th of this month, during which trained enumerators will carry out house-to-house data collection following the completion of the self-enumeration period in these regions. Meanwhile, the self-enumeration facility has also begun in the Municipal Corporation of Delhi area, Rajasthan, Maharashtra, Meghalaya and Jharkhand. The online facility will remain open till 15th of this month, after which house-to-house operations will be conducted from 16th of this month to 14th of next month. In Bihar, the 15-day self-enumeration period ends today and field operations will begin today and continue till 31st of this month. Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri has said India expanded its crude oil sourcing base to 41 countries from 27 earlier as part of efforts to strengthen energy security during the global energy crisis. While speaking at the vibrant Gujarat Regional Conference in South Gujarat, he said long-term planning played a key role in managing the crisis. On boosting domestic production, the minister said orders were issued to maximize LPG yield at refineries and the domestic production has been increased by 60%.
3: We diversified our sources. Crude sourcing has now expanded from 27 countries to 41. We started procuring LPG, that is cylinder gas, from US and Norway, Algeria, apart from the Middle East. India has moved with great speed. Orders were issued to maximize LPG yield at refineries, and we increased our domestic production by 60%. We are incentivizing the movement to natural gas. Operation Urja Suraksha was a coordinated response across companies, ministries, state governments and international suppliers. Maximum vessels of India carrying LPG came out of the Hormuz.
2: Prime Minister Narendra Modi has expressed concern over the health of Uttar Pradesh Congress President Ajay Rai. In a social media post, the Prime Minister said that he wished Mr. Rai's speedy recovery after reports of his illness surfaced. The Reserve Bank of India has said that 98.47% of the 2,000 rupee denomination banknotes in circulation have been returned, nearly 3 years after it announced their withdrawal. The central bank had declared the withdrawal of 2,000 rupee notes from circulation on May 19, 2023 as part of its currency management exercise. The US blockade in the Gulf of Oman and maritime routes has been costing Iran nearly $4.8 billion in oil revenue, according to a report by Axios citing Pentagon. Highlighting the report, Sean Parnell, assistant to the Secretary of War for Public Affairs, said the US operation is intended to maintain sustained economic pressure on Tehran. The enforcement actions targeting sanctioned Iranian shipping have reduced Iran's energy exports amid heightened tensions near the Strait of Hormuz, a key global oil choke point. In football, India will mark their first appearance at the AFC Under-17 Women's Asian Cup since 2005, ending a 21-year wait at this level at the Under-17 national team kick-off their campaign against Australia in China today. The Meteorological Department has said Jammu and Kashmir is likely to witness generally cloudy sky with spells of light to moderate rainfall and thundershowers next 3 days, accompanied by gusty winds of 40 to 50 km per hour at a few locations. And that is the end of this news bulletin.

अगर हम कहें कि गुड मॉर्निंग सैटरडे, ये सोचते हुए कि हमें ये जिंदगी तभी अच्छी लगती है जब दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, लेकिन लड्डू ना सही, दोनों हाथों में हमारे सॉन्ग्स तो हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, सिर्फ सॉन्ग्स एंड सॉन्ग्स जो हमें बताते हैं जिंदगी की खूबसूरती। तो पहला वाला ये रहा आपके लिए, यह है म्यूजिकल दिल्ली की, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।

वैसे आपसे कोई भूल नहीं हुई है अगर आपने ट्यून किया है एफएम गोल्ड चैनल को तो, और ये जो रास्ता है बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है जो आपको बताएगा कि जो दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा पूरा का पूरा हफ्ता रहता है, सैटरडे संडे दो दिन ऐसे हैं, मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि शायद फ्राइडे इवनिंग से ही वो मूड बन जाता है कि रिलैक्स कीजिए। हम उठते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं, उसके बाद फिर से हम सोने चले जाते हैं, और इस लूप को ब्रेक करने का ख्याल हमें तभी आता है जब हमारे पास ये शानदार दिन होता है। उस पर भी अगर अच्छा मौसम हो जाए तो फिर क्या कहने। मौसम के साथ साथ जो हमारा मूड का मौसम होता है वो भी बहुत मायने रखता है कि हमारा मूड कैसा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब दुरुस्त रहती हैं तब कोई भी गाना गुनगुनाने का दिल करता है, जैसे कि ये वाला।

और ये कारवां अगर एक जगह ऐसी जगह टिक जाए जाकर के, जब हमें और हमारे दोस्तों को लगे कि भाई चलो चांद तारे देखते हैं, तो अगर आपको भी इस चीज़ का शौक है चांद तारे देखने का, मतलब दिन में नहीं रात में, तो फिर क्या ये मुमकिन हो पाएगा? चाहतों ने गर समझदारियों से दोस्ती की होती, न दिनों को रातों का सहारा होता, न रातों में तारों की कहानी होती, न बरसात सुहानी होती, न ये बात हमारी होती। कहने का मतलब ये है कि प्यार कीजिए, क्योंकि प्यार एनर्जी का दूसरा नाम है। वैसे प्यार से मुझे याद आया, कल आपने चांद देखा था रात को?

जब हम और तुम तैयार हैं तो फिर देरी किस बात की है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये है म्यूजिकल दिल्ली की। और हमें प्यार से ये बात पता चली कि प्यार तो एनर्जी का दूसरा नाम है, प्यार एक एंथुजियाज्म है। नियम तो यही है कि जो प्यार करते हैं वो दिन रात इस दुनिया को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अब ये बात और है कि प्यार सब में होता है लेकिन सब में प्यार नहीं होता।

0: आपको दिल देंगे हम।
1: और अगर आपने अपने पैसे दे दिए हैं, अपने ऊपर स्पेंड कर दिए हैं, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए, तो फिर ये समझ जाइए कि दुनिया की सारी चीज़ें कभी भी वेस्ट नहीं होती हैं। यस, आनंद उठाइए, क्योंकि आप जो भी कुछ हम सब करते हैं उसका जो लास्ट जो स्टॉप है वो यही है

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

कुछ चीजें ना कई बार अचानक यूं ही याद आ जाती हैं, जैसे अभी याद आ गया। ये है म्यूजिकल दिल्ली, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो जो हमें याद आया वो ये है कि रोमानिया में अगर आपको बस टिकट लेना हो तो आपको 20 बार उठक बैठक करनी पड़ेगी। वैसे मैं बता दूं ये सीनियर सिटीजन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये रूटीन हमें याद दिलाता है कि हेल्थ में हमें इन्वेस्ट करना है, लोगों को इंस्पायर करना है कि हम एक्टिव रहें। जिंदगी कई बार समझ में नहीं आती, जैसे कि ये वाला गाना, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगता है। तो ठीक इसी तरह से बाकी सारी चीजें भी हैं हमारे आसपास।

हम और तुम, नहीं नहीं हम और हमारी किताबें। सुना है कि फिर से पढ़ने और सुनने का समय आ चुका है। अगर आपको भी पढ़ने लिखने का कुछ मन कर रहा हो तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ। प्रेमचंद्र की आप आदमी और औरत पढ़ सकते हैं, नीला फूल आपको अच्छा लगेगा जिसमें मन के भावों के गीत हैं, या फिर लानत का प्याला जिसमें बदले की कहानी है, और अगर नहीं तो फिर आप कहानी का एक बड़ा अच्छा संग्रह है जो हास्य और आयरनी के साथ सामाजिक पहलुओं को दर्शाता है, नाम है काली बिल्लियों के साए में चटोरी चुड़ैल। इसको भी आप पढ़िए और देखिए तो सही। भागी भागी सी लाइफ में ठहरा हुआ ये सैटरडे कितना हसीन लगता है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

चाहे रहिए दूर या पास, लेकिन हम हर बार मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करने से अपने आप को बिल्कुल भी तन्हा नहीं रख सकते। बार बार देखते हैं कि मौसम कैसा है। वैसे तो ये एक अच्छी आदत है, क्योंकि हम आपको बताएं आगे आने वाले दिनों में, या मतलब समझ लीजिए कि इस पूरे हफ्ते में जो सोमवार के बाद से आएगा, मौसम मतलब खुशगवार सा रहेगा। बहुत गर्मी, जिसको कहते हैं कि 40+ डिग्री, वैसा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मौसम को लेकर के कोई भी बात कहना ऐसे ही है, क्योंकि मौसम और समय दोनों हमें चौंका देते हैं। गर्मियों में अपना ख्याल रखिए। नींबू पानी, सत्तू, आम पन्ना, बेल का शरबत, पुदीना, छाछ, नारियल पानी, तरबूज, खीरा, सलाद, सब कुछ खाते हैं ना, और ना प्यास लगे तो भी पानी पीजिए।

लेकिन एक चीज है जो इस मौसम में हम सबको ध्यान रखने की बात है और उसे हम यूं ही नहीं जाने देना चाहते, और वो है पानी। पानी को बचाइए। जल जीवन मिशन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। भारत सरकार की एक ये प्रमुख योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य है 2028 तक ग्रामीण भारत के हर घर में नल के माध्यम से सुरक्षित, स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। ये हर घर जल के विजन के साथ लागू की जा रही है। तो फिर पानी के साथ जो हमारा रिश्ता है वो हमेशा बना रहे, उसके लिए पानी हर पल हमें ये सोचना है कि किस तरह से इसको बचा के रखना है।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे म्यूजिकल दिल्ली आपको कैसी लगी? आप हमें मेल कर सकते हैं, बता सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा भाई। अगर आप ब्रेकअप से उबरना चाहते हैं तो एक्स का सोशल मीडिया अकाउंट देखना प्लीज बंद कर दीजिए।

0: लुकुड़िया
1: गण्याचा भाव।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह के मतगणना कर्मी का चयन कर सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए मतदान दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को कराया गया था। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के पहले दो घंटों में 16% से अधिक वोट पड़े। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 4 मई को होगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
1: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते करेंगे। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।

वक्त हो चला है 1:10 आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल और कलाकार बेमिसाल में मैं संगीता हूँ आप सभी के साथ। आज कलाकार बेमिसाल में हम वाकई में एक कमाल की अदाकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक बेहद खूबसूरत अदाकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज जिक्र नरगिस दत्त का। नरगिस दत्त की गिनती जो है वो हिंदी सिनेमा के महान अभिनेत्रियों में होती है और लोग उनकी अदाकारी के आज भी दीवाने हैं। और 3 दशक से ज़्यादा उन्होंने अदाकारी की और सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज किया। उन्होंने फिल्मों में 5 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और फिल्म तलाशे हक के साथ एक छोटी सी भूमिका में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। ये फिल्म जो है ये आई थी 1935 में। हालांकि उनके अभिनय करियर की अगर बात करें तो वो शुरू हुआ था फिल्म तमन्ना से जो 1942 में आई थी। तो नरगिस ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, एक से एक यादगार फिल्में हमें दी जिन्हें हम आज भी देखते हैं, आज भी देखना हम पसंद करते हैं। और कई ऐसे अभिनेता रहे जिनके साथ उनकी खूबसूरत जोड़ी बनी और कई ऐसे काम भी नरगिस ने किए जो हिंदी सिनेमा में पहली बार किसी अभिनेत्री के हिस्से आए थे। तो बने रहिए FM गोल्ड के साथ, बहुत सारी बातें करेंगे नरगिस दत्त की।

जी हाँ, तो कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, और कलाकार बेमिसाल में आज हम याद कर रहे हैं बेहद खूबसूरत अदाकारा नरगिस दत्त की। मुझे नरगिस दत्त यूं भी बहुत पसंद है क्योंकि वो हमारी बचपन की स्मृतियों में शामिल है, और मुझे याद है कि दूरदर्शन पर जब राज कपूर की फिल्में आती थीं, राज कपूर और नरगिस की फिल्में आती थीं, बहुत सारी फिल्में इन्होंने साथ में की हैं, जिनमें हम चाहे आवारा की बात करें या चोरी चोरी की बात करें, श्री 420 की बात करें, तो ये जो जोड़ी है ना, ये हमारे स्मृतियों का हिस्सा है। तो यूं भी इन्हें पर्दे पर देखना, पर्दे पर निहारना बड़ा अच्छा लगता है। अगर हम नरगिस की बात करें तो फातिमा राशिद नाम था, और उनके पिता जो है अब्दुल रशीद थे, जो मूल रूप से पंजाब प्रांत के रावलपिंडी से थे। उनकी माँ का नाम था जद्दनबाई, और उस जमाने की वो जानी मानी शास्त्रीय संगीत गायिका थी। हालांकि नरगिस के लिए कहते ये हैं कि नरगिस डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन घर में सिनेमा का माहौल था और माँ की भी इच्छा ऐसी थी कि वो सिनेमा की तरफ जाएं, तो उन्होंने सिनेमा की तरफ अपना रुख कर लिया।

अमरावती जिल्हा

1970 के दशक की शुरुआत में नरगिस दत्त दस प्लास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली संरक्षक बनी और इसके साथ काम करते हुए उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अभिनेत्री से सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता से 1980 में संसद भवन तक का सफर तय किया। धड़कन

0: ये समय समाप्त हो चुका है, लेकिन हमें यकीन है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, गाने भी आपको अच्छे लगे होंगे। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे उर्दू में समाचार और हमारी आपकी फिर जल्दी होगी मुलाकात। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, बने रहिए एफएम गोल्ड के साथ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के दौरान सिर्फ मरकजी सरकार के मुलाजमीन को निगरान मुकर्रर किए जाने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इंतखाबी कमीशन को अहलकारों के बारे में फैसला करने का इख्तियार हासिल है। मगरबी बंगाल के दो असम्बली हलकों के 15 मरकजों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं और आखिरी खबरें मिलने तक तकरीबन 37% वोट डाले जा चुके थे। लोकसभा के स्पीकर ने 2026-27 के लिए 4 पार्लिमानी कमेटियों के नए सिरे से तश्कील की है। भारत और नेपाल ने आइंदा मानसून से पहले सैलाब की पेशगोई के मॉडल के बारे में आज तबादले ख्याल किया। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और आज शाम आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को वोटों की गिनती के सुपरवाइजर के तौर पर मुकर्रर करने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल बेंच ने हिदायत दी कि इंतखाबी कमीशन के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल किया जाए। ये फैसला तृणमूल कांग्रेस के लिए एक धचका समझा जा रहा है, जिसने इस इकदाम को अदालत में चैलेंज किया था। समाअत के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि अफसरान के इंतखाब का इख्तियार इंतखाबी कमीशन के पास है। उन्होंने मजीद कहा कि हर काउंटिंग टेबल पर पहले से ही एजेंट्स, सुपरवाइजर्स और मुशाहिदीन मौजूद होते हैं, इसलिए मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन की मौजूदगी पर एतराज की वजह समझ से बालातर है। कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि रिटर्निंग अफसरान रियासती हुकूमत के मुलाजमीन होते हैं, इसके अलावा दिगर अमले की तकरूरी के जिम्मेदार भी वही होते हैं। कमीशन ने अदालत को मुत्तला किया कि सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन तक महफूज रखा जाएगा। अपने हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इरादा किया कि चुनाव कमीशन के सर्कुलर पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। मगरबी बंगाल में जुनूबी 24 परगना जिले की 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग के दौरान वोट डाले जा रहे हैं। तफसील हमारे नामनगार से।
2: मगरबी बंगाल में मगरा घाट पश्चिम इलाके की 11 बूथों और डायमंड हार्बर हल्के की 4 बूथों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। आखिरी खबरें मिलने तक तकरीबन 37% पोलिंग दर्ज की गई। मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। एक और पेशरफ्त में सुप्रीम कोर्ट ने आज सिर्फ मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को वोटों की गिनती के सुपरवाइजर के तौर पर मुकर्रर करने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस की अर्जी को खारिज कर दिया था। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब रहमान।
1: केरलम में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। वहां अप्रैल की 9 तारीख को 140 हलकों में वोट डाले गए थे। आला चुनाव अफसर रतन यू केलकर ने बताया कि 43 जगहों पर बनाए गए तमाम 140 वोट शुमारी मरकजों पर सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इस काम के लिए मजमूई तौर पर 15,465 अहलकार तैनात किए जाएंगे, जिनमें रिटर्निंग अफसर, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर, माइक्रो मुशाहिद, वोट शुमारी के लिए निगरान और असिस्टेंट शामिल हैं। सबसे पहले डाक से आने वाले वोटों की गिनती की जाएगी और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में रिकॉर्ड किए गए वोट डाले जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने 2026-27 के लिए 4 पार्लिमानी कमेटियों की असरे नौ तश्कील की है। लोकसभा के बीजेपी के मेंबर डॉक्टर संजय जायसवाल को तखमीना कमेटी का सरबराह बनाया गया है। इस कमेटी में ऐवान-ए-ज़ेरी के 30 मेंबर शामिल हैं। बीजेपी के ही मेंबर बैजनाथ पांडे सरकारी इदारों से मुतालिक कमेटी के सरबराह होंगे। ये कमेटी लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 मेंबरों पर मुश्तमिल है। जनाब बिरला ने लोकसभा के कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट केसी वेणुगोपाल को सरकारी हिसाब किताब से मुतालिक कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया है। इस कमेटी में 15 मेंबर लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होंगे। दर्ज फहरिस्त और कबीलों की फलाह बहबूद से मुतालिक कमेटी के सरबराह लोकसभा के बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे। ये कमेटी लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 मेंबरों पर मुश्तमिल होगी। कमेटी की मुद्दत इस महीने की पहली तारीख से अगले साल 30 अप्रैल तक होगी। मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मकानात की फेहरिस्त बंदी और मकानात की गिनती के अमल के लिए कल से फील्ड ऑपरेशन शुरू हो गया है। ये काम इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगा। मर्दमशुमारी 2027 के तहत अज खुद शुमारी की सहूलत दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलाके राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में कल से शुरू हो गई। ये ऑनलाइन सहूलत इस माह की 15 तारीख तक जारी रहेगी। इसी दौरान बिहार में 2027 की मर्दमशुमारी का पहला मरहला आज से शुरू हो गया है। वहां भी मकानात की फेहरिस्त बंदी की जाएगी। दूसरा मरहला अगले साल फरवरी में शुरू होगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा एमपी संदीप पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में आम आदमी पार्टी के 6 दिगर राज्यसभा अरकान के हमराह बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद पंजाब की सियासत में एक नई हलचल पैदा हो गई। जराए के मुताबिक पंजाब के 2 जिलों में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, ताहम दोनों जिलों के नाम अभी तक सरकारी तौर पर जाहिर नहीं किए गए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। काठमांडू में कोसी और गंडक प्रोजेक्टों के बारे में मुश्तरका कमेटी की 11वीं मीटिंग जारी है। ये मीटिंग अप्रैल की 30 तारीख को शुरू हुई थी। दोनों मुल्कों के हुक्काम तफसीली तबादले ख्याल में हिस्सा ले रहे हैं और कोसी और गंडक प्रोजेक्टों के तवील अरसे से चले आ रहे तकनीकी और इंतजामी उमूर पर बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए आफात से मुतालिक फौरी इंतबाही खिदमात फराहम करने की गरज से मुल्क में ही तैयार करदा टेक्नोलॉजी पर मबनी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस निज़ाम की जांच के लिए आज दोपहर शहरियों के मोबाइल फोन पर सायरन के साथ एक नोटिफिकेशन भेजा गया। जांच के दौरान भेजे गए पैगाम में कहा गया था, अलर्ट सिटीजन्स सेफ नेशन। इस पैगाम पर आवाम की जानिब से कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक आजमाइशी पैगाम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर मुआसलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर लोगों को मोबाइल फोन पर ऐसा पैगाम मौसूल हो तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भारत के मोबाइल पर मबनी आफात से मुतालिक नए मुआसलाती निज़ाम का पैगाम है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने आसाम, मेघालय, सिक्किम, जैली, हिमालयाई मगरबी बंगाल में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरला और माहे में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। कौमी राजधानी में आज सुबह कम से कम दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यहां हल्की बारिश के बाद दो दिन तक दर्जे हरारत में कमी रही। IMD ने अगले 2 रोज के दौरान गरज चमक के साथ बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे ज्यादा रन के निशाने को पार करके जीत हासिल करने का रिकॉर्ड कायम किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के दौरान सिर्फ मरकजी सरकार के मुलाजमीन को निगरा मुकर्रर किए जाने के चुनाव कमीशन के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इंतखाबी कमीशन को अहलकारों के बारे में फैसला करने का इख्तियार हासिल है। मगरबी बंगाल के दो असम्बली हलकों के 15 मरकजों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं और आखिरी खबरें मिलने तक तकरीबन 37% वोट डाले जा चुके थे। लोकसभा के स्पीकर ने 2026-27 के लिए 4 पार्लिमानी

0: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ व पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवी के पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षक और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो कॉन्फ्रेंस वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10

0: सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
2: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति

0: व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताजा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। IPL क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Mm-hmm. मध्यम लहरी 537.6 मीटर तसंच 558 किलोहर्ट्सवर श्रोते हो आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी।

मित्रों आज छे इंटरनेशनल फीमेल मोटरसाइकल राइड डे। मित्रों आवो पण कोई दिवस होय छे ए तो आज खबर पड़ी, परंतु जेने पण आ दिवस विचार्यो हशे ने एने सैल्यूट छे। 2007 मां आ दिवसनी शुरुआत थई, एटले लगभग 20 वर्ष पहला स्त्रीओ मोटरसाइकल चलावे एना माटे एमने प्रोत्साहन मळे ए माटे मे महिनाना पहला शनिवारे फीमेल मोटरसाइकल राइड राखवामां आवती होय छे अने एमने प्रोत्साहन आपवामां आवतुं होय छे। नारी मोटरसाइकल पर विश्वभरमां हरे फरे ए आनो उद्देश अने आनो सूत्र जस्ट राइड। तो मित्रों आजनो सवाल श्रोता बहनों माटे, શું તમે ક્યારે મોટરસાઇકલ ચલાવી છે ખરી? કેવો અનુભવ છે? આ મોટરસાઇકલ ચલાવીને તમે કેટલા માઇલ કેટલા કિલોમીટર

आजकाल मळता होय छे। अने यूरोपमां चीजनी विविध टेक्नोलॉजी अपनावीने चीजनी अलग अलग जातिओ बनावामां आवी।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 FM गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम छे गीत गुर्जरी ने अपनी साथे छे तरुलता करोडिया वातो करी रह्या छे चीज नी तो चीज नो सौथी वधु उत्पादन अमेरिका मां थाय छे वार्षिक 6 मिलियन मेट्रिक जेटलू उत्पादन अमेरिका मां थाय छे अने त्यारबाद जर्मनी फ्रांस अने इटली नो वारो आवे छे परंतु आ चीजना उत्पादन में भारत टोचना देशों में नाम धरावतो नथी परंतु हाँ दूधना उत्पादन में विश्वभर में भारत प्रथम क्रमांके आवे छे परंतु चीजना उत्पादन में जो ये भारतनुं नाम नथी अने भारत 2026ना अहेवाल प्रमाणे 90मी रैंक पर आवे छे परंतु छताय भारते आंतरराष्ट्रीय अने विश्व स्तरे चीजनी कॉम्पिटिशन में एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी छे ब्राजील में चीजनी 16-19 एप्रिल 2026 एटले हाल में ज एक कॉम्पिटिशन करवामां आवी अने आ कॉम्पिटिशन में भारते पहली वार भाग लीधो भारते पहली वार भाग तो लीधो परंतु बे एक सुपर गोल्ड बे गोल्ड अने एक सिल्वर एम 4 मेडल हासिल कर्या छे ने कमालनी वात अने आ मेडल मुंबई ने एक सुपर गोल्ड एक गोल्ड अने एक सिल्वर मेडल मळ्यो अने लद्दाख ने एक गोल्ड मेडल आम टोटल 4 मेडल भारते आ कॉम्पिटिशन में जीत्या अने एटले ज आजे आपणे चीज नी वात करी रह्या छीए।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 एफएम गोल्ड खरासोना कार्यक्रम छे गीत गुर्जरी। मित्रों, जम्मू काश्मीर में कलारी नामनो चीज नो उत्पादन थाय छे, जेने काश्मीर नो मोजरेला पण कहेवामां आवे छे। गुजर बाकरवाल नामनो समुदाय पेढ़ी दर पेढ़ी थी आ चीज बनावी रह्यो छे। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश अने लद्दाख में छुरपी नामनो चीज बनावामां आवे छे अने आ छुरपी ने ज एक गोल्ड मेडल मळ्यो छे। तो आ छुरपी याकना दूधमांथी बनावामां आवतुं चीज छे अने जे भारत माटे एक गोल्ड मेडल जीती आव्युं छे। तो गुजरातमां टोपलीनुं पनीर, जेने बीजुं नाम छे सुरती चीज, जे एक आगवी ओळख धरावे छे। मित्रों, आ वखते जे कॉम्पिटिशन थई तेमां मुंबईनी एक मौसम करीने

मित्रों ब्राजील में आ चीज़ कॉम्पिटिशन थी एम 2700 जेटला चीज़नी आइटम राखवामां आवी हती। 30 जेटला देशों भाग लीधो हतो अने 350 एटले के 350 जेटला जजेस आमा हता अने आमाथी आपणने 4 मेडल मळ्या अने पहली वार आपणे आ कॉम्पिटिशन में भाग लीधो। तो मित्रों जे कारीगरोए जेमणे मेहनत करी अने भारतने 4 मेडल जीती आप्या एमने गीत गुर्जरी परिवार वती अभिनंदन पाठवीए अने सैल्यूट करीए। आ साथ ज मने तरुलता करोड़ी

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया कि

0: विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगराहट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवी के पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा के 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हुई थी। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सवेरे 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी आज से 4 दिन के दौरे पर म्यांमार में हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एडमिरल त्रिपाठी म्यांमार के कमांडर इन चीफ जनरल ये विन ऊ, रक्षा मंत्री जनरल यू टून आंग और म्यांमार सशस्त्र बलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। आगामी मानसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में एक बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। In Chhattisgarh, 3 security personnel lost their lives and 1 personnel was injured in an IED blast near the Kankade Narayanpur district border today. The incident occurred while personnel of the District Reserve Guard were on an operation to defuse an improvised explosive device. According to police, a DRG team had been employed for demining, area domination and search operations under the Chote Bethia police station limits. During the operation, the IED exploded while it was being diffused. Inspector Sukram Vatti and Constables Krishna Komra and Sanjay Gharpale sustained critical injuries. They later succumbed to injuries. Another injured constable, Parmanand Komra, is undergoing treatment. Inspector General of Police Bastar Range, Sundar Raj P, said that based on inputs from surrendered Maoists and other sources, a large number of IEDs have been recovered and neutralized in the Bastar division in recent months. In West Bengal, repolling is underway at 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Paschim and 4 in Diamond Harbour constituencies. Over 72% voting has been recorded till 3 p.m. Polling has remained largely peaceful across the two assembly segments. The repolling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Joy Malia Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for the Trinamool Congress, which had challenged the move. During the hearing, Justice Bagchi observed that the choice of officials rests with the Election Commission. He noted that every counting table already has agents, supervisors and observers and questioned concerns over the presence of central government employees. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted 4 parliamentary committees for the year 2026-27. Lok Sabha BJP MP Dr. Sanjay Jaiswal has been appointed as the chairperson of the Committee of Estimates. The Committee on Public Undertakings will be headed by BJP MP Bijayant Panda. Mr. Birla has appointed the Congress MP from Lok Sabha KC Venugopal as the chairperson of the Public Accounts Committee, while the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be headed by Lok Sabha BJP MP Phagan Singh Kulaste. The vibrant Gujarat Regional Summit concluded at Surat in Gujarat today with the signing of a record 2,792 memorandums of understanding worth over 3,53,000 crore rupees. Addressing the valedictory session, Union Minister JP Nadda said, India must turn global supply chain disruptions into opportunities and emerge as a self-reliant manufacturing hub. He stressed that building resilience and boosting manufacturing capacity are among the country's top priorities, adding that such regional summits play a key role in achieving the vision of a Viksit Bharat. Speaking on the occasion, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi said, the agreements signed during the summit are expected to generate direct employment for over 2.82 lakh youth in the next 3 years. Secretary of the Ministry of Information and Broadcasting Chanchal Kumar held a review meeting today in Patna with various media units of Bihar and Jharkhand. Officials from the Press Information Bureau, Central Bureau of Communication, Akashwani and Doordarshan were present at the meeting. During the meeting, Mr. Kumar instructed all media units to work with better coordination. And that is the end of this news bulletin.

4:11 और 10 सेकेंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आइए साथियों आपको बताते हैं आपकी मनपसंद FM गोल्ड 100.1 पर आने वाले घंटों में आप कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। 4:30 का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा का रहेगा। आप जानते हैं आपके मनपसंद 100.1 पर हर घंटे आप समाचार सुनते हैं और इसी कड़ी में 5:00 हिंदी में समाचार होंगे, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 5:10 पर आपकी मुलाकात मुझसे यानी सीमा वर्मा से होगी। कार्यक्रम रहेगा गाते गुनगुनाते, जिसमें 80 और 90 के दशक के कुछ चुनिंदा गीत आप और हम मिलकर सुनेंगे। मेरी मुलाकात आपके साथ 6:00 तक रहेगी। शाम 6:00 आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, 6:05 पर अंग्रेजी में आप समाचार सुनेंगे और 6:10 पर सदाबहार गीत आपके साथ रहेंगी रेशमा तिवारी। 6:20 पर शाम आप संस्कृत में समाचार सुन सकते हैं। वहीं 6:30 का वक्त मार्केट मंत्रा का रहेगा। 7:00 हिंदी में समाचार होंगे, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 7:10 पर आप कौन सा कार्यक्रम सुन सकते हैं आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत 1956 की फिल्म नया

0: स्वागत एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आपको बता रहे थे आपके मनपसंद एफएम गोल्ड पर आप कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं, और अगर हम फिल्मी गीतों की बात करें तो 7:25 पर शाम सांझ ढले सुनना ना भूलिएगा। इसमें आपके साथ रेशमा रहेंगी और कुछ बातें साथ कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत रहेंगे। 8:10 पर कार्यक्रम मधुरिमा आप सुन सकते हैं, रेशमा एक बार फिर आपके साथ होंगी। और इस प्रोग्राम की खासियत ये होती है कि इसमें जो गीत हम आपकी नज़र करते हैं, ये गीत किस राग पर आधारित है उसका थोड़ा सा विस्तार हम ज़रूर करते हैं। 10:30 रात हर सिंगार कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा, जिसमें फिरोज़ आलम आपके साथ रहेंगे और कुछ प्यारे गीतों के साथ वो इस सफ़र को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। रात 11:10 पर गीत मेरे मन मीत, सदाबहार गीतों का ये कार्यक्रम फिरोज़ होंगे आपके साथ। तो ये तो एक हमने रूपरेखा बताई आपको आज के कौन कौन से कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। साथियों, हमने शुरू में कहा था कि 4:20 पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सुनेंगे, वक्त हो चला है, आइए सुनते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़।
1: वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, योर अल्टीमेट गेटवे टू करियर सक्सेस। आई एम लूसी गैब्रियल एंड आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू द लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स and government recruitment updates to help you navigate. Green Energy Limited, a subsidiary of NTPC Limited, has invited online applications from experienced professionals for various posts in renewable energy sector, including Deputy General Manager RE with 14 vacancies, Deputy General Manager Finance with 2 vacancies, Assistant Manager RE with 28 vacancies, and Assistant Manager Finance with 2 vacancies. And the pay scale ranges between 50,000 to 1,60,000 E2 to 90,000 to 2,40,000 E6. Interested candidates can apply online through the official website. The online application process will close on 5th May 2026. All updates are available on the website, that is www.

0: भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुपति में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्राध्यापक कुल पद 7, जिनमें से एक पद अनुसूचित जाति के लिए, एक अनुसूचित जनजाति के लिए, 2 अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए और 1 पद EWS वर्ग के लिए तथा 2 पद सामान्य अभ्यर्थियों के लिए हैं। सहायक प्राध्यापक के कुल 28 पद हैं, जिनमें से 11 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए हैं, जबकि EWS वर्ग के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और अनुसूचित जाति के लिए 4 पद आरक्षित हैं। विस्तृत विज्ञापन के लिए अवश्य देखिए ये वेबसाइट www.iiscrtirupati.ac.in। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 28 मई 2026। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, इन पदों के लिए सीधे साक्षात्कार के आधार पर आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पद हैं पुनर्वास क्लिनिकल मनोविज्ञानी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, अर्ली इंटरवेंशनिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स, प्रशिक्षित केयर गिवर, दिव्यांग मित्र, आया क्लीनर और गतिविधि शिक्षक। सीधे साक्षात्कार के लिए निर्धारित स्थान है AYJNISHD बांद्रा पश्चिम रिक्लेमेशन मुंबई। सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावित तिथि है 7 मई 2026। इसके अतिरिक्त इनमें से कुछ पदों के लिए सीधा साक्षात्कार अहमदाबाद गुजरात में लिया जाएगा और उसके लिए तिथि 8 मई 2026 है। दस्तावेजों का सत्यापन प्रातः 9:30 से 11:30 के बीच होगा और सीधे साक्षात्कार का समय रहेगा सवेरे 11:30 से 5:30 बजे तक। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया देखिए वेबसाइट AYJNISHD.NIC.IN। ईमेल का पता रहेगा AYJNIHH-MUM@NIC.IN। दूरभाष पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूरभाष नंबर है 02269102100। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन संलग्न कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वैज्ञानिक के पदों को भरने के लिए पात्र एवं उपयुक्त अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, पदों का विवरण, पात्रता शर्तों आदि के लिए देखिए अनुसंधान विभाग की वेबसाइट dhr.gov.in/vacancies। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून मुकेश। मुकेश, इट वाज बुद्ध पूर्णिमा यस्टरडे एंड दिस ईयर इट वाज एन इवन स्पेशल वन एज फॉर द फर्स्ट टाइम द सेक्रेड रिलिक्स ऑफ गौतम बुद्ध व्हिच आर यूजुअली हाउस्ड एट द नेशनल म्यूजियम इन हियर इन दिल्ली हैज बीन ब्रॉट टू लद्दाख फॉर पब्लिक व्यूइंग एंड इन द लैंड ऑफ हाई पासेस इन लद्दाख वेयर द माउंटेन्स सीम टू टच यू एंड आर क्वाइटर देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री द सेक्रेड एक्सपोजिशन ऑफ द होली रिलिक्स of Gautam Buddha has brought with it a different kind of stillness, offering a rare opportunity for pilgrims, monks and locals to pay homage. The event has been described as a major, deeply spiritual occasion for the region's people to connect with the teachings of Lord Buddha. Devotees and tourists can in this season now pay their respects and this will certainly spiritually be an enriching experience for all the visitors. So why not make a plan to visit Ladakh this season, Mukesh? Escaping the sweltering heat of the cities down here.
1: जी.
2: है ना? तो ये सब तो हुई information वाली बातें and shall we begin with the news headlines now?
1: बिल्कुल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार, कहा अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार।
2: Re-polling underway at 15 booths of two assembly constituencies of West Bengal, over 55% voter turnout reported till 1 p.m.
1: लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया।
2: India and Nepal discuss flood forecasting model ahead of the upcoming monsoon season.
1: मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान।
2: And in IPL cricket, Chennai Super Kings to take on Mumbai Indians this evening. And now time for a segment Dateline India in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And Mukesh, today we will talk about World Tuna Day. Today's broadcast marks a globally significant occasion. It's May the 2nd, celebrated worldwide as World Tuna Day. It serves as a call to action to protect tuna populations, with 33.3% of the 7 main tuna species previously fished at sustainable levels. Now, you might be wondering, why tuna? So, of all the species in the ocean, why dedicate an entire international day to this one fish? Stay with us as we dive deep into the story of tuna, its journey in the ocean, its incredible nutritional value, the environmental challenges it faces, and the inspiring global efforts working to secure its future. So, tuna are among the ocean's most remarkable creatures. Built for speed and endurance, these powerful fish can swim across entire oceans, maintaining warm body temperatures even in cold waters, a rare trait among fish. There are several species of tuna, including skipjack, yellowfin, albacore, and the prized bluefin. Each plays a vital role in marine ecosystems and global fisheries. Tuna is not just a fish, it's a global commodity, a cultural staple, and for many communities, it's a lifeline.
1: बिल्कुल, टूना एक मुख्य भोजन भी है और आपकी प्लेट पर जब टूना पोषक तत्वों का खजाना होती है तो आइए इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। आइए इसे आपके घर, आपकी रसोई के और करीब लाते हैं। चाहे वो कोई झटपट बनाने वाला सैंडविच हो, सलाद हो या किसी खाने का हिस्सा हो, ट्यूना दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली मछलियों में से एक है और ये सिर्फ बनाने में आसान नहीं है बल्कि ये बेहद पौष्टिक भी है। और यहाँ बताया गया है कि पोषण विशेषज्ञ अक्सर ट्यूना खाने की सलाह क्यों देते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। ये सेहतमंद फैट सूजन कम करने, दिल की सेहत को बेहतर बनाने और यहाँ तक कि दिमाग के काम करने की क्षमता को बढ़ाने में भी सहायता करते हैं। इसके अलावा बेहतर क्वालिटी का प्रोटीन इसके अंदर होता है। ट्यूना सभी जरूरी अमीनो एसिड देता है जो मांसपेशियों की मरम्मत और उनके विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा विटामिन डी B12 का ये खजाना है। ये ऊर्जा बनाने और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है और साथ ही खनिजों से ये भरपूर है। इसमें सेलेनियम भी शामिल है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और आयोडीन भी है जो थायराइड की सेहत के लिए बहुत जरूरी है।
2: एंड फॉर पीपल सीकिंग अफोर्डेबल हाई प्रोटीन डाइट्स, कैंड ट्यूना हैज बिकम अ रिलायबल एंड एक्सेसिबल ऑप्शन वर्ल्ड वाइड। बट एज डिमांड ग्रो, सो डिड द प्रेशर ऑन ट्यूना पॉपुलेशंस, एंड अ फ्यू डिकेड्स अगो द पॉपुलैरिटी ऑफ ट्यूना केम एट अ कॉस्ट। विथ राइजिंग ग्लोबल डिमांड, फिशिंग फ्लीट्स एक्सपैंडेड रैपिडली एंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वीक रेगुलेशंस एंड फ्रेगमेंटेड मैनेजमेंट लेड टू इट्स ओवर फिशिंग। सम ट्यूना स्टॉक्स बिगैन टू डिक्लाइन एट अलार्मिंग रेट्स। By 2017,

0: Only about 75% of tuna catches came from sustainable, healthy stocks, and the rest were under serious pressure. The situation raised urgent questions. Could tuna disappear from our oceans? Could the entire fishing communities lose their livelihoods?
1: लेकिन अभी उम्मीद बाकी है। यहीं से कहानी में एक सकारात्मक मोड़ आता है। जब संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ट्यूना दिवस की शुरुआत की थी तो ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था बल्कि एक कार्रवाई के लिए एक पुकार थी। सरकारें, वैज्ञानिक और मछुआरे सभी पहले कभी ना देखे गए अंदाज में एक साथ आए। खाद्य और कृषि संगठन जैसे संगठनों ने अलग अलग क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों के बीच तालमेल बनाया। ट्यूना मछली के प्रबंधन से जुड़े 5 प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों ने अपनी रणनीतियों को एक दूसरे के साथ जोड़ा।
0: Now let us now talk about a global turnaround story. The results of these measures, which were like, today an estimated 99% of commercial tuna catches come from stocks that are scientifically assessed as sustainable. And out of 23 global tuna stocks, only 2 remain overfished. Even more inspiring is that species like Atlantic bluefin tuna, once nearly absent, are now returning to waters off southern England and Ireland. This is one of the rare environmental success stories where global cooperation truly worked.
1: तो आइए अब बात करते हैं कि सस्टेनेबल फिशिंग कैसे काम करती है। तो हमने हालात को ठीक कैसे किया है, आइए उन मुख्य तरीकों को समझते हैं और आज सस्टेनेबल ट्यूना फिशिंग को आकार दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट के तरीके की। ये पहले से तय किए गए नियम होते हैं जो ये तय करते हैं कि कितनी फिशिंग की जा सकती है। फिशिंग का सीजन शुरू होने से पहले वैज्ञानिक पॉलिसी बनाते हैं और मछुआरे मिलकर काम करते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि फैसले डेटा पर आधारित हों, ना कि अचानक लिए गए हों। इसके अलावा मॉनिटरिंग, कंट्रोल और निगरानी भी इसमें काम करती है। आजकल की फिशरीज में नियमों का पालन पक्का करने के लिए सैटेलाइट ट्रैकिंग, नाव पर मौजूद ऑब्जर्वर और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब गैर कानूनी फिशिंग को छिपाना बहुत मुश्किल हो गया है।
0: Right, some there are some more practices, and these include the further mentioned measures like reducing bycatch. And now, what is bycatch? When unintended species like turtles, sharks, seabirds, and whales get caught, it has long been a major issue. Innovations also include like circle hooks that reduce turtle capture, bird scaring lines to protect seabirds like albatrosses, modified nets that allow non-target species to escape. And of course, there are eco-friendly practices also. Fishing gear and techniques are being redesigned to minimize damage to marine habitats and ecosystems.
1: Ji haan, sustainability sirf niyamon ke bare mein nahi hai, ye gyan ke bare mein bhi hai. खाद्य और कृषि संगठन का कॉमन ओशंस ट्यूना प्रोजेक्ट इन चीजों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। दुनिया भर में मछली पकड़ने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा सस्टेनेबल तरीकों पर ई लर्निंग कोर्स तैयार किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करने के तरीकों को बेहतर बनाया जा रहा है और ट्रेसिबिलिटी सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ग्राहकों को पता चल सके कि उनकी ट्यूना मछली कहाँ से आई है। इसका लक्ष्य क्या है, 2027 तक दुनिया भर में सस्टेनेबल तरीके से ट्यूना मछली पकड़ना।
0: Despite all these progress, new challenges are also emerging, like climate change. Warming oceans are altering tuna migration patterns. Fish are moving farther offshore, increasing the cost for fishers and threatening coastal livelihoods, especially in developing regions. And then there are threats to marine wildlife. Many species, particularly seabirds like albatrosses, remain at risk due to accidental capture. And if we talk about the global governance, a major milestone came with the BBNJ agreement, which entered into force in 2026. And this agreement strengthens protection for marine biodiversity in international waters. But agreements are only as strong as their implementation.
1: बिल्कुल अनुजा, अब हो सकता है कि हमारे श्रोता सोच रहे हों कि इन सब में उनकी या हमारी क्या भूमिका हो सकती है। असल में हमारी भूमिका काफी बड़ी है। यहाँ कुछ काम आसान दिए गए हैं। टिकाऊ स्रोतों से मिली ट्यूना मछली चुनें और इको लेबल देखें। इसके अलावा बहुत ज्यादा उपभोग से बचें, अपने सी फूड विकल्पों में संतुलन बनाए रखें। इसके साथ ही जानकारी रखें और जागरूकता फैलाएं और समुद्र संरक्षण की दिशा में काम करने वाली नीतियों और संगठनों का समर्थन करें। आप जो भी चीज खरीदते हैं उससे बाजार

0: persons experience the sacred darshan in harmony with the nature. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश. गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे एकला बांध पर 2,26,000 मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण कर एक खूबसूरत इको पार्क का निर्माण किया गया है. ये पार्क अब शहरवासियों के लिए एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बन गया है. 40 एकड़ में बने इस पार्क का उद्घाटन 23 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था. उन्होंने कहा कि जहां पहले कूड़े का पहाड़ होता था वहां अब खूबसूरत पार्क है. इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि इस पार्क का निर्माण पर्यावरण के प्रति गोरखपुर वासियों की प्रतिबद्धता दर्शाता है.
2: इस वेस्ट वंडर पार्क के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कचरे के निस्तारण से बना यह पार्क कचरे को कंचन में बदलने का शानदार उदाहरण है. उन्होंने कहा कि नीयत साफ हो तो नियति बदलने में देर नहीं लगती. इस पार्क में कचरे से मोर, शेर, जिराफ और पेड़ पौधों की आकर्षक आकृतियां बनाई गई हैं. पार्क में बच्चों के लिए बनाया गया किड्स जोन भी प्रमुख आकर्षणों में से एक है. इसमें झूले और प्लांट पॉट भी वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए हैं. पार्क के बीचों बीच योग स्थल का निर्माण भी किया गया है जहां लोग सुबह शाम प्रकृति के बीच योग कर सकते हैं. कुल मिलाकर यह इको पार्क शहरवासियों के लिए घूमने फिरने के साथ साथ एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट भी है. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता.
3: And now from Gorakhpur, we take you all to Mumbai, where Dr. Bhau Daji Lad's Museum, one of Mumbai's most iconic buildings and museums, is celebrating its 154th opening day today. Established in 1855, the museum opened its gates to history enthusiasts and the general public on 2nd of May in the year 1872, offering a visual tour of Mumbai's evolution. We have more on this from our Mumbai correspondent.
4: Located on the premises of Jiza Mata Udyan in central Mumbai, Dr. Bhau Daji Lad Museum is Maharashtra's oldest and India's third oldest museum. It houses a unique collection that narrates the story of Mumbai and how it evolved into the financial capital of the country. Let's hear more from archaeologist and former curator of Dr. Bhau Daji Lad Museum, Ruta Vagmare Baptista.
5: Bombay Presidency did not have museums, and there were major international exhibitions happening for which they required objects from Western India, and that led to a certain group of educated individuals, educated philanthropists, saying that, okay, if we had a museum here, and in 19th century museum movement had started across India. So in fact, in Bhau Daji Lad's speech, he says that the museum should be read like a book. That was the idea behind creating this museum.
4: Originally named the Victoria and Albert Museum, the museum was renamed on 1st November 1975 in honor of Dr. Bhau Daji Lad. Dr. Bhau Daji Lad Museum, unlike most museums, is not silent and serious, but playful and vibrant, as school children constitute a large number of visitors here. So, the next time you visit Mumbai and Jiza Mata Udyan, do not forget to peer into the iconic building of Dr. Bhau Daji Lad Museum and catch a glimpse of Mumbai's glorious past. For Parikrama, this is Ankita Apte from Mumbai.
3: And if we talk about the sports news, in IPL cricket, Chennai Super Kings will take on Mumbai Indians at the M.H. Chidambaram Stadium this evening, and the match will begin at 7:30 p.m.

0: नीतीश की जनता के लिए समर्पित कर दिया। वे गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे।
1: And today we also pay tribute to Hemchandra Goswami, who was an influential Assamese intellectual renowned as a writer, poet, historian, teacher and linguist, who significantly shaped modern Assamese literature and language during the Janaki era. He emerged as one of the Trimurti of early modern Assamese literature alongside Lakshminath Bezbarua and Chandra Kumar Agarwal, contributing to the revival and standardization of Assamese as a distinct literary medium. His multifaceted work bridged traditional Vaishnavite scholarship with colonial era reforms while advocating for Assamese identity against Bengali dominance.
0: और अब हम याद कर रहे हैं 20वीं शताब्दी के विश्व के महानतम फिल्मी हस्तियों में शामिल सत्यजीत रे को। उन्होंने यथार्थवादी धारा की फिल्मों को नई दिशा देने के अलावा साहित्य, चित्रकला जैसी अन्य विधाओं में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सत्यजीत रे प्रमुख रूप से फिल्मों में निर्देशन के रूप में जाने जाते थे, लेकिन लेखक और साहित्यकार के रूप में भी उन्होंने उल्लेखनीय प्रगति की। सत्यजीत रे फिल्म निर्माण से संबंधित कई काम खुद करते थे। इनमें निर्देशन, छायांकन, पटकथा, पार्श्व संगीत, कला निर्देशन, संपादन आदि शामिल थे। फिल्मकार के अलावा वो कहानीकार, चित्रकार और फिल्म आलोचक भी थे। सत्यजीत रे कथानक लिखने को निर्देशन का अभिन्न अंग मानते थे। सत्यजीत रे ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया। इनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र, लघु फिल्में शामिल थीं। इनकी पहली फिल्म पाथेर पांचाली को कान फिल्मोत्सव में मिले सर्वोत्तम मानवीय प्रलेख पुरस्कार को मिलाकर कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे।
1: And as you just mentioned, Mukesh, she was not only a film director, but also a screenwriter, an author, a lyricist, a magazine editor, an illustrator, a calligrapher, and a composer. He began composing his own film music in 1961, created iconic songs and themes known for their Bengali cultural roots, sharp satire, and melodic simplicity. And of course, who can forget the key songs which come from Gopi Gayan Bagha Bayan, while his background scores are renowned for their emotive impact also.

0: और विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाने वाले सत्यजीत रे को भारत रत्न 1992 में मिला। इसके अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: The iconic film Shatranj Ke Khiladi is based on a short story by the legendary Munshi Premchand. Satyajit Ray masterfully expanded the narrative, blending it with the political turmoil of 1856. In this movie, he directed this movie, and let's hear a dialogue from this picture.
2: Mirza Sajjad Ali Shah de rahe. Yahi hai safed fauj ke badshah, aur in par lal wazir hamla karne ki taak mein hai. Mir sahab, badshah bachaiye. बादशाह गया तो खेल खत्म।
0: तो श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
1: नमस्कार, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
4: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र

0: के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। मगराहाट पश्चिम में 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 3 बजे तक 72.43% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज गुजरात के सूरत में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए और 1 जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रहने और लू चलने की आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वी तट पर भी लू की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पहले और तीसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश तथा बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स ने 226 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। वहीं डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना फ्रांस से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल भारत ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। लक्ष्य सेन चोट के कारण आज मैच नहीं खेल पाएंगे और उनकी अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट पर उतरेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब जब कह ही दिया है कि यूं ही गाते गुनगुनाते हाँ ये सफर चलता रहे, तो शुरुआत करते हैं इस सफर की। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 के साथ, और शनिवार की शानदार जानदार शाम में आपके साथ मैं सीमा वर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। बहुत खूबसूरत गीत 80s और 90s के लाई हूँ, अलग अलग जॉनर के। पहला गीत आपकी नजर करती हूँ, आप तो साथ हैं ना 100.1 के।

उदित नारायण साहब और अलका याज्ञिक जी की आवाज़ों में। अभी ये गाना हमने सुना फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, और कितना ज़बरदस्त संगीत रहा इसमें, पूरा का पूरा हिंदुस्तानी संगीत जिसे कहते हैं। और आखिर में अगर आपने महसूस किया होगा तो ढोल और डफ जो बज रहा था, इतने प्यार से कोई अगर किसी को रोकेगा तो बताइए ज़रा, आप रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? बहरहाल आइए, हमने तो बिल्कुल नहीं रुकना है क्योंकि हमने और आगे बढ़ना है। वैसे साथियों, कोई भी चीज़ बदलते हुए अच्छी लगती है, लेकिन अपना पुराना दोस्त, अपना पुराना प्यार अगर बदलता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है ना, और फिर वो जो उथल पुथल होती है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि प्यार की सरजमी पर बार बार ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है कि हम सामने वाले को बहुत प्यार करते हैं। ऐसी ही कुछ मिली जुली सी बात आने वाले इस गाने में भी है, सुने।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

5:28:10 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 और शनिवार की जानदार शानदार शाम में आपके साथ मैं सीमा वर्मा गाते गुनगुनाते कार्यक्रम है जिसमें हमारा म्यूजिकल सफर जो है वो आगे बढ़ रहा है। कई बार गीतों के शब्द हमें भा जाते हैं, कई बार कुछ धुनें ऐसी होती हैं कि शब्द तो याद नहीं रहते लेकिन धुनें याद रह जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कहीं से कोई कमी नज़र नहीं आती, शब्द भी याद रह जाते हैं, लिरिक्स और धुन तो याद रहती ही है। एक और गीत आप तक पहुंचा रही हूं, ऐसा हो नहीं सकता आपने ये गीत ना सुना हो या फिर

स्टोरी लाइन के हिसाब से किस तरह से गीत जो हैं वो लिखे जाते हैं, इसमें पता चल जाता है कि कहानी जो है वो संबंधों की कहानी होगी और कच्चे धागों की ये कहानी। वैसे बंधन कच्चे धागों का, अगर आप अपना सच्चा प्यार उसमें डालते हैं, विश्वास डालते हैं और बहुत कुछ, कहते हैं जैसे पौधे को सींचना पड़ता है वैसे रिश्तों को भी सींचना पड़ता है। एक ऐसी ही फिल्म आई, साल रहा 81 यानी 1981, 9th अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज हुई और ये जो अभी हमने रिश्तों का जिक्र किया है इसी पर बेस्ड एक फिल्म जिसमें शमी कपूर साहब

पद्मनी कोल्हापुरी, कुणाल कपूर, शशिकला आदि नजर आए। एक भावनात्मक फिल्म रही ये, और कन्नड़ फिल्म की रीमेक, पारिवारिक बंधनों और सामाजिक दबाव से कैसे कभी कभी प्यार अधूरा।

ये सच्चाई है और ये सच है साथियों, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन से कई बार असंतुष्ट रहते हैं। कहते हैं कि जो आपको प्राप्त है वही अगर आपको पर्याप्त हो तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक बार पुनः याद दिला दूं कि आप एफएम गोल्ड 100.1 के साथ हैं और 5:40 और पूरे 50 सेकंड हुए जाते हैं। आप उस सफ़र में हैं जिसे गाते गुनगुनाते कहते हैं और आपके साथ मैं सीमा वर्मा हूं। कोशिश कर रही हूं कि हर मूड के गाने आप तक पहुंचाऊं। अब जिस तरह ये जो अभी हमने सुना थोड़ा सा दर्द भरा था और ऐसे में दर्द से भरा तो नहीं है लेकिन इमोशंस से भरा गीत आपके समक्ष अब आने जा रहा है। 1989 में एक फिल्म आई ईश्वर, बेहद खूबसूरत नाम और बहुत सुंदर अदाकारी। अनिल कपूर साहब ने इस फिल्म में एक्टिंग कर साबित किया कि वो हर तरह के रोल्स को बखूबी निभा सकते हैं। अनिल कपूर साहब के साथ हमने विजय शांति को देखा। ये एक तेलुगु कल्ट फिल्म की रीमेक रही और बहुत खूबसूरत कहानी, खूबसूरत गीत। अब जो मैं आपको गीत सुनवाने जा रही हूँ नितिन मुकेश साहब और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ों में है और इस फिल्म को बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिलता है, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी मिलता है। तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है और ये जो वीकेंड है, अब आज देखिए शनिवार है और वीकेंड का हम पूरा पूरा क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। अब कई सारे काम होते हैं जो करने होते हैं, घर के काम होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन थोड़ा सा इंजॉय भी तो करना होता है। तो अगर आप परिवार के साथ देखें, घर बैठकर देखिएगा ये फिल्म, अच्छा लगेगा आपको। बहुत ही सुरीले गीत कह सकते हैं इसमें। आइए सुनते हैं एक गीत।

टाइम बता दें जी आपको, वरना आप कहेंगे कि सीमा ने समय नहीं बताया। 5:54 और पूरे 40 सेकंड हो गए हैं। और ये भी याद दिला दूं आपको, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन है जी 100.1, और शनिवार की जानदार शानदार शाम में आपके साथ मैं सीमा वर्मा। और अब समय बता दिया है, इसका मतलब आज के प्रोग्राम का आखिरी गाना है ये, बहुत सुंदर बहुत प्यारा गाना है। जैसे मैं अभी इमोशंस की बात कर रही थी तो बहुत खूबसूरत इमोशंस हैं इसमें, प्यार है किसी के लिए। कहते हैं जिंदगी एक हसीन मौका है जो सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए है, और अगर ये जिंदगी का मौका एक बार के लिए है तो हम किसी को खुद से दूर क्यों करें।

किसी को रूठ के जाने का मौका क्यों दें? सोचिएगा जरा, अगर कुछ ऐसा होता है तो इस हसीन मौके का फायदा उठाइए और जाने वाले को रोकिए, फिर देखिए क्या होता है।

तो करती हूँ साहब आपको इस गीत के हवाले। आप शाद रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। सीमा वर्मा को इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। मगराहाट पश्चिम

0: 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 3 बजे तक 72.43% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया,
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज गुजरात के सूरत में संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ काम करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 1 जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने और लू चलने की आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वी तट पर भी लू की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पहले और तीसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश तथा बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
1: धन्यवाद राजेश. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताज़ा आर्थिक खबरें आप तक लाते हैं. आज शनिवार है और आज हम आपके फ़ोन कॉल भी सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे. आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु किसी विशेष स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में आपको नहीं दे पाएंगे. आप हमें इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है.

0: वेलकम शरद।
1: थैंक यू सो मच सोनू, थैंक यू सो मच राजेश, और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन।
2: और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक लेकर आ रहे हैं राजेश लेख।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस राइज मॉडरेटली दिस वीक, रैप्स अप्रैल विद 7% सर्ज। Major US stock indices continue to hit record highs as investors see strong corporate earnings, and global crude oil prices jump this week.
2: प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक इस सप्ताह मामूली बढ़त में रहे। अप्रैल के महीने में कुल 7% का उछाल दर्ज हुआ। मजबूत कॉर्पोरेट आमदनी से निवेशक उत्साहित। प्रमुख अमरीकी शेयर सूचकांकों में रिकॉर्ड तेजी बनी रही और इस सप्ताह कच्चे तेल के वैश्विक कीमतों में आया उछाल।

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब हमारे आज के पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुंबई से अमित है हमारे साथ। आपका स्वागत है, सवाल पूछें।
2: थैंक यू मैडम। मैडम मेरे दो सवाल है एक्सपर्ट से कि क्या जरूरी है कि सपोज 12 लाख से कम यदि सीनियर सिटीजंस का इनकम है तो आईटीआर फाइल करना जरूरी है क्या? और नंबर दूसरा है कि सवाल था कि सपोज 12 लाख के आगे यदि इनकम जाता है 12 लाख 100 रुपए तो उसके ऊपर टोटल टैक्स कितना हो सकता है? थैंक यू।
3: चलिए अमित, आपका पहला सवाल है कि अगर 12 लाख से कम है तो क्या सीनियर सिटीजन के लिए फाइल करना जरूरी है? देखिए ये डिपेंड करता है, मान लीजिए उनका कोई टीडीएस कटा हुआ है टैक्स सेट सोर्स तो फिर तो फाइल करना होता है, पर अमूमन 12 लाख से कम पर फाइल नहीं। पर हम लोग असूलतन क्या करते हैं कि जिन लोगों को रिबेट मिल रहा है 12 लाख का उनको टिपिकली रिटर्न फाइल करना चाहिए क्योंकि किसी भी साल में आपका एक्सीड भी कर सकता है। तो होगा क्या, कई बार ऐसा होता है कि दो साल फाइल किया, एक साल नहीं फाइल किया, फिर उसके बाद अगले साल फाइल किया, तो कई बार आयकर विभाग से नोटिस आता है कि आपने पिछले साल का क्यों नहीं फाइल किया, फिर आपको पुराने रिकॉर्ड्स खोल के बताना पड़ेगा इसलिए नहीं फाइल किया। तो अगर कंटिन्यूटी बनी रहे
0: इट्स एडवाइजेबल,
3: हाँ तो ऐसा एडवाइजेबल है। दूसरा आपने पूछा कि अगर 12 लाख 100 रुपए है तो देखिए 12 लाख का पहले आप रिबेट लेंगे, रिबेट लेने के बाद आप देखेंगे कि आप कौन से स्लैब में फॉल करते हैं। आपको पता होगा स्लैब 5, 10, 15, 20, अब जो न्यू रेजिम की मैं बात कर रहा हूं ज्यादातर ऐसा मेरा मानना है राजेश सोनू के इस बार करीब करीब 2/3 से ज्यादा लोग न्यू रेजिम में आ जाएंगे क्योंकि ये 12 लाख की वजह से वो इतनी लुभावनी हो गई है। तो उसमें जिस भी स्लैब में होंगे हमें तो उस स्लैब के हिसाब से वो अपने बाकी के बचे हुए 100 रुपए पर वो टैक्स दे देंगे। जी,
0: joining us now from Jaipur is Jitendra. A warm welcome, Jitendra.
4: हाँ जैसे ये एक बात बताइए, जैसे कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा, फ्लैट और लैंड दोनों पकड़ लीजिए, रियल इस्टेट में तो दोनों आएगा
3: जी,
4: तो और लंबे समय के लिए
3: जी,
4: क्योंकि रहने के लिए तो घर है आदमी के पास
3: जी,
4: तो निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट का फायदा है या रियल इस्टेट में या म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए, अगर सिस्टमेटिक एकदम से जो उसका ईएमआई आएगा वही अगर निफ्टी 50 में लगाते जाए तो कोई हेडेक भी नहीं है, क्या आप सोचते हैं सर?
3: देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपका निफ्टी 50 और म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर लेता हूँ क्योंकि आपका तीसरा एसेट क्लास बिल्कुल ही भिन्न है इन दोनों से। तो निफ्टी 50 आपको जो निफ्टी की टॉप 50 कंपनियां हैं उनके अंदर निवेश करने का अवसर देता है और बहुत लंबे समय के लिए रख रहे हैं। तो मैं एक उदाहरण लेता हूं, जब कोविड आया था तो निफ्टी लगभग 7,500 पे आ गया था, आज जब हम बात कर रहे हैं निफ्टी लगभग 24,000 के आसपास है। तो लॉन्ग टर्म में क्योंकि कंपनीज की ग्रोथ होती है, उनके प्रॉफिट की ग्रोथ होती है, तो लॉन्ग टर्म में निफ्टी ऊपर जाता है। ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल बाद निफ्टी नीचे आया, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। तो इसलिए निफ्टी 50 अच्छा है, म्यूचुअल फंड्स भी लंबे वक्त के लिए अच्छा है, पर आप SIP के माध्यम से आए तो ज्यादा अच्छा है। मैंने SIP मुझसे बहुत
1: और लंबा वक्त आप कह रहे हैं करीब
3: ये तो खुद ही 10 साल कह रहे हैं, बिल्कुल 10 साल। मुझे लगता है कि 10 साल से कम का नजरिया नहीं रखना चाहिए। और लोग क्या करते हैं SIP में म्यूचुअल फंड में करते हैं फिर 1-2 साल बाद NAV नीचे आती है, तो मैंने तो SIP को एक नया नाम दिया है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो उसको कहते हैं, मैं उसको सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान कहता हूं क्योंकि अगर आपके पास सब्र नहीं है तो फिर आपको SIP नहीं करना चाहिए। अब आपका जो पहला पोर्शन था जितेंद्र वो बहुत ट्रिकी है क्योंकि आपने कहा कि रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट का जो निवेश है बहुत सब्जेक्टिव होता है कि आपको आप अपार्टमेंट में कर रहे हैं, आप किसी घर में कर रहे हैं, आप लैंड में कर रहे हैं, कमर्शियल में कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल वेयर हाउस में कर रहे हैं, तो ये जनरलाइज करके जितेंद्र नहीं बताया जा सकता। आप हालांकि मैं रियल एस्टेट पर बहुत बोलता हूं और मुझे रियल एस्टेट की काफी जानकारी है, तो कौन सा शहर है, किस प्रकार का एसेट है, वो उसकी ROI मतलब वहां पर ग्रोथ पीछे कैसे रही है, मैं जनरली सलाह देता हूं रियल एस्टेट वालों को। आजकल एक नया तरीका मुझे मिला क्योंकि रियल एस्टेट पे इतने सवाल आते थे, अपार्टमेंट लें, दुकान लें, कोठी बना के उसको रखें लंबे वक्त के लिए, उसको किराए पे दे दें। तो मुझे लगता है जिस तरफ जितेंद्र ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जिस तरफ शहर चल रहा हो, शहर भी चलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जाते हैं, अरे 3 साल पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, आज देखो यहाँ मॉल बन गया, मार्केट बन गई, अपार्टमेंट बन गए। तो जो शहर जिस तरफ चलता हो उसको प्लानिंग कहते हैं, जिस तरफ प्लानिंग चल रही हो उस तरफ लैंड लेके अगर आप उसको सिक्योरली रख सकते हैं तो वो अच्छा होता है। बाकी जितेंद्र, दोनों में सीधा कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, मुझे लगता है दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। और अगर मैं एसेट क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन करना भी चाहूं तो मुझे उसके लिए स्पेसिफिक्स में जाना पड़ेगा कि वो आपकी रियल एस्टेट कहां पर है, कौन डेवलपर है, अपार्टमेंट है, छोटा है, बड़ा है, और पेमेंट टर्म्स क्या थी, उस इलाके की सराउंडिंग्स कैसी हैं, तो इस सब पे आधारित हो सकता है। बाकी मैंने आपको म्यूचुअल फंड और निफ्टी का जरूर बताया, वो दोनों लंबे अवधि के लिए बहुत अच्छी बात है। रियल एस्टेट के लिए थोड़ा सा हमें और गहराई में आप ले जाएंगे बिना किसी डेवलपर का नाम लिए, तो मैं बेहतर आपको जवाब दे पाऊंगा, और बहुत कन्विंसिंग ऐसा मुझे लगता है कि मैं जवाब दे पाऊंगा अगर आप मुझे स्पेसिफिक्स बताएं तो।
1: और अब अगले कॉलर दिल्ली से अमित झा हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें।
5: हेलो, हाँ नमस्कार सभी को।
0: जी
5: कोहली सर।
3: जी नमस्कार
5: सर, पिछले सप्ताह जो मैंने सवाल आपसे प्रश्न पूछा था, थोड़ा इसको स्पष्ट कर दूं सर।
3: जी
5: मैंने डॉलर के बारे में मैंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए हम कोई भी क्षेत्रीय जो भी मान लीजिए चीन है, जापान है या मलेशिया है, पहले हम एशिया देश की बात कर लेते हैं, जो हम इम्पोर्ट करते हैं, लाइक मान लीजिए हम पाम ऑयल खरीदते हैं, मान लीजिए एक लीटर का एग्जाम्पल 100 रुपए का 1 लीटर है, ठीक है सर, और हम बासमती राइस उनको निर्यात करते हैं मान लीजिए सर
3: जी,
5: तो 100 रुपए किलो बासमती राइस है, तो हम क्या करेंगे ना सर, गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसे पॉलिसी बनाए अगर आप 1 किलो पाम ऑयल उधर से देते हैं तो उसको आप डॉलर में पेमेंट हमें मत कीजिए
3: जी,
5: और ना ही हम आपको डॉलर में पेमेंट करेंगे
3: जी,
5: आप हमसे 1 किलो बासमती राइस ले लीजिए, 1 किलो आप वो क्या कहते हैं पाम ऑयल ले दीजिए, बराबर हिसाब हो गया
3: जी,
5: ना हमें डॉलर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी, ना ही कोई मीडिएटर की जरूरत पड़ी। पहली बात। दूसरे सवाल सर, दूसरा सवाल ये सर कि जो अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे जो दबाव था मार्जिन को लेकर के, जैसे कि मान लीजिए $70 से लेके $120 के बाद उन्होंने जो इंपोर्ट करना शुरू किया सर
3: जी,
5: तो हालिया दिनों में कल जो बढ़ोतरी हुई है
3: जी,
5: तो क्या उन कंपनियों के मार्जिन पे अब थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़ेगा सर, क्योंकि हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनी ले रखी है सर, इसलिए पूछ रहा हूँ। धन्यवाद सर।
3: देखिए अमित, आपका पहला सवाल जो है वो पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसमें क्या होता था कि आप बदले में सामान के बदले, जब करेंसी किसी जमाने में नहीं हुआ करती थी, एक सामान लिया जाता था, एक दिया जाता था। आजकल के जमाने में अमित इसको संभव नहीं, और इसलिए संभव, आपने जैसे इंडोनेशिया मलेशिया का एग्जाम्पल लेके भारत से ऑयल लें, हम उनको ये दें बासमती दें, अब उनको बासमती नहीं चाहिए, उनको कोई ऐसी चीज चाहिए जो मान लीजिए भारत के पास है ही नहीं, या हमें उनसे ऑयल नहीं, हमें कुकिंग ऑयल नहीं, हमें कुछ और चाहिए, तो बार्टर। और दूसरा, वैल्यू टू वैल्यू उसको अलाइन करना भी अमित बहुत कठिन है। आप ये तो छोड़िए, मैं राजेश और सोनू के इजाजत से एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। भारत और रशिया ने जब रूपी रूबल ट्रेड शुरू किया तो ऐसा हुआ कि क्योंकि अभी भारतीय रुपया 18-20 कंट्रीज में चल रहा है, उनके पास इतने सारे रुपए इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा अब हम इन रुपए का क्या करें, क्योंकि ये तो बहुत सारे हो, ये तो बाकी जगह तो चलते नहीं है, तो आप तो बहुत इसको अलाइन करना आजकल के युग में बहुत कठिन है, और डॉलर में इंटरनेशनल ट्रेड मेजर किया जाता है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, आपकी आवाज मैं उम्मीद करता हूं बहुत, आपकी आवाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तक भी पहुंच रही होगी, हो सकता है आपके सुझाव का कोई संज्ञान लेके ऐसा कुछ कर पाए। ऐसा करिए ना, पहले आप किसी दुकान पे इसको हम यहीं पर ट्राई करते हैं, कि जैसे आप दुकान पे कुछ लेने गए तो आपने रुपए की जगह उनको कोई सामान बोलिए कि ये ले लें, तो बहुत कठिन है आजकल के जमाने में, बहुत कठिन है। आपने दूसरा पूछा ओएमसीज का, बिल्कुल देखिए कीमत बढ़ाने का, जो कमर्शियल सिलेंडर पे कीमत बढ़ाने की घोषणा हुई है इसीलिए की गई है क्योंकि उनके जो मार्जिन थे वो बहुत प्रेशर में थे, तो कुछ राहत तो उनको मिलेगी, अब देखिए कितनी राहत मिलेगी, क्या आगे और भी बढ़ेंगे घटेंगे, ये सब निर्भर करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, कि वहां पर कितनी जल्दी ये जो स्टेलमेट बना हुआ है ये वहां पर हटता है कि नहीं हटता, तो बारीकी से नजर बना के रखिए।

0: परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है और पूरे विश्व में अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं कि भारत में अच्छी नहीं है, पूरे विश्व में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बुरी हालत है। अमेरिका में मुझे पता लगा कि $5 प्रति गैलन अब एनर्जी प्राइसेस हो गई है, 3 से 4.6 गई, 4.6 से 5। एक गैलन में लगभग 4.25 लीटर होते हैं, वो हम लोग पेट्रोल डीजल बोलते हैं, वो गैसोलीन बोलते हैं, तो वहां भी बढ़ रही है। तो देखिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है उसको खुद भी कीमतों से जूझना पड़ रहा है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कुछ राहत मिली होगी, पर मुझे लग रहा है लोग अपनी राहत की इस बार ज्यादा उनको चिंता है कि कहीं, हालांकि भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, अभी आम आदमी के ऊपर नहीं डाला, पर अगर मुझे लगता है कि $120 या उससे ऊपर रहता है तो कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं।
1: रत्नाकर जॉइंस अस नाउ फ्रॉम मुंबई, अ वार्म वेलकम रत्नाकर।
2: हेलो, गुड इवनिंग सर।
1: गुड इवनिंग।
2: मेरा सवाल ही इसे ही बारे में है कि जागतिक स्तर पर पेट्रोल डीजल और गैस की पोजीशन ठीक नहीं है
0: जी,
2: इसलिए कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन व्यावसायिक सिलेंडर का जो वृद्धि हो गई है
0: जी,
2: वो बहुत हो गई है
0: जी, जी।
2: इतनी होनी नहीं चाहिए थी, थोड़ी कम होनी चाहिए थी
0: जी।
2: तो आम आदमी के लिए, बहुत से लोग ऐसे है उनका डेली लंच होटल में होता है
0: जी,
2: तो ऐसे लोगों के लिए कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी, इसके लिए आपकी क्या राय है? ये बढ़ोतरी ऐसी हो जाएगी तो कैसा आदमी कर सकता है? और दूसरा सवाल है कि ऐसे हालत में आगे की रणनीति, यानी रिटेल इन्वेस्टर ने ये जो नेक्स्ट वीक में कैसा शेयर मार्केट का प्रोग्रेस रहेगा?
0: देखिए, आपने जो पहला सवाल पूछा कि जो कमर्शियल सिलेंडर्स पे रेट बढ़ाया गया उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो ठीक है कि रेस्टोरेंट्स हो गए, केटरर्स हो गए, क्लाउड किचन्स हो गई, इंडस्ट्रियल यूज हो गया, उन सब की कॉस्ट बढ़ेगी। पर ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से कीमत बढ़ी है कि काफ़ी इनके मार्जिनस के ऊपर प्रेशर था, बल्कि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ सिलेंडर पैकिंग कंपनीज लॉस में भी थी, तो उस लॉस को किसी तरह रिकवर करने की कोशिश की। मुझे ये भी नज़र आता है कि कुछ डोमेस्टिक सिलेंडर, क्योंकि आम आदमी को प्रभावित है, तो कुछ उसका लोड भी शायद कमर्शियल पर डाल रहा है। बिल्कुल, देखिए एक वैश्विक समस्या है, इस सबसे हम सबको मिलकर जूझना पड़ेगा, और मुझे लगता है सरकारी तंत्र से भी यही आती है कि एक ऐसी परिस्थिति है जो असाधारण है। दूसरा, आपने पूछा अगले हफ्ते मार्केट की पोजीशन कैसी रहेगी। मार्केट तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नजर बनाए हुए, मार्केट क्रूड ऑयल पर नजर बनाए हुए, मार्केट जो है रुपए और डॉलर पर नजर बनाए हुए, और मार्केट FII सेलिंग पर बनाए हुए, और आजकल तो मार्केट ने अभी देखा आपने बीच बीच में उठती भी है, जो कंपनी स्पेसिफिक रिजल्ट आ रहे हैं Q4 के और उस पर भी नजर बनाए हुए। तो ये सब फैक्टर्स रत्नाकर जी कंट्रीब्यूट करेंगे। इस समय इतनी अनिश्चितता मार्केट में फैली हुई है कि कुछ भी लंबे क्या मिड टर्म में, शॉर्ट टर्म में भी कुछ भी कह पाना बहुत कठिन है। वी आर जस्ट टेकिंग वन डे एट अ टाइम, एक दिन एक एक दिन हम करके मार्केट में ले रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी है। तो आप समझ रहे हैं, आप तो बहुत वेटरन है, आप बहुत तजुर्बेकार है, मुझे लगता है आपसे बेहतर इसको कोई नहीं समझ पाएगा।
3: आपने बात की मार्केट की, तो देखते हैं कि इस सप्ताह सेंसेक्स में कैसा प्रदर्शन रहा। कल अवकाश के कारण 4 दिन के कारोबारी सप्ताह के दौरान प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में प्रगति ना होने, कच्चे तेल की कीमतें उच्च स्तर पर बने रहने, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बिकवाली जारी रहने और US फेडरल रिजर्व का रुख कड़ा रहने के बीच निवेशकों की धारणा सतर्क बनी रही। सप्ताह के दौरान बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 0.3% की वृद्धि से 250 अंक बढ़कर 76,914 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 0.4% की तेजी से 100 अंक बढ़कर 23,998 पर दर्ज हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में प्रदर्शन और भी बेहतर था। इस सप्ताह के दौरान मिड कैप 100 सूचकांक 0.7% बढ़ गया और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 2.5% का उछाल आया। मासिक आधार पर बात करें तो मार्च के महीने में आई तीव्र गिरावट से अप्रैल के दौरान आंशिक रूप से उभरते हुए निफ्टी में 7.5% का उछाल आया और सेंसेक्स में 6.9% की वृद्धि दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 66 पैसे की कमजोरी दर्ज करता हुआ 94.91 रुपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ। आप पहले ही कह चुके हैं कि वी हैव टू वेट एंड वॉच, और लेट्स होप कि जो अप्रैल में उछाल आया है उसी का अनुसरण शायद
0: जी वो जारी रहे, उम्मीद तो यही करते हैं।
3: और अब दिल्ली से लेते हैं अगले कॉलर, रवि आपका स्वागत है, सवाल पूछें। रवि से हमारा संपर्क टूट गया है।
1: सो व्हाट इज देयर इन द इन्वेस्टर सेंटीमेंट दैट विल दैट कैन बी लिफ्टेड अप द फोर रीजंस दैट वी हैव गिवन, प्रोग्रेस इन USA

0: क्रेडिट ले सकते हैं। तो अगर जिस भी देश में वो शर्मा जी हैं उनके साथ मुझे पूरा यकीन है कि DTAA है, तो आप उस DTAA के का सहारा लीजिए। और बिल्कुल भी आपके सवाल का मैं सीधा जवाब दूं, डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा। एक बार को तो लगेगा, पर आप दूसरे देश में जहां पर आप बाद में दे रहे हैं उसमें आप, तो अगर ये वहां के रेजिडेंट्स हैं तो जो भारत में टैक्स देंगे उसका ये US में या जिस भी देश में है वहां पर उसका क्रेडिट ले सकते हैं। भारत और US का भी DTAA, मुझे नहीं पता कौन से देश में है, जर्मनी की आपने बात करी, जर्मनी के साथ भी है, जर्मनी में उसका वो क्रेडिट ले सकते हैं।
1: Moving on, the benchmark S&P 500 and the tech-heavy Nasdaq Composite closed at record highs yesterday as investors weighed strong corporate earnings and a dip in crude oil prices. The Nasdaq Composite Index climbed 0.9% to 25,114 and the S&P 500 added 0.3% to 7,230, while the Dow Jones Industrial Average dipped 0.3% to 49,499. For the week, the Nasdaq advanced 1.1%, S&P 500 gained 0.9%, and the Dow added over 0.5%. Sharad, we were talking about the corporate earnings in India, and it seems that is also attracting the investors in the US as well, as they seem that the corporate earnings are going to go up and that there is going to be a dip in the crude oil prices. Now, how will all this play out in the coming week?
0: I think things in the US as far as on economic parameters, Rajesh,
1: or is it short-lived?
0: Yes, you said it all in one word, because I think there is a couplet in Urdu, dil behlane ko ghalib khayal achha hai. So I think the economic parameters do not seem to be favoring that, because a country which is in war, you know, cannot be celebrating in stock markets. So I have a feeling that
2: and ye hamesha se dar tha ki unke margins hit honge companies ke, so maybe lagged effect ke sath shayad hame
0: ha wo lagged effect hai aapko jab ye yuddh samapt hoga, kehte hain ki jab yuddh samapt hota hai to kya खोया क्या पाया वो बाद में पता लगता है। जब युद्ध चल रहा होता है तो इन द रश ऑफ ब्लड आप बहुत सारी चीजें नहीं देख पाते, ऐसा मुझे नजर आता है।
2: योगेश है दिल्ली से हमारे अगले कॉलर। योगेश जी, सवाल पूछिए।
3: जी, मैं सवाल ये कि जिससे इंडिया में SIP को बहुत ज्यादा जोर शोर से बेचा जाता है इन्वेस्टर्स को कि SIP कर दो, भूल जाओ SIP कर दो, भूल जाओ
0: जी जी,
3: तो क्या SIP बाहर देशों में भी SIP करी जाती है, क्या उसमें भी उसको SIP बोला जाता है, और अलग अलग कंट्रीज में से किस नाम से या किस मेथड से इन्वेस्ट करने के तरीके बोले जाता है?
0: देखिए योगेश, SIP स्वयं ही एक निवेश करने का तरीका है। इनफैक्ट मैं तो SIP का प्रयोग खाली म्यूचुअल फंड्स के लिए नहीं करता हूं, मैं तो SIP का प्रयोग गोल्ड सिल्वर में निवेश करने के तरीके को बोलता हूं, जैसे शेयर्स में भी। SIP मींस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, और मैंने तो SIP का एक नया नाम रखा, अभी मैं जिक्र कर रहा था, सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आपको सब्र होना चाहिए। देखिए SIP का, बाकी देशों में भी SIP होती है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, SIP कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। SIP का मतलब है कि आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें और अलग अलग लेवल्स पे एंटर करें, तो ये तो हम किसी भी देश में कर सकते हैं, नाम भले कोई भी हो। तो SIP बाकी देशों में भी है, आपके सवाल का पहला जवाब। दूसरा, इसको इसलिए अग्रेसिवली बेचा जाता है कि ये हाल में बहुत ही कारगर तरीका निकला है, क्योंकि एक तो इसमें ऑटोमेटिकली आपकी इनकम से पैसा जाता रहता है, तो आपको पता नहीं लगता है थोड़ा थोड़ा करके। दूसरा ये कि लंबे वक्त के लिए जाता है, जो कि शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा असूल है, जिसने
2: भी पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए भी कन्वीनियंट
0: है, बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं, बस बैठ जाइए आप 10 साल तक अगर लेके। और मैंने देखा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग SIP की बात कहता हूं संक्षेप में, कि 10 साल के लिए अगर आपने करी, देखिए 10 साल में कोविड भी आ गया, अगर मैं 2019 में घुसता, कोविड भी आ गया, ये युद्ध भी आ गया, सरकारें भी बदली, आपने सब कुछ अपने पेट में डाइजेस्ट कर लिया और मार्केट जो थी एक डायरेक्शन के हिसाब से चलती गई। तो इसलिए SIP योगेश अच्छा है, इसको किसी वजह से बेचा जाता है, और आप भी अगर लंबे वक्त तक रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बाद में रिग्रेट नहीं करेंगे।
2: और शहनाज हमारी अगली कॉलर है मुंबई से। शहनाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछे।
4: हेलो, हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।
2: जी
0: गुड इवनिंग,
2: जल्दी से
4: पूछे। शरद जी, शरद जी, मेरा सवाल था, मैंने 26AF फाइनेंशियल ईयर 25-26 का चेक किया, तो विद द सरप्राइज मेरे 26AF में एक 18 लाख की कार रिफ्लेक्ट कर रही है।
0: अच्छा।
4: और वो भी 18 लाख से मेरे पेन से दिया, मुझे मॉनेटरी कुछ लॉस नहीं है, ओवर एंड अबव दैट डीलर को भी 18,000 दिया है, कुछ 1% देना होगा, क्या देना होगा
0: जी?
4: इसके आगे मैंने डीलर को और इनकम टैक्स ग्रीवेंसेस में मेल डाला, लेकिन दोनों की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आगे चल के मुझे क्या करना है, या तो कार क्लेम करूं, या तो यहाँ से उसको हटाऊं, कैसे, वो आप प्लीज मुझे एडवाइस कीजिए। ये पर्पसली हुआ या बाय एक्सीडेंट, दैट आल्सो यू लेट मी नो। अब मैं वॉल्यूम बढ़ा करती हूँ, उसके बाद आप बोलिए। थैंक यू सो मच, बाय टू ऑल।
0: अच्छा देखिए, AIS इस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर द, मैंने इसका नया नाम रखा आईना, इसे समझिए क्योंकि आपके पूरे ट्रांजैक्शन बता देता है उसमें आ रहा है। तो उसमें शहनाज एक फीडबैक देने का ऑप्शन होता है, आप AIS खोलेंगे अपना लॉगिन करके पोर्टल पर, तो उसमें आप फीडबैक दे सकते हैं जहां पर अगर आपको कोई गलती नजर आ रही है तो आप बता सकते हैं। पर आप कह रहे हैं आपने ट्रांजैक्शन किया है, TDS भी कटा है, तो वो तो वहां रिफ्लेक्ट होगा ही। अगर असल में आपने गाड़ी नहीं खरीदी तो आप फीडबैक के जरिए वहां पर बता सकते हैं, और थोड़ा सा और समय होगा, अगली बार दिक्कत आएगी तो आप दोबारा पूछिएगा, हम इसको एड्रेस करेंगे।
1: Global crude oil prices declined yesterday after Iran sent its latest proposal to the United States to end the conflict. Later, US President Donald Trump told the media that he's not satisfied with the proposal. Meanwhile, Tehran has continued to restrict access to the Strait of Hormuz, while the US Navy is tightening controls on Iranian crude exports. Yesterday, Brent crude July futures settled 2% lower at $108.17 per barrel, while the West Texas Intermediate June futures declined nearly 3% to $101.94 per barrel. However, Brent jumped 2.7% and WTI zoomed 8% over the week. However, Brent's June contract touched $126.41 per barrel on Thursday, its highest level since March 2022 before the contract expired. So, is this rate going to have adverse repercussions on the Indian economy?
0: Well, obviously, because 87% of our crude we are importing, so obviously it is going to have a pressure on the economy.
2: समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और आगे चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, आप आए और आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी दी।
0: Thank you very much.
1: Thank you, Sharad, for being with us.
0: My pleasure.
1: And before we close the headlines once again, benchmark domestic indices rise moderately this week, wraps April with 7% surge. Major US stock indices continue to hit record highs as investors see strong corporate earnings. And global crude oil prices jump this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
2: आज अच्छे क्वेश्चन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीट के 15 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं समझा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात

0: क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए और 1 जवान घायल हो गया। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्ण कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना चोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए रवाना की गई टीम के साथ ये घटना हुई। घायल जवान का उपचार हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेट कीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। जयपुर में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने IPL इतिहास में 226 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. In West Bengal, re-polling was held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Paschim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Nearly 87% voter turnout was recorded till 5 p.m. Polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around the counting centres. The Commission said these measures are aimed at ensuring that the counting process is conducted in a secure, peaceful, intimidation-free and transparent manner. However, it clarified that police observers will not enter the counting halls under any circumstances on the day of the vote of counting. In Chhattisgarh, 4 security personnel lost their lives and 1 personnel was injured in an IED blast near the Kanker Narayanpur district border today. The incident occurred while personnel of the District Reserve Guard, DRG, were on an operation to defuse an improvised explosive device, IED. According to police, a DRG team had been deployed for demining, area domination and search operations under the Chote Bethia police station limit.

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हमारी चर्चा का विषय है वैश्विक संकट के दौरान भारत के ऊर्जा सुरक्षा को लेकर ठोस कदम। और हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जुड़े हैं। मिस्टर तनेजा, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया, धन्यवाद।
1: मिस्टर तनेजा, अभी जो ग्लोबल क्राइसिस है, वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन बनी हुई है, उसके पृष्ठभूमि में आप कैसे देखते हैं ताजा स्थिति को? अगर आप हमें एक ब्रीफ ओवरव्यू बताएं इस दृष्टिकोण से कि भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कहां तक इम्पैक्ट हुई है।
2: जैसा आप जानती हैं कि ऊर्जा सुरक्षा जो होती है किसी भी देश के लिए बड़ी अहम होती है। अगर ऊर्जा सुरक्षा नहीं है तो आपकी आर्थिक सुरक्षा नहीं हो सकती, और अगर आर्थिक सुरक्षा नहीं है तो राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं हो सकती। इसलिए भारत सरकार का जो है हमेशा ये जोर रहा है कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए। उसी के तहत अगर आप देखते हैं तो पिछले कुछ वर्षों के अंदर हमने जो अपना तेल हम मंगाते हैं, पहले हम जो तेल मुख्यतः 10 या 12 देशों से मंगाते थे, आज वो लगभग हम 42 अलग अलग देशों से तेल को मंगाते हैं। उसका कारण यही है कि अगर जहां से हम तेल मंगाते हैं अगर वहां पे किसी युद्ध हो जाए या और कोई कारण हो जाए तो जिससे हमारी जो सप्लाई है, हमारी जरूरत के लिए तेल है, उसमें बहुत बड़ी बाधा ना आए
1: जी।
2: और अगर आप देखें हमारी अर्थव्यवस्था, हम लगभग अपनी जरूरत का 87-88% तेल जो है हम अपनी जरूरत का आयात करते हैं। हम भारी मात्रा में गैस भी आयात करते हैं, लगभग 56% अपनी जरूरत का गैस आयात करते हैं, LPG भी हम भारी मात्रा में आयात करते हैं, और अगर आप देखें यूरेनियम भी हम आयात करते हैं। तो चूंकि हमारी निर्भरता आयात पे काफी है, जो तमाम देशों की है, चीन की भी काफी बड़ी निर्भरता है, जापान की तो हमसे भी ज्यादा निर्भरता है आयात के ऊपर, ऐसे में सरकार का फोकस हमेशा ये रहा कि इसको हम कैसे मजबूत किया जाए। जो पश्चिम एशिया की जो आज वहां पर युद्ध चल रहा है एक तरीके से, क्योंकि युद्ध ठीक है अभी तोपें बंद हो गई हैं, लेकिन युद्ध जैसा माहौल तो अभी बना ही हुआ है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो लगभग बंद है, जहां से भारी मात्रा में हमारा भी तेल आता था और हमारी भी LPG आती थी और हमारी भी LNG जो है वो कतार से उसी रास्ते से होकर के आती थी। लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार ने तुरंत जो है जैसे ही वहां युद्ध शुरू हुआ तो इस बात के प्रयास करे गए कि अगर जो वहां से हमारी LNG आना बंद हुई है तो और कहां से लेके आई जाए। तो उसी के तहत जो है भारी मात्रा में हमने अमेरिका से LNG का आयात बढ़ा दिया, नॉर्वे से बढ़ा दिया, हमने मेक्सिको से लेना शुरू कर दिया, हमने अल्जीरिया से लेना शुरू कर दिया, इसके अलावा जो जहां जहां से और उपलब्ध था वो हमने लेना शुरू किया। कुल मिलाकर के अगर आप जो है ऊर्जा सुरक्षा आज के संदर्भ में देखते हैं और उसकी तुलना अन्य विकासशील देशों से करते हैं तो हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा जो है, जो वेस्ट एशिया की सिचुएशन है, उसके बावजूद उसको ठीक ठाक तरीके से हैंडल किया है। इसका मतलब ये कहना मेरा कतई नहीं है कि चुनौतियां नहीं है या LPG के फ्रंट पे दिक्कतें नहीं आई, वो ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। खासतौर से LPG में हमको परेशानी आई है क्योंकि हम भारी मात्रा में तो हम बहुत बड़े LPG के उपभोक्ता हैं, दूसरे दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। हमारे देश में 34 करोड़ से ज्यादा LPG के कनेक्शंस हैं।
1: इनफैक्ट जो अभी सूरत में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन था, उसके दौरान एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पिछले 60 दिनों से सरकार कच्चे तेल, LNG, LPG, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर लगातार नजर रखे हुए है। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निर्बाध ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो आपको लगता है कि जो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम है, पूरे विश्व की तीसरे सबसे बड़ी एनर्जी कंज्यूमर है हम विश्व के, ऐसे में इस तरह का जो प्रोएक्टिव अप्रोच है सरकार का, जो आप स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, ये बहुत ज्यादा अहम हो जाती है पूरे हमारे आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक कहें कि मजबूती के लिए।
2: देखिए, इस चीज को हम नहीं नकार सकते कि जो पश्चिम एशिया के जो हालात हैं और उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो ऊर्जा जगत है, तेल जगत उसमें खास तौर से, उसके अंदर भारी चुनौतियां आई हैं, भारी उथल पुथल हुई है। और इसको कहा जा रहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री में ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखा तो इतनी बड़ी चुनौती विश्व ने कभी नहीं देखी। 1970 के दशक की अक्सर चर्चा होती है, लेकिन वो भी इतना बड़ा एनर्जी शॉक नहीं था जितना ये है। और वो देश जिसमें भारत, जहां पे एक तरफ तो ऊर्जा की भारी खपत क्योंकि हम बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और हमारी आबादी भी बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ जो हमारी आयात पर इतनी ज्यादा निर्भरता, तो इस कारणों से जो है ये आवश्यक हो गया था कि भाई किस तरीके से उसको डील किया जा सके। अगर आप अन्य देशों को देखते हैं चारों तरफ उठा करके, एशिया के अंदर भी आप देखते हैं, विकासशील देशों को देखते हैं, तो उसमें देखा कि भारत में जो कीमतों पर सरकार ने काफी नियंत्रण रखा, काफी हद तक जो है आपने बोला, पुरी साहब ने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री का निर्देश था कि आम उपभोक्ता और खासतौर से गरीब को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो मार्जिनल पर रहने वाले लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी का नतीजा है कि इस सब के बावजूद कि तेल की कीमतें जो है भारी बढ़ोतरी आ चुकी है, एलपीजी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी बढ़ोतरी आ चुकी है, लेकिन जो भारत का आम उपभोक्ता है, खासतौर से वो जो गरीब तबके का उपभोक्ता है या गांव में रहने वाला उपभोक्ता है, उसको काफी हद तक शील्ड किया गया है, बचाया गया है, इंसुलेट करके रखा गया है। जो अगर आप पड़ोस के देशों में उठा करके देखते हैं, चाहे पाकिस्तान में देखें, बांग्लादेश में देखें, थाईलैंड में देखें, पड़ोस के देशों में भी आप देखते हैं तो कीमतें कहीं से कहीं चली गई हैं और कई कई जगह वहां पे दो दो दिन की लाइनें कतारें लगी हुई हैं क्योंकि लोगों को चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही, जबकि भारत के अंदर जो है वो कीमतों को भी सरकार ने काफी हद तक जो है वो साध के रखा है। और दूसरी तरफ ये भी निश्चित किया है कि पूरे देश में खासतौर से तेल, पेट्रोल, डीजल ये सब अच्छी तरीके से उपलब्ध है और एलपीजी के भी हमारी रिफाइनरीज हैं उनको जो है निर्देश दिया गया है कि वो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटाइज करें वो एलपीजी के उत्पादन को करें। और साथ में सरकार बोलूं तो जो भारत की कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जिन्होंने बड़ी अहम भूमिका इसमें निभाई है, उसमें खासतौर से जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां उसकी बड़ी उनकी बड़ी अहम भूमिका है, तो इन सब ने मिला करके जो है और कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की भी अपनी अपनी भूमिका है, सबने मिला करके पक्का किया है कि जो आम उपभोक्ता है उसको हम कैसे बचा के रखा जा सके। चुनौती बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि जो रिस्पॉन्स है जो सरकार जिस हिसाब से उसको मैनेज कर रही है, क्राइसिस को मैनेज कर रही है, वो भी बहुत बेहतरीन है अगर भारत की तुलना अन्य देशों से करें। आप
1: अन्य देशों की बात कर रहे हैं मिस्टर फैनिजा, तो आज श्री पुरी ने बताया कि अमेरिका और कनाडा जैसे शक्तिशाली देशों में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35-50% तक की वृद्धि देखी गई है, वहीं भारत में अभी कोई वृद्धि नहीं की गई है पिछले 60 दिनों में जब से ये कहें कि संकट शुरू हुआ है पश्चिम एशिया में। और इसके अलावा जो आपने बात कही कि आयात पर हमारी निर्भरता, उसको कम करने के लिए आपको लगता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू भी लें और मीडियम टर्म भी लें तो स्ट्रैटेजी जो है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल वो भी शामिल

0: आयात करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे देश में हमारे पास कोयले के अपने भारी भंडार है, जबकि तेल की स्थिति वो नहीं है, गैस की नहीं है, और जो कुछ और ईंधन है उसमें वो स्थिति नहीं है। तो जिसको बोलते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी में सबसे पहले ये होता है जो ईंधन जिसका प्रयोग कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए या अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, क्या वो देश में उपलब्ध है, आप आयात करते हैं। तो कोयला एक ऐसी चीज है जो हमारे देश में अपना हमारा उपलब्ध है। और दूसरी बात यह है कि रिन्यूएबल का बहुत बड़ी भूमिका है। हमने रिन्यूएबल में खासतौर से सौर ऊर्जा में भारत ने बहुत बेहतरीन काम किया। हमने जो अचीव किया है वो अच्छे अच्छे विकसित देश भी उसको अचीव नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी क्या है कि हम बहुत बड़े देश हैं, हमारी जरूरत ऊर्जा की बहुत ज्यादा है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, और पूरे देश के अंदर जो है बिजली का जाल बिछा दिया गया है। हर गांव गांव में आज बिजली है, गांव गांव में आज सड़क है, हर जगह एक्सप्रेस वे पहुंचाई जा रही है। जब आप ये करते हैं इसको, जो विकास की गति है उसको आप बढ़ा देते हैं, तो विकास की गति बढ़ती है तो उसकी जो धुरी होती है वो हमेशा ऊर्जा होती है। और इसीलिए भारत में अभी पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन काफी कम है, बहुत कम है ना। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि भाई हमारे हम रिन्यूएबल एनर्जी पे भी जोड़ दें, लेकिन ये आवश्यक है उसके साथ साथ कि हम जो हमारे तेल और गैस और कोयला भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अब ये जो है बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है, जिनकी अहमियत आने वाले लंबे समय तक रहने वाली है। अगर आप भारत की अप्रोच देखें क्लाइमेट समिट जो वर्ल्ड के होते हैं, उसके अंदर भारत की अप्रोच हमेशा ये रही है कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था को अभी तेल भी और चाहिए, गैस भी चाहिए, कोयला भी चाहिए, लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो भी हमारे देश में जितनी प्रगति उसमें हो रही है उतनी और कहीं विकसित देशों में भी उतनी नहीं जितनी भारत में। हमने 2030 का टारगेट जो विश्व के सामने पेश किया था सोलर पावर का, हमने उसे समय से पहले अचीव किया है। तो हम एक साथ कई फ्रंट पे काम कर रहे हैं, हमारे सामने चुनौती ऊर्जा की बहुत बड़ी है।
1: जो आप बात कर रहे थे एलपीजी की, जो आम आदमी के लिए रसोई गैस को प्राथमिकता दी है सरकार ने, उसके अलावा उन्होंने जो पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी के अडॉप्शन को भी बहुत बढ़ावा देने की बात कही है।
0: सरकार की अगर आप पिछले खासतौर से 10 साल की नीतियां और दिशा देखते हैं और यह सोच देखते हैं, उसमें जब 2014 का आप डेटा उठा करके देखते हैं तो 14 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन थे, और देश के अंदर तमाम खासतौर से जो छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, वहां की जो तमाम महिलाएं हैं खाना बनाने के लिए वो ऐसे ईंधन का प्रयोग करती थी जिससे उनकी आंखें भी खराब होती थी, जंगल भी कटते थे और उनका स्वास्थ्य भी खराब होता था। तो सरकार ने ये रहा कि किस तरीके से हमारे देश की जो महिलाएं हैं जो किचन में घंटों गुजारती हैं, किस तरीके से उनको ऐसी ईंधन दी जाए जिससे कि वो आसानी से खाना बना सकें और साथ में जो है उनका स्वास्थ्य जो है वो सुधरे पहले से, और साथ में उनके पास समय हो कि वो और चीजों में लगा सके अपने समय को। ये सबको देखते हुए एलपीजी का भारी विस्तार किया गया, उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत भी और उसके अलावा भी। और आज ये है कि 34.5 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन है, घर घर में आपको लाल सिलेंडर आप देखने को मिलता है। लेकिन साथ में ये भी है कि एलपीजी जो है, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो प्राकृतिक गैस हो या पेट्रोल हो या डीजल हो, सबका मॉलिक्यूल एक होता है, आती सब एक ही जगह से है, उनकी सब नाम प्रोडक्ट के अलग अलग नाम हो जाते हैं। एलपीजी जो है वो भी कच्चे तेल से बनती है, या जहाँ गैस का उत्पादन होता है, गैस की जो फील्ड होती है वहां से वो आती है, और जो प्राकृतिक गैस है वो भी मॉलिक्यूल तो वो भी वहीं से आती है। अब चूंकि हमारे पास जो है जो पीएनजी जिसे पाइप नेचुरल गैस बोलते हैं, जिससे कई जगह शहरों में जगह आजकल जो घर में पाइप लग गए हैं उनसे कुकिंग गैस आती है, वो अलग है, वो नेचुरल गैस है वो, जबकि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, वो एक तरह का तरल पेट्रोल होता है, उसकी हमारे पास जो उपलब्धता है प्राकृतिक गैस की ज्यादा है। तो अब सरकार की कोशिश है कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा जगह लोग पीएनजी को लें, और हालांकि ऐसा नहीं है, जो प्राकृतिक गैस है वो भी हम भारी मात्रा में आयात करते हैं एलएनजी की शक्ल में, लेकिन सरकार के पास उसकी जो देश में भी हमारे पास उसकी काफी अच्छी मात्रा उपलब्ध है। तो वो प्रयास किया जा रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पीएनजी का प्रयोग करें, अर्थात पाइप के माध्यम से अपने किचन में गैस ले जाएं, जिससे कि जो एलपीजी है उन लोगों को ज्यादा आसानी से दी जा सके जिनके पास पाइप गैस की सुविधा नहीं हो।
1: श्री पुरी ने यह भी कहा कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, 2047 तक हमारा टारगेट है कि हम एनर्जी सिक्योरिटी में भी आत्मनिर्भर होंगे, उसके लिए उन्होंने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की भी बात की। इसके अलावा आपको लगता है कि शायद सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे जो सोर्सेज है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब पर जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक अल्टरनेटिव स्रोत बन जाएगा
0: ऊर्जा में। जो भी आगे का भविष्य कैसा होगा, क्या रोड मैप बनेंगे, नीतियां बनाना सरकार का काम है, वो नीतियां बन रही हैं, और काफी कुल मिला के सरकार का फोकस है कि 2047 तक जो है हमें ऊर्जा की आजादी मिल जाए, जिसको एनर्जी इंडिपेंडेंस बोलते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही भारत जैसे देश के लिए वो बहुत आवश्यक है, जिससे कि हम ऊर्जा की गरीबी को भी दूर कर सकें और साथ में आयात पे जो निर्भरता है उसको हम कम से कम कर सकें। तो जैसे अमेरिका आज एनर्जी इंडिपेंडेंट हो चुका है, काफी हद तक वो नहीं था, वो भारी मात्रा में आयात करते थे, और आज जो वो एनर्जी इंडिपेंडेंट

0: चुके हैं। तो इस तरफ भी सरकार काम कर रही है, उसके तहत ही जो है न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी में नई जो है कोशिशें लाई गई हैं, और दूसरी तरफ जो है आणविक ऊर्जा जो है उसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन कैपिटल वो आए, उसके लिए सरकार नई नीति लेकर के आई है, नई सोच लेकर के आई है, शांति के नाम से उस स्कीम का नाम है। लेकिन हमको ये साथ में ध्यान देना पड़ेगा कि भारत को, चूंकि हमारी बड़ी आबादी है और बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और आज की तारीख में भी देश में हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या है उन लोगों की जो ऊर्जा की गरीबी में रहते हैं या एनर्जी पॉवर्टी के अंदर रहते हैं। तो एक तरफ तो हमको विकास के लिए ऊर्जा चाहिए, दूसरी तरफ जो है वो एनर्जी पॉवर्टी है उसको खत्म करने के लिए और ऊर्जा चाहिए। तो इसलिए हमारी चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन ये है, और साथ में टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी रोजाना सब चीजों को बदल रही है। तो मुझे लगता है चूंकि हमारे पास सौर ऊर्जा और जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास, और धीरे धीरे हमने देखा है सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है वो बढ़ रहा है, एक तरीके से वो एक ग्रास रूट रिवोल्यूशन बनता जा रहा है। आणविक ऊर्जा जो है उसमें भी सरकार का बहुत फोकस है, हो सकता है बीच में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी और आ जाए, जैसे कि हमने देखा हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है अभी कोलापक्कम में हमने उसको लॉन्च किया अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले, तो जो बहुत बड़ा एक जैसे बोलना चाहिए मील का पत्थर है उस दिशा के अंदर कि हमको की आजादी मिल सके। भारत जैसा देश एकमत होता है जहाँ टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, जहाँ इंजीनियर्स की कमी नहीं, जहाँ मार्केट हमारी बड़ी अच्छी है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक डिसिप्लिन है, तो मुझे तो लगता नहीं कि हम शायद 2047 से भी इसको पहले हासिल कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तमाम नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। आपने हाइड्रोजन का जिक्र किया, इसी तरीके से और भी कुछ टेक्नोलॉजी है जिनका काफी विकास हो रहा है, तो मैं काफी ऑप्टिमिस्ट हूँ।
1: मिस्टर तनेजा, भारत में ऊर्जा सुरक्षा के मजबूतीकरण पर आपने जो चर्चा की, अभी जो एक वैश्विक चुनौती है उसके बीच कितनी बड़ी आगे के लिए लक्ष्य है, उसके विभिन्न पहलुओं पर आपने जो बात करी उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार। सुर्खियों में

जी आकाशवाणी एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:26 हो गए हैं और इस समय एफएम गोल्ड पर मैं हूं आपके साथ रेशमा और कार्यक्रम है सांझ ढले। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं ये रात फिर ना आएगी फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ जिसमें आवाजें हैं आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की।

श्रोताओं, ये जो गीत सुना आपने, इसका संगीत दिया था ओपी नैयर ने। ओपी नैयर और आशा भोसले 1958 से 72 के बीच इस जोड़ी ने हिंदी फिल्मों में धूम मचा दी थी। कश्मीर की कली, किस्मत, नया दौर और मेरे सनम जैसी कई फिल्में आईं जिनमें ओपी नैयर के संगीत और आशा के स्वर थे। ओपी नैयर ने तो एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उन्हें आशा भोसले

की आवाज इतनी पसंद थी कि उनकी आवाज के आगे उन्हें और कोई आवाज सुनाई ही नहीं देती थी। चुलबुलापन, लोक धुनों की छाप और अनोखा लय ओपी नैयर के संगीत का हाईलाइट होते थे और आशा इसे बखूबी निभाती थीं।

जी आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:37 हो गए हैं और एफएम गोल्ड पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सांझ ढले मेरे यानी रेशमा के साथ। हमसाया फिल्म से आपने सुना गीत अभी जो आई थी 1968 में, और अब 1962 की फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में एक और गीत सुनते हैं जिसमें एक बार फिर संगीत है ओपी नैयर का, बोल लिखे हैं SH बिहारी।

और इस गीत के उस पार यानी 7:45 पर एफएम गोल्ड पर समय हो जाएगा प्रादेशिक समाचारों का। तो आइए फिलहाल सुनते हैं ये गीत फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से।

जी, तो आज मैंने आपको सांझ ढले में सुनाए गीत जो ओपी नैयर के संगीत से सजे थे और जिनमें आवाजें थी आशा भोसले की। तो इस जोड़ी के हिट गीत आपको कैसे लगे ये आप, मुझे लगता है कि अच्छे ही लगे होंगे, आपने खूब एंजॉय किया। लेकिन आज का सांझ ढले का सफर यहीं तक, आप सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। कुछ ही देर में यानी कि 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद मैं रेशमा एक बार फिर आपसे मिलूंगी 8:10 पर। कार्यक्रम होगा मधुरिमा जिसमें शास्त्रीय संगीत के रागों पर आधारित फिल्मी गीत सुनवाती हूँ मैं आपको। और तो मधुरिमा में मिलते हैं 8:10 पर। फिलहाल आप सुनिए प्रादेशिक समाचार यहीं यानी एफएम गोल्ड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया। कहा, शहर को ट्रांजिट नहीं डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कुष्ठ रोग को दिल्ली महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर और व्यापार लाइसेंस शुल्क को एकीकृत करने का फैसला किया। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम शुरू किया और राजधानी में बढ़ती गर्मी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज पर्यटन हितधारक सम्मेलन 2026 में भाग लिया। इस दौरान पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक पैनल चर्चा हुई। इसमें महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए गए।
1: इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को केवल ट्रांजिट शहर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसकी अपनी विशिष्ट पहचान और पर्यटन क्षमता है। मुख्यमंत्री के अनुसार दिल्ली की सबसे बड़ी विशेषता इसका राष्ट्रीय राजधानी होना है। इसी कारण यहां संसद, राष्ट्रपति भवन और शहीद स्मारक जैसे प्रमुख स्थल हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं।
2: इस शहर में जिस तरीके से ऐतिहासिक गौरव को संभाल के रखा है, लाल किला मॉन्यूमेंट है, कुतुब मीनार से लेकर के मेहरौली किला तक, जो कि लोगों का अट्रैक्शन का एक पॉइंट है। और जब यहाँ की कहानी सुनी जाती है दिल्ली की, तो इंद्रप्रस्थ से लेकर के आज तक की कहानियों में जो प्रसंग आते हैं, उन प्रसंगों के साथ में लोग अटैच होते हैं, लोग उसको देखना चाहते हैं।
1: वहीं श्री मिश्रा ने कहा कि राजधानी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री खुद नेतृत्व कर रही हैं और लगभग हर महीने पर्यटन नीति की समीक्षा भी करती हैं। उन्होंने बताया कि इसी दिशा में दिल्ली सरकार दिल्ली टूरिज्म बोर्ड लाने जा रही है, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। श्री मिश्रा ने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर सिंगल विंडो क्लियरेंस लागू करने पर बल दे रही है, जिससे फिल्म शूटिंग और इवेंट्स को बढ़ावा मिलेगा।
3: दिल्ली की जितनी भी टूरिज्म डेस्टिनेशन है और बाकी दिल्ली में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो, इंफॉर्मेशन सेंटर एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, बस टर्मिनल पर और प्रोमिनेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन पर कोई दिल्ली टूरिज्म का इंफॉर्मेशन सेंटर फंक्शनल नहीं है। उन इंफॉर्मेशन सेंटर्स को हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पब्लिक फैसिलिटीज पूरी दिल्ली में बनाई जाए। दिल्ली के चारों तरफ जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, उनमें शानदार दिल्ली की संस्कृति को रिप्रेजेंट

0: करते हुए एंट्री गेट बनाने की जिम्मेदारी भी दिल्ली टूरिज्म कॉरपोरेशन को दी गई है।
1: दिल्ली सरकार का उद्देश्य दिल्ली को एक संगठित, आधुनिक और वैश्विक स्तर का पर्यटन केंद्र बनाना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
2: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू आज सेंट स्टीफंस कॉलेज में वार्षिक विदाई समारोह में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि कॉलेज के परिचित गलियारों से गुजरते हुए उन्हें समृद्ध चर्चाओं, कक्षाओं, बहसों और मित्रताओं का याद ताजा हो गई। उपराज्यपाल ने वर्ष 2026 के स्नातक विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें उत्कृष्टता हासिल करने और क्षमता तथा चरित्र के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे कॉलेज की समृद्ध विरासत, बौद्धिकता और विशिष्ट पहचान को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन की नई यात्रा की शुरुआत करें। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज ग्राम कटेवड़ा में फिरनी रोड और आरसीसी नाले के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान करना और आम जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा ये कार्य सुशासन और अंत्योदय के मंत्र को साकार करता है। श्री सिंह ने कहा कि आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ कर प्रत्येक नागरिक का जीवन सुगम बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि विकास की धारा बवाना क्षेत्र के सभी गांवों तक पहुंचाई जाएगी। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर और सामान्य व्यापार तथा भंडारण लाइसेंस शुल्क को एकीकृत करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट।
3: इसके अंतर्गत अब अलग से सामान्य व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी और संपत्ति मालिक विशिष्ट संपत्ति पहचान कोड UPIC के माध्यम से संपत्ति कर के साथ ही लाइसेंस शुल्क जमा कर सकेंगे। नई व्यवस्था के अंतर्गत लाइसेंस शुल्क संपत्ति कर का 15% तय किया गया है, जो हर वर्ष कर भुगतान के समय देना होगा। भुगतान की रसीद एक वित्तीय वर्ष के लिए ही वैध डिम्ड लाइसेंस मानी जाएगी। निगम ने स्पष्ट किया है कि सभी व्यापार संचालकों को अग्नि सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस निर्णय का उद्देश्य नागरिकों की सुविधा बढ़ाना, व्यवसाय को सरल बनाना तथा अनुपालन के बोझ को कम करना है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने कुष्ठ रोग को दिल्ली महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया है। इसके लागू होने पर सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, क्लिनिकों और चिकित्सकों के लिए हर नए मामले की जानकारी जिला कुष्ठ रोग अधिकारी को देना अनिवार्य होगा। इससे प्रभावी निगरानी, शीघ्र पहचान और मल्टी ड्रग थेरेपी के माध्यम से समय पर उपचार सुनिश्चित हो सकेगा। एक रिपोर्ट।
4: इस बीमारी को अनिवार्य सूचना प्रणाली में शामिल करने से इसका शीघ्र पता लगाने और उपचार करने में आसानी होगी, जिससे विकलांगता का जोखिम कम हो जाएगा। साथ ही अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में निगरानी को मजबूत किया जा सकेगा और संपर्क ट्रेसिंग के माध्यम से संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकेगा। यह पहल कुष्ठ रोग को एक सामान्य और उपचार योग्य बीमारी के रूप में स्थापित करते हुए उससे जुड़े भेदभाव को कम करेगी तथा उपचार अनुपालन को बेहतर बनाएगी। आंकड़ों के अनुसार वैश्विक मामलों में लगभग 59% भारत में पाए जाते हैं, जिनमें 44% से अधिक मरीज निजी संस्थानों में इलाज कराते हैं जिनकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती। इस निर्णय के साथ दिल्ली भी उन राज्यों में शामिल हो जाएगी जहां कुष्ठ रोग अधिसूचित है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह कदम छिपे मामलों की पहचान और बीमारी के नियंत्रण में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक राजधानी को कुष्ठ मुक्त बनाना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अनुपम मिश्र।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में जन सुनवाई के दौरान नागरिकों की समस्याएं और सुझाव सुने। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। एक रिपोर्ट।
3: जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं बल्कि जनता की अपेक्षाओं को समझने और उनका समाधान करने का प्रभावी माध्यम है। श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों को सभी मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुनवाई से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर नीतियां और योजनाएं अधिक लोक केंद्रित बनती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शालीमार बाग को आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत सड़कों का सुदृढ़ीकरण, निर्बाध जल आपूर्ति, अटल कैंटीन की स्थापना, आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों का विस्तार, वाटर एटीएम, पार्कों का आधुनिकीकरण और बेहतर पार्किंग जैसी सुविधाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, वहीं लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपात स्थिति की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली का परीक्षण आज दोपहर करीब 12 बजे किया गया। नागरिकों के मोबाइल फोन पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है। इसके लिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
5: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे।
6: मानव संसाधन और टेक्नोलॉजी दोनों का संगम आज के दिन पर किया गया है। एक एक गांव तक, एक एक कस्बे तक लोगों की जान और माल की सुरक्षा निश्चित करने के लिए ये सुविधा बहुत उपयोगी रहेगी। इस सुविधा के लिए ना फोन की डेटाबेस की जरूरत है, ना डेटा सिस्टम की जरूरत है, और ये संपूर्ण रूप से ऑपरेटर एग्नोस्टिक है।
5: दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि ब्लू लाइन में सुप्रीम कोर्ट से इंद्रप्रस्थ के बीच निर्धारित मरम्मत कार्य के कारण आज रात से कल सवेरे तक कुछ मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित रहेंगी। कल सुबह कुछ मार्गों पर पहली मेट्रो सेवाओं के समय में बदलाव किया गया है। वैशाली से द्वारका सेक्टर 21 के लिए पहली रेल सेवा सवेरे 6:05 पर चलेगी। वहीं लक्ष्मीनगर से द्वारका सेक्टर 21 के लिए पहली मेट्रो 6:21 पर शुरू होगी। इसके अलावा यमुना बैंक से द्वारका सेक्टर 21 के लिए पहली मेट्रो सेवा सवेरे 5:50 पर चलाई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 3 अलग अलग मामलों में 2 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। पुलिस ने पूर्वी जिले से एक आरोपी को 1 किलो 900 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी कार्रवाई में आनंद विहार बस अड्डे के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 280 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। साथ ही एक अन्य मादक पदार्थ मामले में पुलिस ने एक आरोपी को 100 ग्राम मादक पदार्थ के साथ गाजीपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को पूर्वी जिला से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित से सेकेंड हैंड कार बेचने के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेकेंड हैंड कार तलाश रहे लोगों को निशाना बनाता था और अग्रिम भुगतान लेकर संपर्क तोड़ देता था। दिल्ली विधानसभा में बुधवार को संगीतमय राम कथा का विशेष आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रसिद्ध वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास अपनी प्रस्तुति अपने अपने राम प्रस्तुत करेंगे। इस प्रस्तुति में भगवान श्री राम के जीवन, आदर्शों और मानवीय मूल्यों को संगीतमय शैली में प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को मर्यादा, सत्य और कर्तव्य निष्ठा के मूल्यों से जोड़ना है। राजधानी में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं शुरू की हैं। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ये सुविधाएं सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार की ओर से बसों और बस स्टॉप पर पानी तथा ORS की व्यवस्था की जा रही है।
7: DTC की बसों में भी पानी उपलब्ध रहे ये व्यवस्था कर रहे हैं। हर बस शेल्टर पे हमारे जल सेवक पानी और ORS के साथ में रहें, ये भी लगातार

0: किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स में हीट वेव से रिलेटेड हर मेडिसिन और ट्रीटमेंट उपलब्ध करा दिया गया है। वहाँ कूलिंग एरिया बना करके लोगों को रिलीफ भी दिया जाएगा। स्कूलों में ऑलरेडी ORS और पानी की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं।
1: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि हीट एक्शन प्लान के अंतर्गत जलदूत पहल शुरू की गई है। इसके अंतर्गत हजरत निजामुद्दीन टर्मिनल, नेहरू प्लेस टर्मिनल और जल विहार टर्मिनल जैसे कुछ स्थानों पर शीतल जल व्यवस्था की गई है। राजधानी में आज दिन के समय धूप तेज रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल दोपहर और शाम के समय हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। चेन्नई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक छठे ओवर में एक विकेट पर 53 रन बना लिए थे। कल जयपुर में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया। कहा, शहर को ट्रांजिट नहीं डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कुष्ठ रोग को दिल्ली महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर और व्यापार लाइसेंस शुल्क को एकीकृत करने का फैसला किया। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम शुरू किया। और राजधानी में बढ़ती गर्मी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर फिर से मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 8:11 हो गए हैं और एफएम गोल्ड पर यह समय है कार्यक्रम मधुरिमा का। आज मधुरिमा में मैं हूं आपके साथ रेशमा और आज हम चर्चा करेंगे चंचल और मधुर मिश्र राग राग पीलू की। तो आइए शुरू करते हैं इसी राग यानी राग पीलू पर आधारित इस गीत से। फिल्म है प्रेम कहानी, उसी फिल्म से ये गीत सुनते हैं।

राग पीलू पर आधारित ये गीत सुना आपने। पीलू काफी थाट से उत्पन्न राग है जो अधिकतर ठुमरी, भजन और गजलों में प्रयुक्त होता है। इसके आरोह में ऋषभ और धैवत स्वर वर्जित होते हैं, जबकि अवरोह में सभी स्वरों का प्रयोग होता है, इसीलिए इसकी जाति है औड़व संपूर्ण। राग पीलू की विशेषता है कि इसमें कई अन्य रागों की छाया देखी जा सकती है, जिससे इसे संकीर्ण जाति का राग कहा जाता है और इसीलिए ये राग काफी विविधता लिए रहता है। आइए सुनते हैं इसी राग की झलक लिए ये अगला गीत फिल्म सुजाता से।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की

जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं राग पीलू की। तो राग पीलू चंचल प्रकृति का और श्रृंगार रस से भरा राग है, और इसीलिए ठुमरी, टप्पा और भजन में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। वादी स्वर है इसका गंधार, संवादी है निषाद। इसमें अक्सर कोमल गंधार और मंद्र सप्तक के सा के शुद्ध निषाद पर रुका जाता है, जो इस राग को और आकर्षक बना देता है। और कई बार इसमें सभी 12 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, जिससे ये मिश्र पीलू कहलाता है। श्रोताओं, यूं तो ये राग पीलू जो है इसका गायन समय दिन का तीसरा पहर माना गया है, लेकिन इसे किसी भी समय गाया जा सकता है, यानी ये एक सर्वकालिक राग है। अब चूंकि ये ठुमरी का राग है, इसलिए गायन के अंत में पीलू या भैरवी में ठुमरी या टप्पा गाकर समापन करने की परंपरा रही है। अगर भजन या धुन के साथ गायन समाप्त होता है तो भी पीलू की छाया दिखाई देती है। यहाँ तक कि कुछ लोक गीत भी इस राग के बहुत नजदीक लगते हैं। चलिए, अब समय है आज के मधुरिमा में अंतिम गीत का, क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है। तो राग पीलू पर आधारित 1957 में आई फिल्म चोरी चोरी की रीमेक आई एक 1991 में, उस फिल्म से आपको मैं एक गीत सुनवा रही हूँ, जो 1991 में फिल्म आई, उसका नाम था दिल है कि मानता नहीं। इसी फिल्म से अनुराधा पौंडवाल की आवाज़ में ये गीत, जिसमें झलक है राग पीलू की। और इस गीत के साथ मुझे यानी रेशमा को दीजिएगा अनुमति। सुनते रहिए एफएम गोल्ड।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग। शुभ संध्या घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ राकेश राव। राकेश जी, आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो भारत के नजरिए से खेल जगत में आज काफी हलचल है। क्रिकेट का सबसे बड़ा, अगर हम आईपीएल मुकाबला कहें, राइवलरी मैच कहें, या फिर अगर हम बैडमिंटन की बात करें, तो भारत के लिए बड़ा अवसर है। तो बात करेंगे सब पर, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। बीसीसीआई ने टी20 महिला विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में आज भारत का सामना फ्रांस से होगा। और भारत के उभरते टेनिस खिलाड़ी मानस धामने ने पहली बार एटीपी चैलेंजर फाइनल में जगह बनाई।

0: तो आज की अगर हम सबसे बड़ी खबर की बात करें, सबसे पहले चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट की बात करते हैं जो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने ताजा समाचार मिलने तक अभी 12वें ओवर में 3 विकेट पर 101 रन बना लिए हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कल के मैच का जरा हाल जान लेते हैं, जहां जयपुर में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया और आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स ने 226 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया।
1: टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत खराब रही। राजस्थान ने दूसरे ही ओवर में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद कप्तान रियान पराग और ध्रुव जुरेल ने दूसरे विकेट के लिए 59 गेंदों में 102 रन की साझेदारी की। जुरेल 30 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए, वहीं पराग ने 50 गेंदों में 90 रन की कप्तानी पारी खेली। डोनोवन फरेरा ने 14 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाए और टीम को 225 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचाया। दिल्ली की ओर से मिचेल स्टार्क

0: का योगदान दिया। अंतिम ओवरों में आशुतोष शर्मा ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर टीम को जीत दिलाई। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो जिस तरह का प्रदर्शन अभी कर रही है मुंबई इंडियंस अब तक

0: मैच को लेकर आप क्या कहेंगे?
1: मुंबई इंडियंस के लिए देखिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि वो अभी बाहर हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल उस एज पे पहुंच गए हैं कि अब इससे ज़्यादा वो रिस्क ले नहीं सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब आप 14 मैचेस लीग के हैं, आपको कम से कम 8 मैच जीतने होते हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि कम से कम आप कंटेंशन में रहेंगे। 7 मैचेस में आप क्वालिफाई नहीं करते 7 जीतने के बाद, क्योंकि एक पंजाब है जो ऑलरेडी उनका एक मैच नो रिजल्ट के कारण वो एक पॉइंट आगे ही रहते हैं लोगों से, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है अभी तक, तो वो भी एक फैक्टर है। तो मुंबई इंडियंस के लिए देखिए एक बात तो यह है कि उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, दूसरा उनका रेपुटेशन जो है वही उनके ऊपर अब इतना ज्यादा जो इतना हैवी हो गया है उनके लिए। और सीएसके का भी वही हाल है, वो कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है लेकिन रेपुटेशन अभी है, फॉर्म नहीं है। खासकर हम सूर्य कुमार यादव की बात हर मैच में करते हैं, उनका फॉर्म बहुत ख़राब रहा है, न स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेल पा रहे हैं, न पेस के अगेंस्ट खेल पा रहे हैं, रन्स नहीं है उनके बोर्ड पे, और अभी भी आज लग रहा था कि शायद एक लंबी पारी जो है देखने का मौका मिलेगा, वो भी नहीं मिला। तो उनकी प्रॉब्लम्स कम नहीं हो पा रही हैं। तो सीएसके को ये एक अवसर है कि वो मुंबई इंडियंस जो कि उनके आर्च राइवल्स हैं तो उनके ऊपर एक और जीत हासिल करके अपनी स्थिति थोड़ी और इम्प्रूव करें।
0: बिल्कुल, दोनों ही टीम अच्छी स्थिति में नहीं है और दोनों के पास अभी अवसर है कि एक दूसरे को गिराकर थोड़ा ऊपर पहुंच सकते हैं। मुंबई अंक तालिका में 9वें स्थान पर है और चेन्नई 7वें स्थान पर है। कल के मैच की बात करें, जैसा कि हमने अभी रिपोर्ट्स में सुना किस तरह से 226 रन चेज किया है दिल्ली कैपिटल्स ने अपने इतिहास में।
1: देखिए कल का जो चेस था वो एक स्टेज पे लग रहा था कि शायद ये टीम जो है 9 विकेट से जीत जाएगी, क्योंकि उनका जो ओपनिंग स्टैंड था वो बड़ा अच्छा रहा, अच्छे अंदाज से केएल राहुल जो हैं वो चेस में जब आप उनकी इनिंग्स देखते हैं उनमें कभी आपको ये नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा शॉट्स मार रहे हैं। उनकी शॉट मेकिंग काफ़ी सिलेक्टिव है और वो जब तक क्रीज पे रहते हैं ऑपोजिशन को ये चैन नहीं पड़ता कि मतलब ये मैच हम निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि राहुल का अप्रोच सबसे अलग है, सूर्यवंशी जैसे नहीं है कि वो मौका देते हैं, वो मौका बहुत कम देते हैं और अगर उनके बैट से 50 निकलता है 60 निकलता है तो टीम भी अश्योर हो जाती है कि ठीक है हमें एक अच्छा स्टार्ट मिल गया। तो कल हालांकि 7 विकेट से जीती टीम वो भी बहुत कंफर्टेबली जीती है, उससे भी आराम से जीत सकती थी। तो सोचिए कि अगर 226 का आपका लक्ष्य है वो आप इतने आराम से जीत रहे हैं कि आप 9 विकेट से भी जीत सकते थे एक स्टेज पे, 7 विकेट से आपने इवेंचुअली वो मैच बड़े आराम से आपने जो है ख़त्म किया। लेकिन मुझे अचरज इस बात की है, मतलब जो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि डीसी का अटैक बहुत अच्छा है, लेकिन उनके अटैक पे जितने रन बन रहे हैं, अटैक के जो उनकी जो लाइक क्वालिटी जो है वो देख के सब लोग ऐसे सोच रहे हैं कि इतने अच्छे अटैक को इतने ज्यादा रन्स कैसे कंसीड कर सकती है। बैटिंग अच्छी है, काफी डीप बैटिंग है उनकी डीसी की, और उस हिसाब से उनको टॉप 4 में बहुत पहले से होना था और वहीं रहना था, लेकिन ऐसा खेल नहीं रही है टीम।
0: हम कह सकते हैं कि उनकी कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी नहीं रही, कुछ खिलाड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं लेकिन वो अस्थिरता बनी रही।
1: नहीं, उन्होंने कुछ मैच बिल्कुल जीतते जीतते हारे हैं वो मैच, जैसे मुझे याद है डेविड मिलर का एक वो था चेस था
0: जी,
1: उनको 2 रन पे वो जीत जाते, वो मैच मतलब जीत रहे थे, वो उन्होंने सिंगल्स नहीं लिया, एक मैच पे सिंगल नहीं लिया, दूसरे लास्ट बॉल पे जो था भागे आउट हो गए। तो द पॉइंट इज कि उनकी प्लानिंग में भी कहीं ना कहीं उनको ऐसे झटके लगे हैं, लेकिन उन्होंने जैसे पंजाब किंग्स के साथ वो खेले 264 बनाया अच्छा टोटल, अगले मैच में 48 घंटे बाद उनसे 100 रन भी नहीं बने। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी की बात आप कर रहे हैं ये बहुत अचरज की बात है, क्योंकि टीम में वो सब कुछ है जो एक T20 टीम की एक अच्छी कॉम्पोजिशन में होना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, और इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स 8 अंकों के साथ अंक तालिका में 6वें स्थान पर है और जबकि राजस्थान रॉयल्स 12 अंकों के साथ 4थे स्थान पर है। हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने BCCI ने आज T20 महिला विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जहां हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तानी करेंगे और जबकि स्मृति मंधाना को उप कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है। तो किस खिलाड़ी की वापसी हुई है और किसे बाहर बैठना होगा, जानने के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: 15 सदस्यीय भारतीय टीम एक मजबूत बैटिंग लाइनअप के साथ वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, जिसमें शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, भारती फुलमाली और ऋचा घोष शामिल हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया और बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिनर राधा यादव टीम में वापस आ गई हैं। अभी तक एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेलने वाली खिलाड़ी नंदिनी शर्मा को भी टीम में जगह मिली है। प्रतिका रावल को टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि ऑलराउंडर अमनजोत कौर चोट के कारण टीम में जगह नहीं बना पाई। हरमनप्रीत कौर सभी मैचों की

0: कप्तानी करेंगी जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। टीम में दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़ और श्रियंका पाटिल भी शामिल है। इंग्लैंड एंड वेल्स की मेजबानी में 2026 T20 वर्ल्ड कप 12 जून से शुरू होगा और फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। भारत को ग्रुप वन में ऑस्ट्रेलिया के साथ रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स भी इसी ग्रुप में हैं। वुमेन इन ब्लू 14 जून को एडबस्टन में पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो जिस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं टीम में, कई लोगों की वापसी हुई है, यानी कुछ लोगों की वापसी हुई है और प्रतिका रावल को टीम से बाहर किया गया है। वहीं चोट के कारण अमनजोत कौर भी बाहर रहेंगी खेल से। तो इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से T20 वर्ल्ड कप में इंडियन वुमेन टीम कुछ अच्छा नहीं कर पाई। अब अभी टीम को आप देखकर क्या कहते हैं?
2: देखिए, टीम हमारी जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट की टीम हमारी अच्छी रही है और मैं इस टीम को हमेशा ये मानता हूँ कि हम टॉप फोर की टीम है, चाहे हम अच्छा खेल रहे हों या अच्छा ना भी खेल रहे हों, क्योंकि वुमेन ये जो है वुमेन्स क्रिकेट में ओवरऑल स्टैंडर्ड बहुत एवरेज है। 5 टीमें हटा दीजिए तो बाकी 5 टीमें बहुत वीक है। तो हमारा अगर हम टॉप 4 में हैं तो वो कोई बहुत बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। हमको उससे भी बेटर होना चाहिए, हमें टॉप 3 में रहना चाहिए। 4 से तो 5 पे भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम ये रहेगा कि सेमीफाइनल। जैसे आपने कहा कि ये टीम जो है हमारी, हमने इस बार भी देखिए एक न्यू फास्ट बॉलर लिया है, नंदिनी जो है वापस आए, मतलब पहली बार उनको नेशनल टीम में जो है ना मौका मिला है। फास्ट बॉलर है, 24 वर्षीय, वो एक उनको मतलब उनका जो अगर मुझे याद है विमेंस लीग में उन्होंने 17 विकेट लिए थे और काफी स्ट्रांग लगी थी वो। तो चेस मतलब इसमें मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो सिलेक्टर्स आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
2: ये पहले नहीं होता था। पहले विमेंस क्रिकेट में ये हम नहीं देखते थे। ये मैं कहूं कि पिछले 3 साल में देखा गया कि सिलेक्शन मैटर्स को लेके हम बहुत फेयर हो गए। इससे रिजल्ट भी दिख रहा है, हमको रिजल्ट काफी अच्छा दिख रहा है और बाकी जो कोर है टीम का वो तो सेम है हमारा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये टीम जो है फाइनल खेलेगी क्योंकि इसमें वो क्षमता है। अब लंदन में कैसे खेल पाती है, क्या कर पाती है, वो अपनी जगह है, क्योंकि वहां पे सिर्फ टीम की स्ट्रेंथ नहीं, कंडीशंस जो हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि भाई क्या ये लड़कियां अपने आप को उस वक्त, अब बिकॉज सेकेंड हाफ है इसका, यू नो लगे समर का, उस टाइम पे वो कैसे मैनेज कर पाती हैं, वेदर कंडीशंस क्या रहती हैं और सीमिंग कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि हम लगातार अब जो नए बदलाव हो रहे हैं तो नए नए खिलाड़ियों को भी जगह दी जा रही है। आपने नंदिनी शर्मा का जिक्र किया जिसने अभी तक किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में नहीं खेली है वो, तो उम्मीद है कि आगे भी हमें अच्छे इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जैसे अभी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं बैडमिंटन की, थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट की जो डेनमार्क में चल रहा है और आज सेमीफाइनल में भारत का सामना फ्रांस से होगा। लेकिन इस सेमीफाइनल से पहले एक बहुत बड़ा झटका लग गया है कि लक्ष्य सेन चोट के कारण बाहर हो गए हैं और इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर हम पूरा क्रम दारोमदार देखें तो कहीं ना कहीं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पर आ गया है और इसके अलावा आयुष शेट्टी हैं हमारे पास, तो कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी आज भारत के लिए।
2: मुश्किल हो जाएगा ये, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि फ्रांस के साथ हमारे जो है सिंगल्स, एक सिंगल्स तो हमको उम्मीद थी कि लक्ष्य से मिलेगा
1: जी।
2: और लक्ष्य अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खासा फॉर्म है उनका और उनमें यही रहा है कि इंजुरी ने उनके पूरे करियर को चौपट किया हुआ है। अगर हम उनके करियर का एक ग्राफ देखेंगे, जब जब लगता है कि वो अच्छा खेल रहे हैं कोई ना कोई इंजुरी से वो थोड़ा सा ना पीछे रह जाते हैं। उनको एक मैं ही मानता हूँ अगर उनको 3 साल इंजरी फ्री मिल जाए तो उनके रिजल्ट्स भी कमाल के होंगे। लेकिन अब ये हो गया है क्योंकि कल उन्होंने हमने देखा कि कितनी डाइमें मारी हैं उन्होंने।
1: बिल्कुल,
2: जहां मौका मिला है हर शटल के ऊपर उन्होंने अपनी जान बिल्कुल लगा दी।
1: और इसी डाइव के कारण उन्हें कोहनी पर चोट लग गई।
2: तो ये है, तो ठीक है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में ये सब उसका एक हिस्सा है, लेकिन हाँ हमारे चांसेस जरूर थोड़े से कम हो जाएंगे इसमें।
1: हाँ, और लक्ष्य सेन की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट पर उतरेंगे। अपने श्रोताओं को बता दें हम क्वार्टर फाइनल में कल भारत ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर हालांकि एक पदक तो पक्का कर ही लिया है, लेकिन फ्रांस ने जापान को हराकर पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है, तो उसमें भी उतना ही कॉन्फिडेंस होगा। तो देखते हैं आज का मैच कितना रोमांचक होता है। हमने बैडमिंटन की बात की तो हम टेनिस की भी बात

0: करेंगे क्योंकि भारत के उभरते टेनिस खिलाड़ी मानस धामनी ने कजाकिस्तान के शिमकेंट में फ्रांस के एंटोनी गिबाउडो को सीधे सेटों में हराकर पहली बार एटीपी चैलेंजर्स फाइनल में पहुंचकर बड़ी सफलता हासिल की है। 8 साल के इस भारतीय खिलाड़ी ने क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में संयमित और आक्रामक खेल दिखाया है और उन्होंने फ्रांस के खिलाड़ी को 6-4, 6-3 से हराया। फाइनल में कल धामनी का सामना बेल्जियम के बुआयसर गदामौरी से होगा।
1: देखिए, बहुत हम लोगों को सिंगल्स वाले जो वर्ल्ड है वहां से हमको अच्छी खबर मिलती नहीं है, तो जैसी भी खबर है कि एक यंगस्टर अच्छा करता है तो हम सब एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें मेन सिंगल्स में जमाना हो गया है कि हमें अच्छी खबर मिले। ठीक है, जितने भी हमारे यूकी भामरी और ये सारे जितने लोग खेलते रहे सालों साल खेले, लेकिन अपना एक जो प्रॉमिस दिखाने के बाद कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। और ये देखा गया है कि हमारे जितने सिंगल्स के खिलाड़ी होते हैं बहुत जल्दी अपने लाइफ में उनको ये पता लग जाता है कि बहुत आगे का रास्ता उनसे तय नहीं होगा, इसलिए वो डबल्स खेलना शुरू कर देते हैं। सुमित नंगल के साथ भी हमने यही देखा था और आज भी यही, अभी बस उम्मीद है कि यहाँ कुछ और देखने को मिले।
0: चीन के सूझों से अच्छी खबर नहीं आ रही है क्योंकि AFC अंडर 17 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में अपने पहले ग्रुप मैच में भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और वहीं कजाकिस्तान के अल्माटी में कल से ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अनंतजीत सिंह, राइजा और मरोज अहमद। और श्रोताओं, वह बहुत ज्यादा समय नहीं है, समय है आपसे विदा लेने का, तो कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। राकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इसी के साथ अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर IED विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त और BCCI ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले गए। इस दौरान लगभग 90% मतदान हुआ।
3: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से

0: होगी।
1: चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया पर रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सहायकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। 10 लाख से अधिक डाक मतदाताओं ने अपने मत इस बार डाले हैं, जिनमें चुनावी ड्यूटी पर तैनात लोग और 85 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐतिहासिक रूप से 85.10% मतदान हुआ है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। करूर विधानसभा क्षेत्र में न केवल अधिकतम 79 उम्मीदवार थे बल्कि अधिकतम 89% मतदान भी दर्ज किया गया। इसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 8,52,690 मतदाता हैं, जो इस बार अपने नेता का चुनाव करेंगे। कुल मिलाकर राज्य भर के 75,064 मतदान केंद्रों में 5,73,43,291 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
2: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली CBS का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित CBS को दूरसंचार विकास केंद्र C.DOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में एक क्रांतिकारी पहल बताया है।
2: आज C.DOT जो भारत की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज उस C.DOT की संस्था के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित करने की देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि CBS का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
3: सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS सटीक जियो टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है जिससे सूचना को व्यक्तिगत सेल टावरों या उनके समूहों के स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही इसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। यह पारंपरिक SMS आधारित प्रणालियों की सीमाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी लक्षित क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक तेजी और कुशलता से पहुंचाई जा सके। यह प्रणाली लगभग रियल टाइम में बहुभाषी जानकारी प्रदान करती है जिससे फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ और गैस रिसाव जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल पाता है। ये सूचना बिना किसी देरी के कुछ ही सेकंड में उपयोगकर्ताओं तक

0: पहुंच जाते हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज एक आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के चार जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: आपदा को हम अवसर में बदले, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको देखने की जरूरत है, और इसलिए हमको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जरूरी है कि हम इस रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, एरिया को हम तवज्जो दें और साथ में हम सेल्फ रिलायंस की ओर जाएं, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है।
1: इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि इन समझौतों से अगले 3 साल में 2,82,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की आशा है।
3: श्री संघवी ने दक्षिण गुजरात के तापी, डांग, वलसाड और भरूच जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना साझा की, जिसके तहत महिलाओं की अधिकतम भागीदारी वाले प्रदूषण मुक्त उद्योगों को इस प्रदेश में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिषद में सूरत के कपड़ा उद्योग को गारमेंट सेक्टर के रूप में विस्तार देने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का काम 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि राज्य में जनगणना अभियान के तहत घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी।
4: पूरे प्रदेश को एक ग्रिड में बांटा जाता है, ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं, या मकान सूचीकरण ब्लॉक, दोनों एक ही चीज है। पहले फेज में उनको मकान सूचीकरण ब्लॉक कहते हैं, दूसरे फेज में उसको गणना ब्लॉक कहते हैं। ये गणना ब्लॉक 120 से 180 घर के करीब होते हैं। इनमें करीब 800 से 1000 के बीच में हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं, 800 हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है। पूरा प्रदेश ऐसे प्रखंड में बांटा जाता है और इस बार ये कार्य डिजिटली किया गया। ये पोर्टल के माध्यम से इन सबकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई हैं, सबकी बाउंड्री को टैग करके बनाया गया है। ऐसे हमारे प्रदेश में 3,90,000 गणना ब्लॉक बने।
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा, जबकि फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स

0: का मैच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। लक्ष्य सेन चोट के कारण इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। लक्ष्य की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट में उतरेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के मुताबिक परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े, जबकि पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर एक आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त हुए और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Nearly 90% voter turnout recorded in re-polling at 15 booths of 2 assembly constituencies of West Bengal. Counting of votes on Monday for assembly polls in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and Puducherry. Election Commission deploys additional counting observers and police observers in West Bengal. Government launches cell broadcast system to strengthen India's emergency communication systems and enhance public safety infrastructure. 4 security personnel killed in an IED blast near Kanker Narayanpur district border in Chhattisgarh. Renowned lyricist Prasoon Joshi appointed as chairman of Prasar Bharati. And in cricket, BCCI announces Indian squad led by Harmanpreet Kaur for ICC Women's T20 World Cup. In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Mograghat, a Poshtim constituency, and 4 in Diamond Harbour seat. Repolling remained largely peaceful across the 2 assembly segments. The repolling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal, covering 152 seats, was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around counting centres. The Commission said these measures are aimed at ensuring that the counting process is conducted in a secure, peaceful, intimidation-free and transparent

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के अंक में संपादकीय में हम बात करेंगे अशांत समय में वैश्विक शांति के संदर्भ में महात्मा बुद्ध की प्रज्ञा और कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर के काव्य में साम्य के बिंदु। हमारी अगली प्रस्तुति होगी आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में कुछ विशेष टिप्पणियां। उसके बाद हम बात करेंगे जनजातीय भाषाओं के साहित्य और उनमें बसी मनुष्य की आदिम चेतना के विषय में। और हमारी अंतिम प्रस्तुति होगी आकाशवाणी में उपमहानिदेशक और वरिष्ठ प्रसारक रहे के नायर की पुस्तक उसने कुछ मुझसे कहा पर चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ होंगी उनकी पुत्रियां सीमा सागर और सुजाता सहाय।

जब हम विश्व शांति की बात करते हैं तो इतिहास और साहित्य हमें ऐसे अनेक स्रोत प्रदान करते हैं जहां पर मानवता की सबसे उज्जवल आकांक्षाएं अभिव्यक्त हुई हैं। आज जब हम चारों ओर देख रहे हैं, युद्ध की आहटें हैं, भय की परछाइयां हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच दीवारें ऊंची होती चली जा रही हैं, ऐसे में रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य हो या महात्मा बुद्ध का दर्शन और उनकी प्रज्ञा, दोनों ही मनुष्य के भीतर करुणा, सह अस्तित्व और आत्मिक संतुलन की स्थापना पर बल देते हैं। कविगुरु टैगोर की बात करें तो वो केवल बंगाल के कवि नहीं थे, केवल भारत के नहीं थे, वे उस समूची मानवता के कवि थे जो सीमाओं से परे जाकर सोचती है और जो प्रेम को ही जीवन का सत्य मानती है। अशांत समय में टैगोर का काव्य एक दीपक की तरह है जो ये नहीं कहता कि अंधेरा नहीं है, पर ये अवश्य कहता है कि प्रकाश संभव है। टैगोर ने गीतांजलि में लिखा, मनुष्य की आत्मा की पुकार ईश्वर तक पहुंचती है, पर वो ईश्वर किसी मंदिर में नहीं, वो श्रमिक के पसीने में, किसान की माटी में और बच्चे की हंसी में बसा है। ये विचार कितना क्रांतिकारी था उस समय के लिए और आज भी कितना ताजा है। उनकी कविता शांति का केवल आह्वान भर नहीं करती, वो शांति की जड़ें खोजती है, वो जड़ें जो मनुष्य के भीतर हैं, करुणा में, सह अस्तित्व में, प्रकृति के साथ तादात्म्य में। और वही महात्मा बुद्ध के उपदेशों में अहिंसा, मध्यम मार्ग और मैत्री जैसे सिद्धांत विश्व शांति की ठोस आधारशिला रखते हैं। बौद्ध साहित्य, विशेषकर धम्मपद, हमें ये सिखाता है कि द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम ही उस

कांत करता है। टैगोर की रचनाओं में बार बार एक ऐसे विश्व का स्वप्न उभरता है जहां सीमाएं नहीं संवाद हो, जहां भय नहीं विश्वास हो। उनकी ये प्रसिद्ध प्रार्थना मन हो निर्भय जहां, दरअसल एक ऐसे वैश्विक समाज की कल्पना है जो शांति और नैतिकता पर आधारित है। महात्मा बुद्ध की दृष्टि और टैगोर के काव्य में एक गहरा साम्य है। मानव केंद्रित चिंतन, अहिंसा की अनिवार्यता और आंतरिक शांति को बाहरी शांति का आधार मानना। आकाशवाणी जो दशकों से विचार और संवेदना का सेतु रही है, ऐसे विमर्शों के माध्यम से न केवल अतीत की धरोहर को संजोने का प्रयास कर रही है, बल्कि वर्तमान को भी एक नई दिशा देना चाहती है, संवाद, सह अस्तित्व और शांति की दिशा में। साहित्य भारती की ओर से ये संपादकीय महात्मा बुद्ध की प्रज्ञा और विश्व कवि को नमन है, जिनकी वाणी में वैश्विक शांति का स्वर आज भी जीवित है।

0: आकाशवाणी के 90 वर्षों का सफर, 90 वर्षों में कितनी आवाजें, कितने शब्द, कितने स्वप्न इस माध्यम ने सजोए हैं, सवारे हैं। साहित्य का ये विस्तार आकाशवाणी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्ला।
1: एक सिलसिला यहाँ शुरू हुआ था कि एक कहानी चुनिए और उसका एक पात्र चुनिए साहब, उस पर एक वार्ता 10 मिनट की। तो जैसे मुझसे कहा गया तो मैंने तीसरी कसम कहानी चुनी, जिस पर फिल्म बनी है रेणु जी की, तीसरी कसम कहानी चुनी और हीरामन जो उसका कैरेक्टर है वो पात्र चुना मैंने। तो ये एक सिलसिला था उनका पूरा कि अपने से आप कहानी चुनी है, लेकिन बताना पड़ता था कि हमने ये कहानी चुनी है, ये पात्र, ताकि रिपीटिशन ना हो। ये इस तरह के कार्यक्रम हुए। फिर साहित्यकारों पर वार्ताएं हुई, कहे कि साहित्यकार चुनिए साहब। फिर कहना आप उर्दू के साहित्यकारों पर लिख सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब उर्दू मजलिस जो है, अब वह हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य सब अब दूरदर्शन पर, तो धारावाहिक बाद में शुरू हुए हैं, रेडियो ने पहले शुरू कर दिया धारावाहिक। एक धारावाहिक कार्यक्रम चला था यहाँ, जिसमें धारावाहिक कार्यक्रम में ये चला था कि एक लेखक और उसकी कोई रचना, वो होगा आधा घंटे का, रिकॉर्डिंग आधा घंटे की होती थी, लेकिन 5-5 मिनट के 6 एपिसोड होते थे, मतलब 6 दिन तक, मंडे टू सैटरडे, वो 5-5 मिनट सुनाया जाएगा। तो एक लेखक चुनना है आपको और उसकी एक किताब चुननी है, तो उसको आपको 6 एपिसोड में बांटना है और 5-5 मिनट के हों, जिसमें लेखक के बारे में और एक जो कृति चुना है आपने उसके बारे में जानकारी श्रोताओं तक पहुंच जाए। ये एक धारावाहिक शुरू किया गया। ये जब चुना गया तो हमसे पूछा गया, हमने उनसे कह दिया कि मैं लेखक तो कालिदास और रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, जिनका नाटक है मुझे। तो फिर मैंने 2 जो एपिसोड है वो तो मैंने लेखक के बारे में लिखा। तो रिकॉर्डिंग जब हो गई, तो जब प्रसारण उसका हुआ, तो हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं रमानाथ अवस्थी, उठकर गले लगा रहे हैं मुझे, सुना तुमने क्या साहब लिखा है। तो मैंने देखा कि आकाशवाणी कितनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है कि विभिन्न भाषाओं के साहित्यिक कृतियों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में कैसे जन जन तक पहुंचा रहा है। क्योंकि जिस जमाने में नहीं था टेलीविजन, और जिस जमाने में यह नहीं था, उस जमाने में तो एक ही माध्यम था ना कि लोगों तक पहुंचने का, वो श्रव्य माध्यम था, और श्रव्य माध्यम था रेडियो, ट्रांजिस्टर, तो आकाशवाणी। तो यह इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, और मुझे यह देखकर वाकई प्रसन्नता हो रही है कि वो आज भी जारी है। आकाशवाणी न केवल सक्रिय है बल्कि अभी भूमिका को अदा कर रहा है और आज भी साहित्य को महत्व उतना ही दे रहा है। आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि हम इसका भाग रहे हैं, हिस्सा रहे, अंग रहे हैं।
0: 90 वर्षों का आकाशवाणी का सफर ये महज एक संख्या नहीं,

0: 90 वर्षों की सेवा, 90 वर्षों की साधना और 90 वर्षों की आवाजों का उत्सव है। भारत की आत्मा का संबंध उन भाषाओं से बहुत गहरा जुड़ा है जिन्हें हम जनजातीय भाषाएं या बोलियां कहते हैं। संथाली, गोंडी, भीली, मुंडारी, कुड़ुक, बोडो ये सिर्फ भाषा या बोलियां नहीं है, ये जीवन दर्शन है। इन भाषाओं के साहित्य में मनुष्य की वो आदिम चेतना है जो आज के भौतिक युग में हम खोते जा रहे हैं। आदिम चेतना यानी वो बोध जो प्रकृति को माँ मानता है, जो नदी में देवत्व देखता है और जो पशु पक्षियों से संवाद करता है, जो धरती को केवल संपत्ति नहीं एक जीवित सत्ता मानता है। संथाली की लोक कथाओं में स्त्री की स्वतंत्रता का उत्सव है। गोंडी गीतों में वन और मनुष्य के बीच का वो रिश्ता है जो आज के पर्यावरण संकट के समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, जनजातीय भाषाओं का साहित्य और उनमें बसी मनुष्य की आदिम चेतना।
1: एक प्राचीन कहावत है, जब एक वृद्ध की मृत्यु होती है तो मानो एक पूरा पुस्तकालय जलकर राख हो जाता है। यही बात भारत की सैकड़ों जनजातीय भाषाओं के बोलने वालों पर भी उतनी ही लागू होती है।
2: भारत की जनजातीय भाषाओं में बसा साहित्य कागज के सफेद पन्नों का मोहताज नहीं रहा। ये तो एक ऐसी वाचिक विरासत है जो पुरखों की सांसों से होती हुई हमारी रगों तक पहुँचती है।

0: जब हम इन कथित हाशियों की भाषाओं के भीतर उतरते हैं तो पता चलता है कि यहाँ का साहित्य एक जीवित ज्ञान परंपरा है।
1: अरुणाचल की मिश्मी कहानियों में हवाओं के रुख को पहचानना हो या नीलगिरी की इरुला जनजाति के गीतों में छिपी जड़ी बूटियों का गहन रहस्य जानना हो तो प्रकृति के साथ जीवन ही एकमात्र तरीका है। चाहे वो लद्दाख के ब्रोकपा समुदाय के हजारों साल पुराने आर्य गीत हों, अंडमान की ओंगे जनजाति की लहरों को समझने वाली कथाएं, या मेघालय की खासी लोक कथाओं का मातृसत्तात्मक दर्शन, ये सब हमारी सामूहिक चेतना के शिलालेख हैं।
0: आज हमारे साथ इस विषय पर जुड़ रही हैं जनजातीय साहित्य और संस्कृति की जानी मानी विशेषज्ञ दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर उमा मीणा।
2: सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जनजाति जो शब्द है ये भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक शब्द है, जबकि लोक प्रचलन में आदिवासी शब्द का प्रयोग होता है। आदिवासी समुदायों ने हजारों सालों के अपने जीवन के अनुभव, जो उनकी ज्ञान परंपरा जिसकी हम बात करते हैं उसमें उनके जीवन के अनुभव हैं, प्रकृति के सानिध्य में रहने के कारण उसका ज्ञान है, ये ज्ञान है उनकी कहानियों में, गीतों में, परंपराओं में, उनकी जीवन शैली में, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है। मुख्य धारा का जो साहित्य है उसे दो भागों में हम मोटे तौर पे विभाजित करते हैं, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। लेकिन आदिवासी बुद्धिजीवी अपने साहित्य को हिंदी के लोक और अंग्रेजी के फोक लिटरेचर से अलग उसे ओरेचर कहते हैं, ओरल लिटरेचर, जो कि पुरखौती साहित्य है। और इनका जो मौखिक ज्ञान है ये लिपिबद्ध करने का काम अंग्रेज अध्येताओं ने किया था। 600 से ज्यादा आदिवासी भाषाएं हैं, 100 से अधिक भाषाओं में लिखित परंपरा है। बहुत सी ऐसी भाषाएं भी हैं जिनकी लिपि नहीं थी लेकिन दूसरी लिपि का इस्तेमाल किया गया, जैसे पूर्वोत्तर में बहुत सारा साहित्य रोमन स्क्रिप्ट में लिखा गया है। कुछ उदाहरण मैं देती हूँ। देखिए, मिशनरी पीओ बोर्डिंग ने संताल पुरखौती कथाओं का रोमन लिपि में प्रकाशन किया था 1924 में। WG आर्चर ने 1945 में संताल पुरखौती गीतों का संग्रह किया था। और अभी 2006 में अन्विता अब्बी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लुप्त प्राय स्वदेशी भाषाओं पर व्यापक शोध कार्य किया गया है। फादर हाफमैन द्वारा संकलित मुंडा गीतों का भी यहाँ जिक्र करना जरूरी है। जब मैं कहती हूँ कि एक भाषा में एक समाज का ज्ञान संरक्षित होता है तो मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी। राजस्थान, क्योंकि एक मरुस्थल क्षेत्र है, वहाँ

0: प्रसाद का बहुत महत्व है। आप देखेंगे कि राजस्थानी भाषा में हर एक माह में होने वाली बारिश के लिए एक अलग शब्द है। वहाँ ऊंट के लिए 270 से भी ज्यादा पर्यायवाची शब्द मौजूद है। तो ऐसे में राजस्थानी संस्कृति को समझने के लिए उसकी भाषा को समझना और उसको सहेजना बहुत जरूरी है। अंडमान द्वीप समूह में एक भाषा है बो, जिसके बोलने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। अंत में बोआ नाम की एक महिला बची जो उस भाषा को बोलती थी, समझती थी। उस भाषा का संरक्षण नहीं किया गया और 2010 में उसकी मृत्यु के साथ वो भाषा खत्म हो गई। आदिवासी साहित्य में स्वानुभूति बनाम सहानुभूति की बहस नहीं है, वहाँ अनुभव की आधिकारिकता पर बल है। और इसीलिए आप देखेंगे कि गैर आदिवासी लेखक भी इसमें शामिल है आदिवासी साहित्य में, जैसे संजीव हैं, राकेश कुमार सिंह, महुआ मांझी, गणेश देवी। और इसके साथ ही आप देखेंगे 90 के दशक के बाद आदिवासी भाषाओं में जो लेखक हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। रामदयाल मुंडा, हेराल्ड तोपनो, वॉल्टर भेंगरा, मंगल सिंह मुंडा, महादेव टोप्पो, निर्मल मिंज, अनुज लुगुन, हरिराम मीना, शंकरलाल मीना। और स्त्रियां भी आदिवासी लेखन में बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। आदिवासी समाज का चित्रण उनकी रचनाओं में बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। इनमें आप देख सकते हैं मंजू ज्योत्सना, वंदना टेटे, सरोज केरकेट्टा, एलिस एक्का, जसिंता केरकेट्टा, वासवी कीड़ो, जिन्होंने आदिवासी जो योद्धा महिलाएं हैं उनके बारे में एक बहुत अच्छी किताब उनकी निकली है। शांति खलको है, बिटिया मुर्मू है, सुषमा असुर है, बहुत सारे नाम हैं। सुशीला सामत जो कि पहली आदिवासी कवित्री और संपादक हैं और 1930 के दशक में लिख रही थी, जब महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान लिख रही थी, लेकिन इनका कहीं जिक्र नहीं मिलता। सीता रत्नमाला जिनकी आत्मकथा जो अभी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में लगी है, 1968 में उनकी आत्मकथा लिखी गई थी और उससे पहले बहुत सारी कविताएं और नाटक उन्होंने लिखे हैं जो कि विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रहे थे, लेकिन हिंदी के लोग उससे परिचित नहीं थे। हिंदी में परिचय तब होता है जब अश्विनी कुमार पंकज उनकी आत्मकथा का हिंदी अनुवाद करते हैं।
1: अकादमिक समझ के साथ साथ इस साहित्य को जमीनी स्तर पर सहेजने की कोशिश भी उतनी ही जरूरी है। इसी सिलसिले में हमारे अगले मेहमान डॉक्टर करमचंद हंसदा बीते कई वर्षों से जनजातीय समुदाय के बीच काम कर रहे हैं।
2: जब हम जनजातीय साहित्य को करीब से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि यह महज शब्दों का मेल नहीं बल्कि हमारे समाज के जीने का ढंग है। अक्सर हम बिरसा मुंडा को एक योद्धा के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में एक नए विचार विशेष की शुरुआत की थी जो सादगी और प्रकृति की पूजा पर आधारित था। साहित्यिक दुनिया में अगर हम देखें, एलिस एक्का का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। वो हिंदी की पहली जनजातीय महिला कहानीकार मानी जाती है। वहीं निर्मला पुतुल जब वो आधुनिक समाज से सवाल करती है कि आपकी प्रगति हमारे विनाश की कीमत पर होगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में तेमसुला आओ जैसे लेखक हैं जिन्होंने नागालैंड की लोक कथाओं को दुनिया के सामने रखा। यह लेखक हमें सिखाते हैं कि जनजातीय समाज में कोई सुपर हीरो नहीं होता, यहाँ पर समुदाय ही नायक है। हमारी कहानियों में चींटी से लेकर हाथी तक और पहाड़ से लेकर नदी तक सबका बराबर का सम्मान है। आज जब हम जनजातीय साहित्य महोत्सवों की बात करते हैं तो हम दरअसल इसी सामूहिक चेतना को बचा रहे होते हैं। यह साहित्य समाज को बताता है कि विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं है। अंत में यही कहूंगा कि इन आवाजों को सुनना और पढ़ना आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है।
3: जनजातीय साहित्य क्रांति की गर्जना, चेतना की पुकार, सशक्तिकरण का शंखनाद और प्रकृति के साथ मनुष्य के उस शाश्वत संवाद की अभिव्यक्ति है जो सदियों से अटल है।
1: असल में ये वो साहित्य है जहां एलिस एक्का की संवेदनाएं बोलती हैं और निर्मला पुतुल की कविताएं हमें उन इलाकों में ले जाती हैं जहां हमारी आदिम सभ्यता के गीत बस गए हैं। साहित्य भारती के लिए मैं नेत्रा
3: और मैं प्रांजल।
4: अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आकाशवाणी में उप महानिदेशक और वरिष्ठ प्रसारक रहे स्वर्गीय के नायर की पुस्तक उसने कुछ मुझसे कहा पर एक लघु चर्चा। एक किताब

0: किताब जब किसी के जीवन की कहानी हो तो वो केवल साहित्य नहीं रहती, वो एक धरोहर बन जाती है। उसने कुछ मुझसे कहा, ये शीर्षक ही अपने भीतर एक पूरा संसार समेटे हुए है। किसने कहा, क्या कहा और सुनने वाला कौन था? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम आज इस पुस्तक के सबसे करीबी साक्षियों से बात कर रहे हैं। उनकी बेटियां सीमा सागर और सुजाता सहाय, जिन्होंने विनोद सहगल के संगीत निर्देशन में अपने पिता की इन रचनाओं को सुरों में भी बांधा है। सुनते हैं ये बातचीत। सुजाता जी, आप पहले तो इस किताब के बारे में ही हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: पापा सब जानते हैं कि वो बहुत ही मशहूर ब्रॉडकास्टर थे, बहुत नामी, बहुत ज्ञानी, बहुत जाने माने, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता था कि वो लिखते थे। एक दौर था जब वो मुशायरों में जाते थे बाकायदा, लेकिन फिर वो दौर कुछ दिनों बाद नहीं रहा, पर उनका लिखना चलता रहा। वो जो लिखते थे वो खुद के लिए लिखते थे, वो किसी को बहुत आसानी से ना सुनाते थे ना वो शेयर करते थे। जब उन्हें लगता था कि सामने वाला इस लायक है कि उसको सुनाया जाए तभी वो सुनाते थे। तो डायरियां थी उनकी बहुत सारी जिनमें वो लिखते थे, वो डायरियां खो गई, सामान इधर से उधर हुआ, तो जो भी हमें मिला, हमें कोई राइटिंग पैड, जिस उनको जहाँ जगह मिलती थी वो थोड़ा सा लिख लेते थे, तो जो जो हमें मिलता गया हम उसको इकट्ठा करते गए। परेशानी ये थी कि वो उर्दू में था, एक और परेशानी ये थी कि उन्हें स्ट्रोक हुआ 98 में, तो उसके बाद उनका हाथ हिलता था लिखने में, तो वो आम आदमी जो उर्दू पढ़ लेता था वो नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि वो जो लिखावट थी रही उसमें बहुत शेकी था। तो बड़ी किस्मत से हमें एक शायर साहब मिले, तो उन्होंने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ। फिर उन्होंने किन्हीं के साथ, ये बहुत हाल ही की बात है, अभी शायद पिछले महीने की, उन्होंने उसको हिंदी लिपि में किया। मेरी बहन ने उसको एक किताब का रूप दिया, क्योंकि हम चाहते थे, इतना खूबसूरत वो लिखते हैं, आप भी पढ़ेंगी तो आपको एहसास होगा कि कहाँ जा रहा है ये, तो आपको भी वो सोचने पे मजबूर करता है। तो हम चाहते थे कि ये जो भी उन्होंने लिखा है वो दुनिया तक।
0: सीमा जी, ये यात्रा कैसे शुरू हुई कि आपको कुछ पुराने लिखे हुए उनके कुछ मजमून मिले जिनको आपने सोचा कि आपको ये को पहले तो आपको लिप्यांतरण ही कराना पड़ा इसका, कि वो उर्दू में थी, फिर आपको इसे देवनागरी में करना था, अच्छी खासी मशक्कत का काम था। तो सीमा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जब आपके हाथ लगा, आपके पिताजी होते तो क्या चाहते इसे पब्लिश करना या नहीं?
2: पापा शायद ना चाहते, क्योंकि वो बहुत संकोच करते थे। जैसे सुजाता ने बताया कि अपनी शायरी भी वो बहुत गिने चुने लोगों को सुनाते थे, लेकिन मुझे एज अ डॉटर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये हमको दुनिया को, दुनिया के साथ ये शेयर करनी चाहिए इनकी शायरी, और इरादा हमारा बिल्कुल पक्का था, तो ये तो हमको काम करना ही था, और ये बहुत खूबसूरती से ये काम हुआ है।
0: और लगे तो ये सवाल भी पूछते चले, जैसे अभी हमें मौका मिला था कि कुछ दिनों पहले आपने जो एक आयोजन किया जहां आपने इनमें से कुछ चुनी हुई गजलों को, नज्मों को आपने संगीत में ढाला है और आपने गाया, आप दोनों बहनों ने उसमें स्वर दिए हैं आपने, और साथ में विनोद सहगल जी का भी साथ आपको मिला। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, आपको क्यों लगा कि ये संगीत में इसे ढाला जाना चाहिए, क्या इसके पीछे मोटिवेशन रहा?
2: जी बिल्कुल, हम दोनों को ये लगा कि इसे संगीत में डालना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि संगीत बहुत लोगों तक पहुंचता है। सब लोग शायद पोइट्री शायरी को ना पढ़ना चाहें, और लेकिन संगीत तो हर कोई सुनता है, और लगा कि इसको अगर हम संगीत में इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये बहुत लोगों तक पहुंचेगा। इसमें जिनका सबसे बड़ा हाथ है वो है विनोद सहगल जी, जो अचानक ही एक प्रोग्राम के दौरान लखनऊ में मेरे फादर को मिले, और क्योंकि वो अंबाला में रहते हैं, मैं उनसे अक्सर मिलती रहती हूँ, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि सर आप जा रहे हैं लखनऊ तो आप उनको, मेरे फादर को ज़रूर मिलिएगा, आपको अच्छा लगेगा उन्हें मिलके। तो वो उन्होंने वक्त निकाला, वो घर गए, उनसे मिले, और बातचीत के दौरान ही उनको ये रियलाइजेशन हुई कि ये तो बहुत अच्छा लिखते हैं, और ये पोइट्री ऐसी है इतने खूबसूरती से मीटर में सेट है, तो इसको मैं, इसमें मैं म्यूजिक में इसको कंपोज कर सकता हूँ, वो ख्याल उनको आया। और बाद में जब वो वापस लौटे अंबाला, तो उन्होंने ऐसे बात करा, इसका जिक्र किया, तो मुझे लगा

0: हाँ क्यों ना हम ये काम करें। और देखते ही देखते वो खुद कहते हैं, ये उनके शब्द हैं, कि ये नैयर साहब की पोइट्री है, मैं इसे इतना प्रभावित हुआ कि मेरे अंदर से धुन अपने आप बनती चली गई। और ये तो पोइट्री का कमाल है कि इतनी खूबसूरत धुनें बन गई। और जब बन गई तो मुझे ख्याल आया कि इसको हम रिकॉर्ड क्यों ना करें।
1: आप लोग क्योंकि बहुत गहरे जुड़े हैं, इससे ज्यादा गहरा जुड़ाव क्या होगा, आप पैदा हुए उसी
2: माहौल में,
1: छत्र छाया में। हाँ, तो आप ये बताइए कि आकाशवाणी का एज एन इंस्टीट्यूशन क्या था, अभी क्या है, और आपको क्या उम्मीदें हैं?
2: हम तो पले बड़े इसमें, बच्चों के प्रोग्राम करने से, फिर थोड़े बड़े हुए तो वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम करने से, फिर हर रात हम इंतजार करते थे हवा महल का, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स और पापा के प्रोग्राम्स तो हम सुनते ही थे, तो रेडियो तो चलता ही रहता था, कभी बंद ही नहीं होता था घर पे।
0: जो प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज ऑफ डिक्शन जो आकाशवाणी में है, जो आपके अनाउंसर्स हैं, आपके जो प्रोडक्शन इंजीनियर्स हैं, जो आप भाषा यूज करते हैं और किस तरह से आप उन शब्दों को कहते हैं। मुझे याद है बचपन में जब मैं कोई गलत वर्ड यूज करती थी, मेरे फादर मुझे इमिजिएटली टोकते थे कि तुम ये गलत कह रही हो, और फिर मैं ध्यान से आकाशवाणी का प्रोग्राम सुनती थी कि अच्छा ये लव्स कैसे कहा गया, और मैं उससे सीखती थी। दैट वॉज माई बैरोमीटर। आई लर्नड लैंग्वेज, आई लर्नड डिक्शन
2: कल्चर
0: फ्रॉम कल्चर। सो आकाशवाणी इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया। जो युवा पीढ़ी है, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पे है कि वो इस ट्रेडिशन को, इस परंपरा को आगे ले जाए और बाखूबी ले जाए। ये बहुत जरूरी बात है।
2: बस एक आखिरी बात, आपने पूछा कि पापा, क्या पापा चाहते कि ये किताब छपे? हाँ। तो मैं कहती हूँ शायद वो मना करते, ऊपर से कहते नहीं नहीं ये मैं नहीं चाहता, लेकिन अंदर से वो बहुत
0: दिल बहुत खुश होते कि ये छप गई है।
1: आपसे एक दरख्वास्त है कि आप लोग एक एक अपनी पसंदीदा कविता या नज़्म या गज़ल, कुछ उसकी कुछ पंक्तियाँ हमें पहले सुझाता जी।
2: इसको पढ़ के मैंने सोचा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है वो पहली बारिश। जब जब आई बरखा रुत की पहली बारिश, भीगी भीगी बोराई सी चले हवाएं, चेहरे को छूकर निकले गीले गीले पोरों से पलके सहलाए, बरखा भीगी सड़क लगे जब खाली खाली, तभी अचानक एक कोने में हंसते गाते धूम मचाते, सावन की पहली बूंदों का शगुन मनाते, आ जाएं अपने साईं जी, लंबी पलके प्यारी आंखें सावन चेहरा, चेहरे पर झूमे लहराए सावन, भीगी लंबी काली घट अलबेली हाथ में चिमटा, ताल से ताल मिलाएं। इसको पढ़ के मैंने सोचा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि हम जब बारिश आती है तो हम निकलते बाहर, नहाते हैं, खेलते हैं, कूदते, ये साईं जी कौन है? मुझे लगा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा शायद साईं जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि पुराने जमाने में जब बारिश होती थी तो एक उनको कहते थे मलंग, वो आते थे, और उनका अटायर ये होती थी, लंबे बाल, हाथ में चिमटा, यहाँ रस्सियाँ, कमर में रस्सियाँ, और वो नाचते गाते थे बारिश में, जैसे वो बारिश का ऐलान करने आते थे। तो मुझे इतनी खूबसूरत ये बात लगी, और जो है नहीं अब ना,
0: जिस पर ये किताब का शीर्षक भी दिया गया है, उसने कुछ मुझसे कहा।
1: बिल्कुल, सीमा जी स्वागत है।
0: उसने कुछ मुझसे कहा हो जैसे, उसने कुछ मुझसे कहा हो जैसे, एक परिंदा सा उड़ा हो जैसे,
1: क्या बात है,
0: नूर ही नूर फजा हो जैसे, फिर किसी लब पे दुआ हो जैसे, आज लगता नहीं पहले जैसा, आज लगता नहीं पहले जैसा, कोई पैबंद लगा हो जैसे,
1: क्या बात है,
0: अक्स आईने में बदला बदला, अक्स आईने में बदला बदला, सामने गैर खड़ा हो जैसे, दूर जाते हुए कदमों के निशा, दूर जाते हुए कदमों के निशा, आके वो लौट गया हो जैसे,
1: क्या हो?
0: रात ने चौंक के देखा किसको, रात ने चौंक के किस देखा किसको, एक शोला सा उठा हो जैसे,
1: वाह,
0: उसके कांपते मोती थामे,

0: ओस के कांपते मोती थामे बर्फ ही दस्ते दुआ हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: वो ही मानूस पुराना बरगद कोई कुछ सोच रहा हो जैसे।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका, आप यहाँ आए, आपने हमें, हमारे सुनने वालों को कम से कम के नैयर साहब से कुछ तारुफ तो कराया जो नहीं जानते थे उन्हें, और जो हम जो नाम से उन्हें जानते थे उनसे थोड़ा और मिलवाया। बहुत शुक्रिया आप सबका,
2: बहुत शुक्रिया।
1: उसने कुछ मुझसे कहा, नैयर साहब की खुद की आवाज जिसने उनसे जीवन भर संवाद किया और अब वो संवाद इस किताब के पन्नों में उतर आया है, सबके लिए, हमेशा के लिए। साहित्य जीवित रहे, भाषाएं जीवित रहे, और 90 वर्षों का आकाशवाणी का ये सफर यूं ही चलता रहे, इसी कामना के साथ साहित्य भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगरा हाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली CBS का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित CBS को दूरसंचार विकास केंद्र C.DOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह

0: Ministry of Information and Broadcasting has appointed noted lyricist, writer and communication expert Prasoon Joshi as the chairman of Prasar Bharati, India's public service broadcaster. Mr. Joshi is a distinguished creative professional with wide-ranging contributions across literature, advertising, cinema and public communication. Prime Minister Narendra Modi has approved the appointment of Dr. R. Balasubramaniam and Dr. Joram Ania as full-time members of the Niti Aayog. The Cabinet Secretariat informed about the appointment through a Gazette notification. The Board of Control for Cricket in India today announced the Indian women's squad for the ICC Women's T20 World Cup 2026. Harmanpreet Kaur will lead the side, with Smriti Mandhana named as the vice-captain. The tournament will be hosted by England beginning on the 12th of June, with the final scheduled at Lord's Cricket Ground on the 5th of July. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala, Mahe, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. Thunderstorms and hailstorms will prevail over Ladakh and Jammu and Kashmir tomorrow. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं किरण शर्मा। मुख्य समाचार। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ जारी तनाव को न युद्ध न शांति की स्थिति बताया, साथ ही भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों पर भी प्रकाश डाला। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हवाई हमलों में 7 लोगों की मौत। अमेरिका द्वारा 5,000 सैनिकों की वापसी की घोषणा के बाद जर्मनी ने यूरोप से अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत करने का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आज रात जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के 3 देशों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। और BCCI ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने आज ईरान और इजराइल अमेरिका गठबंधन के बीच चल रहे तनाव को न युद्ध न शांति वाली स्थिति बताया। बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री इलाही ने कहा कि ईरान ये संघर्ष नहीं चाहता था, लेकिन लगातार हो रहे हमलों के बीच उसे जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। भले ही बातचीत जारी रहने की उम्मीद थी, उन्होंने तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक स्थिरता उन लोगों की कार्रवाइयों पर निर्भर करती है जिन्होंने शत्रुता शुरू की थी। ईरान में मौजूदा स्थिति के बारे में श्री इलाही ने कहा कि हालात स्थिर बने हुए हैं और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि उन्होंने मौजूदा स्थिति अस्थिरता को अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से जोड़ा। श्री इलाही ने भारत के साथ ईरान के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर भी प्रकाश डाला और भारत को एक महान देश बताया जिसका ईरान बहुत सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का साझा इतिहास 5,000 वर्षों से भी अधिक पुराना है, जिसकी जड़ें शिक्षा, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता और आर्थिक संबंधों में जुड़ी हुई हैं। श्री इलाही ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध, सहयोग और तालमेल बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को ईरान द्वारा दी जाने वाली सुविधा इन संबंधों को दर्शाती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी ईरान और भारत के बीच संबंध और अधिक मजबूत होंगे। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती हैं तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया। अमरीका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटने के लिए कहा गया है। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए और कई घायल हो गए हैं। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्ला और इसराइल के बीच मौजूदा युद्ध विराम के बावजूद झड़पें जारी हैं। इसराइल की सेना ने क्षेत्र के 9 गांवों के निवासियों को इलाका खाली करने की चेतावनी देने के कुछ समय बाद ये हमले किए। इस बीच हिजबुल्ला ने कहा कि उसने तटीय गांव बायद में एक घर में मौजूद इसराइली सैनिकों पर ड्रोन हमला किया। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमरीकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उनकी ये टिप्पणी पेंटागन द्वारा कल की गई उस घोषणा के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि ईरान संघर्ष और व्यापारिक शुल्कों को लेकर बढ़ते तनाव के चलते अमरीका जर्मनी से 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। श्री पिस्टोरियस ने यूरोप से अपनी सुरक्षा की अधिक जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया और कहा कि जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति और बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है। जर्मनी में अमरीकी सैन्य उपस्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई और शीत युद्ध के दौरान 1960 के दशक में चरम पर पहुंच गई, जब सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए लाखों अमरीकी सैनिक यहाँ तैनात थे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 मई तक जमैका, सूरीनाम, त्रिनाद और टोबैगो की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार यात्रा के दौरान वे तीनों देशों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे। इन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ होने वाली चर्चा में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र की यातना विरोधी समिति ने पाकिस्तान द्वारा बच्चों और अफगान शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर निर्वासन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। समिति ने एक सम्मेलन में पंजीकृत शरणार्थियों सहित अफगान नागरिकों के खिलाफ की गई पाकिस्तान की जबरन कार्रवाइयों पर अपनी रिपोर्ट पेश की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: समिति ने कहा कि पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों का उद्देश्य उन्हें उत्पीड़न, यातना या दुर्व्यवहार के बावजूद अफगानिस्तान लौटने के लिए मजबूर करना था। समिति ने अफगान शरणार्थियों के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपों की गहन जांच की भी मांग की और दोषियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का आह्वान किया। समिति ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी सहित कार्यकर्ताओं इदरीस खट्टक, अली वजीर और महरंग बलूच पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी हिरासत की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र के कार्य समूह द्वारा की गई है। इसमें चिकित्सा देखभाल तक पहुंच की कमी को लेकर चिंताएं भी शामिल हैं। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
1: केन्या में मूसलाधार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में आई बाढ़ और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत हो गई। भूस्खलन से एलगियो मार्क्वेट काउंटी के कुछ हिस्से भी प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार क्वाले काउंटी और किटुई काउंटी में 2 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ जारी तनाव को न युद्ध न शांति की स्थिति बताया, साथ ही भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों पर भी प्रकाश डाला। दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोगों की मौत। अमेरिका द्वारा 5,000 सैनिकों की वापसी की घोषणा के बाद जर्मनी ने यूरोप से अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत करने का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रात जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के 3 देशों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम नवनीता अधिकारी श्रीवास्तव विद द वर्ल्ड न्यूज।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज, और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 20 सेकंड, और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार का, और हर सिंगार की इस महफिल को लेकर मैं हूं हाजिर आपके दरमियान। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब।

और एक बार फिर से सदाबहार गीतों की कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में, जिसका नाम है हर सिंगार। हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए, और वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गई। और आज ऐसे ही सदाबहार कहानियों और नगमों के साथ हाजिर हैं जो हम सबके दिल के बेहद करीब है। और आज की शाम हम आपको एक ऐसे ही मौसीकी के सफर पर लेकर जा रहे हैं। आज की रात एक ऐसे ही मौसीकी के सफर पर हम आपको लेकर जा रहे हैं जहां पर एक से बढ़कर एक नगमे हैं। और पहला नगमा एक ऐसा नगमा है जो हम सबके दिल के बेहद करीब है। हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको भी बेहद पसंद है। और आज ही नगमा सुनते ही आपके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान ले आएगा। कहते हैं जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ बातें होती है और कुछ तस्करा होता है, तो फिर कई बार ये बात जहन में आती है कि वो ये पूछ बैठते हैं कि यूं ही तुम मुझसे बात करते हो या कोई प्यार का भी इरादा है। और ऐसा ही एक नगमा है 1970 में मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी फिल्म सच्चा झूठा में। इस फिल्म में राजेश खन्ना दोहरी भूमिका में हैं, उनके साथ मुमताज और विनोद खन्ना मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। कहानी एक सरल ग्रामीण व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जिसका एक हमशक्ल होता है एक ठग, जो उसकी सादगी और हूबहू शक्ल का फायदा उठाता है। इस फिल्म की कहानी मनमोहन देसाई की पत्नी जीवन प्रभा ने लिखी है और यह फिल्म 1957 की एक बंगला फिल्म ताशेर घर, जिसमें उत्तम कुमार ने अभिनय किया था, का रूपांतरण है। यह फिल्म उस वर्ष की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी और ये एक सुपरहिट फिल्म रही। राजेश खन्ना के अभिनय की उस समय समीक्षकों ने खूब सराहना की और उन्हें 1971 का सर्वश्रेष्ठ

अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल करने के कारण यह फिल्म 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना की लगातार 17 हिट फिल्मों में शामिल हो गई। तो आइए उसी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस गीत को लिखा है इंदिवर साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी भाई ने। आवाजें हैं लता जी और मोहम्मद रफी साहब की।

फिल्म सच्चा झूठा से, और ये फिल्म आई थी 1970 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब हर सिंगार की इसमें फिल्म में बात एक ऐसे नगमे की जो एक शुद्ध हिंदुस्तानी जबान में नहीं होने के बाद भी लोगों ने इतना पसंद किया कि वो सदाबहार और अमर गीत बन गया। तो आइए बात करते हैं उसी यादगार फिल्म की जिसने न सिर्फ सिनेमा प्रेमियों का मनोरंजन किया बल्कि समाज को एक गहरा संदेश भी दिया, और वो फिल्म थी हरे रामा हरे कृष्णा। साल 1972 में रिलीज हुई यह फिल्म एक व्यंगात्मक यानी तंजिया संगीतमय ड्रामा थी जिसे नौकेतन फिल्म्स के बैनर तले मशहूर और मारूफ अभिनेता और फिल्मकार देवानंद साहब ने लिखा था, और उसके निर्माण और निर्देशन के साथ साथ इस फिल्म में देवानंद साहब ने खुद अभिनय भी किया था। उनके साथ मुमताज, जीनत अमान और प्रेम चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में थे। यह फिल्म उस दौर की एक अहम सामाजिक समस्या को उजागर करती है जिसमें हिम्पी संस्कृति का पतन, साथ ही यह फिल्म नशे के खिलाफ एक सशक्त संदेश देती है और पश्चिमीकरण के प्रभाव से जुड़ी चुनौतियों को भी दर्शाती है। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। खास तौर पर जीनत अमान के करियर के लिए यह फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। उन्होंने एक आधुनिक हिप्पी युवती का किरदार निभाया जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता। दरअसल देवानंद साहब को हरे रामा हरे कृष्णा का ख्याल तब आया जब वे अपनी पिछली फिल्म प्रेम पुजारी के विरोध प्रदर्शनों से वो काफी निराश थे। उसी दौरान उन्होंने नेपाल के काठमांडू का दौरा किया जहां उनकी मुलाकात हिप्पी समुदाय से हुई। यही अनुभव इस फिल्म की प्रेरणा बना। हरे रामा हरे कृष्णा सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक दौर की कहानी है, एक चेतावनी, एक संदेश और एक यादगार सिनेमाई अनुभव। इस फिल्म का संगीत राहुल देव बर्मन ने तैयार किया था और गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे। खास बात यह है कि दम मारो दम और हरे रामा हरे कृष्णा जैसे गाने युवाओं के बीच बहुत जल्द हिट हो गए और उनके सर चढ़कर बोलना शुरू कर दिया, जबकि देखो दीवानों ये काम न करो और साथ ही साथ फूलों का तारों का और कांची रे जैसे गीतों ने संगीतकार आर डी बर्मन की बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाया भी। एक रोचक तथ्य यह है कि कांची रे कांची नगमे में नेपाल के प्रसिद्ध संगीतकार रंजीत गजमेर ने इस फिल्म में पहली बार नेपाली फोक इंस्ट्रूमेंट मादल वाद का को बजाया था, और आर डी बर्मन साहब ने उन्हें बॉलीवुड में तब मौका दिया जब उन्होंने रंजीत द्वारा रचित गीत कांचा रे कांचा को नेपाली भाषा में सुना था और उसका ट्यून उन्हें बहुत पसंद आया था। उसके बाद इस गीत के बोल और संगीत को हिंदी में कांची रे के रूप में फिर से लिखा गया जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज दी, और ये गीत हमेशा के लिए अमर हो गया। तो आइए सुनते हैं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का वही नगमा, वही सदाबहार गीत आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपके अपनी पसंदीदा सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार। और हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में अब बात अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत और रोमांटिक फिल्म की, और वो फिल्म है 1973 की एक संगीतमय ड्रामा फिल्म जिसका नाम है अभिमान, जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, असरानी, बिंदु, डेविड मुख्य भूमिकाओं में थे। यह फिल्म खास तौर पर अपने गीतों के लिए याद की जाती है और इन्हें किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मनहर उदास जैसे गायकों ने अपनी आवाजें बख्शी है। ऐसा माना जाता है कि यह फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दो महान कलाकारों के जटिल वैवाहिक जीवन पर आधारित है। वहीं

फिल्म से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने इसकी कहानी गायक किशोर कुमार और उनकी पहली पत्नी के जीवन से प्रेरित होकर बनाई। ऐसा भी माना जाता है कि 1954 की एक अंग्रेजी फिल्म अ स्टार इज बॉर्न का भी इस पर हल्का प्रभाव है। उसके अलावा ये भी माना जाता है कि यह फिल्म 1970 की बंगाली फिल्म विलंबिता लॉय से भी प्रेरणा लेकर बनाई गई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई और अमिताभ बच्चन के करियर में एक अहम किरदार निभाया। जया बच्चन को अभिमान के लिए फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल ने भी इसी फिल्म से अपने संगीत के करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने जया बहादुरी के लिए एक संस्कृत श्लोक गाया था। और खास बात यह है कि इस फिल्म से जुड़ा एक बहुत ही खूबसूरत वाक्या है। इस फिल्म के गानों से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प वाक्या यह है कि कहते हैं ना कि जो बड़ा कलाकार होता है उसका दिल कहीं उससे ज्यादा बड़ा और विशाल होता है। ऐसा ही हुआ इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसके बोल हैं लूटे कोई मन का नगर। इस गीत का डेमो मनहर उदास ने रिकॉर्ड किया था और इसे मूल रूप से मुकेश साहब के द्वारा गाया जाना था, लेकिन मुकेश साहब ने ये डेमो सुना तो ये कहते हुए मना कर दिया कि ये डेमो बहुत अच्छा है और इस गीत के लिए मनहर उदास को ही मौका दिया जाना चाहिए। और हुआ भी वही, मुकेश साहब के कहने पर उनको ही ये गीत गाने का मौका दिया गया और मनहर उदास साहब ने बहुत ही खूबसूरती से इसे गाया। तो ऐसे होते हैं बड़े कलाकार मुकेश साहब की तरह। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत है एसटी बर्मन साहब का।

किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म अभिमान से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और महफिल सजी है सदाबहार गीतों की हर सिंगार और हर सिंगार की इस महफिल में। अगला नगमा 1975 की एक बेहद खूबसूरत फिल्म आंधी से। वैसे तो इस फिल्म के सारे ही नगमे बेहद प्यारे हैं मगर यह नगमा कुछ खास है। ये गाना सिर्फ एक धुन नहीं, ये उन अधूरी कहानियों की आवाज है जो कभी खत्म नहीं होती, बस रास्ते बदल लेती है। सोचिए एक ऐसा मोड़ जहां दो लोग साथ तो नहीं चल पाते लेकिन एक दूसरे की यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं, और यही इस नगमे की खूबसूरती को बयान करता है। तो आइए सुनते हैं वही बेहद खूबसूरत नगमा आंधी फिल्म से एक बार फिर से किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में, जिसे लिखा है गुलजार साहब ने और संगीत से संवारा है आर डी बर्मन साहब ने।

0: आंधी फिल्म के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद ठीक 11:10 पर एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Paschim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has ordered re-polling in all 285 polling stations, including auxiliary polling stations in Falta Assembly constituency of West Bengal. The Commission mentioned that there has been severe electoral offences and subversion of democratic process during the polling in a large number of polling stations in Falta Assembly constituency on Wednesday. Fresh poll will be held in all polling stations on 21st of this month from 7 a.m. to 6 p.m. Counting of votes will take place on 24th May. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around counting centres. The Commission said these measures are aimed at ensuring that the counting process is conducted in a secure, peaceful, intimidation-free and transparent manner. However, it clarified that police observers will not enter the counting halls under any circumstances on the day of vote counting. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Jayamala Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for the Trinamool Congress, which had challenged the move. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Dr. R. Balasubramaniam and Dr. Joram Ania on being appointed as full-time members of Niti Aayog. In a social media post, Mr. Modi said their rich experience and deep understanding of various issues will greatly strengthen policy making. He expressed confidence that their contributions will help drive innovation and growth across sectors. The Prime Minister wished them a very productive and impactful tenure ahead. Communications Minister Jyotiraditya Sindhya today launched the cell broadcast system CBS to strengthen India's emergency communication systems and enhance public safety infrastructure. A nationwide test of the system was successfully conducted today, during which emergency alert messages were broadcast to mobile phones. Speaking at the launch in New Delhi, the minister called it a transformative step in India's disaster management framework, reflecting the shift from a reactive to a proactive approach in safeguarding citizens. The Ministry of Information and Broadcasting has appointed noted lyricist, writer and communication expert Prasoon Joshi as the chairman of Prasar Bharati, India's public service broadcaster. Mr. Joshi is a distinguished creative professional with wide-ranging contributions across literature, advertising, cinema and public communication. The Board of Control for Cricket in India today announced the Indian women's squad for the ICC Women's T20 World Cup 2026. Harmanpreet Kaur will lead the side with Smriti Mandhana named as vice president. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका अपना अजीज दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और गीत मेरे मनमीत में हम आपके लिए लेकर आते हैं गोल्डन एरा यानी सुनहरे दौर के उन नगमों को जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। ये वो नगमे हैं जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। तो आइए आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म के नगमे के साथ। ये फिल्म जिसका नाम है आवारा। ये फिल्म आई थी 1951 में। राज कपूर साहब के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जिसका निर्माण भी खुद राज कपूर साहब ने किया था और इस फिल्म को लिखा था ख्वाजा अहमद अब्बास ने। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, नरगिस, लीला चिटनीस, केन सिंह और शशि कपूर। इस फिल्म के गीतों को लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत मुकेश साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में आपके लिए।

मुकेश साहब की बेहद खूबसूरत यह फिल्म और यह फिल्म आई थी 1951 में। अगर सुने दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गोल्डन एरा के उन रोमांटिक गीतों को लेकर हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। ये वो दौर था जब हमारे पास इतनी तकनीक नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी हमारे उन महान कलाकारों ने, उन महान फिल्म मेकर्स ने ऐसी फिल्में बना दी जो हमेशा के लिए यादगार रह गई। सिर्फ यादगार ही नहीं बल्कि ये फिल्में अमर हो गई। उसी श्रेणी में एक और फिल्म आई थी 1952 में और वो फिल्म थी आन। महबूब खान साहब के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जिसका निर्माण भी खुद महबूब खान ने किया था और इसको लिखा था एस अली रजा ने। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में दिलीप कुमार, निमी, नादिरा, प्रेमनाथ वगैरह ने बहुत ही अहम किरदार निभाया था। यह फिल्म बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी फिल्म थी, अपने दौर की बहुत ही कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म के गीतों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्माया भी गया और गायकों ने बहुत ही खूबसूरत अपनी आवाज़ें भी बख्शी, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी, शमशाद बेगम और भी बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म के गीतों को गाया है। उन्हीं में से एक बहुत ही प्यारा नगमा है जिसको लिखा है शकील बदायूनी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है नौशाद साहब ने। तो आइए आन फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में।

रजनी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:22 और 48 सेकंड। महफिल सजी है आपके अपनी पसंदीदा गीतों की, गीत मेरे मनमीत। और गीत मेरे मनमीत में हम आपके लिए लेकर आते हैं गोल्डन एरा यानी सुनहरे दौर के उन नगमों को जो हम सब के दिल के बेहद करीब है और बहुत ही पसंदीदा नगमे होते हैं। इन नगमों को सुनने के बाद एक अलग सा सुकून हम सब के दिलो दिमाग में छा जाता है और कोशिश ये होती है कि हम इन नगमों को बार बार सुनते रहें, गुनगुनाते रहें। ऐसा ही एक नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म बूट पॉलिश से। यह फिल्म आई थी 1954 में। इस फिल्म के निर्देशक थे प्रकाश अरोड़ा और इस फिल्म को राज कपूर साहब ने बनाया था या उनके निर्माण में बनी थी यह फिल्म। और इस फिल्म में जिन लोगों ने अभिनय दिखाए थे वो थे रतन कुमार, नाज, डेविड चंद बर्ग, बुधो आडवाणी और खुद राज कपूर साहब ने। खास बात यह है कि इस फिल्म के गीतकार शैलेंद्र ने एक नेत्रहीन गायक के रूप में चली कौन से देश गाना भी गाया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा है शैलेंद्र साहब ने और साथ ही साथ हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। इसी फिल्म का ये नगमा बूट पॉलिश का ये नगमा आशा भोसले जी और मन्ना डे साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में खास तौर से आपके लिए

0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल तुम्हें प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझे रुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे रुकना

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:33 और 4 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, और गीत मेरे मनमीत में सुनहरे दौर के यानी गोल्डन एरा के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। ये वो नगमे हैं जिन्हें बार बार आप सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं और कई बार आप इन्हें देखना भी चाहते हैं। तो उस दौर के जो नगमे हैं यानी 1947 से लेकर के 1965 के आसपास के जो नगमे हैं, जो फिल्में हैं, बेहद खूबसूरत फिल्में और माइलस्टोन ये मूवी थी, वो तमाम फिल्में जो उस दौर में बनी आज भी हम उन्हें जब भी देखते हैं तो हमें उस दौर में लेकर चले जाते हैं जब सब कुछ बिल्कुल नया नया था। उसी दौर में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था CID और ये फिल्म आई थी 1956 में। राज खोसला साहब के निर्देशन में बनी इस फिल्म में, इस फिल्म को लिखा था इंद्रराज आनंद ने और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में देवानंद, शकीला, वहीदा रहमान, केन सिंह, जॉनी वॉकर और साथी कलाकारों में कुमकुम, महमूद, मीनू मुमताज, टुनटुन, दिलराज, जगदीश वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और जानिसार अख्तर साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था ओपी नैयर साहब ने। तो इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं।

शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में।

शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में नगमा था फिल्म सीआईडी से, और ये फिल्म आई थी 1956 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत, और गीत मेरे मनमीत में गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और सदाबहार नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। और इस कड़ी में अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो फिल्म आई थी 1957 में। इस फिल्म के निर्देशक थे बीआर चोपड़ा साहब, और बीआर चोपड़ा साहब ने ही इसका निर्माण भी किया था। इस फिल्म में जिन कलाकारों ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे उनमें दिलीप कुमार, वैजयंती माला, अजीत, जीवन, जॉनी वॉकर, चांद उस्मानी, नाजिर हुसैन, मनमोहन कृष्ण, लीला चटनीस, प्रतिमा देवी, डेजी ईरानी, मूलचंद, मीनू मुमताज और कुमकुम वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा साहिर लुधियानवी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा एक बार फिर से ओपी नैयर साहब ने। तो आइए इसे फिल्म का बहुत ही खूबसूरत गीत, यानी फिल्म नया दौर का बहुत ही खूबसूरत गीत, एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और सदाबहार गीतों के साथ हम हाजिर हैं। गोल्डन एरा के नगमों में हम आपके लिए उन नगमों को चुनकर लाते हैं जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं और कई बार आप झूमने भी लगते हैं इन नगमों को सुनकर। उन्हीं नगमों में से ये नगमा था नया दौर का, जिस पर यकीनन आपने ज़रूर झूमना शुरू कर दिया होगा। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और गीत मेरे मनमीत के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म के नगमे के साथ। और यह फिल्म है 1963 में आई मेरे महबूब के नगमे से हमने लिया है ये नगमा, और जिसके निर्देशक थे एस रवेल साहब, जिसका निर्माण भी खुद उन्होंने ही किया था, यानी HS रवेल साहब ने ही किया था। इस फिल्म के गीतों को बहुत ही खूबसूरती से लिखा था शकील बदायूनी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था नौशाद साहब ने। और इस फिल्म में जिन लोगों ने मुख्य किरदार निभाया था उनमें राजेंद्र कुमार, साधना, निमी, अशोक कुमार, प्राण, जॉनी वॉकर, अमिता, मुमताज बेगम और मलाइका वगैरह ने बहुत ही अहम और खूबसूरत किरदार निभाया था। इसी फिल्म का एक नगमा है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं लता जी की आवाज़ में, और इसको लिखा है शकील बदायूनी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है नौशाद साहब ने।

फिल्म मेरे महबूब के इसी नगमे के साथ अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत कव्वाली के साथ। आवाज़ें हैं शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर की, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है रवि साहब ने। और यह कव्वाली है 1963 में आई फिल्म आज और कल से। तो आइए सुनते हैं ये कव्वाली।

फिल्माज और कल की इसी कव्वाली के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद आप सुनेंगे अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। अब इन सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। 24 पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय मौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम बट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। मणिपुर में इम्फाल उखरुल मार्ग पर कुछ अज्ञात हथियारबंद उपद्रवियों ने राहगीरों पर गोलीबारी की, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई और सामान्य यातायात बाधित हो गया। ये घटना उखरुल जिले के लिल्टन पुलिस थाना के अंतर्गत न्यू हेवन और टीएम कसोम क्षेत्र में हुई। घटना का समाचार मिलने तक किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है।

0: KIRFM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूँ आपके साथ रश्मि कुकरेती और अब जो कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है आपका पसंदीदा पानी पर लिखी कहानी। आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं मंजू बत्रा की लिखी कहानी उजाले की ओर। दोस्तों, कुछ लोग बहुत बड़ा करना चाहते हैं, वो अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचते हैं, लाचार और बेबस लोगों की मदद करना चाहते हैं। जब वो काम करने निकलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी इस मुहिम में कुछ और लोग भी अपने आप हाथ लगा देते हैं और तभी मिल पाता है उजाला। ऐसी ही कुछ कहानी है आज की जिसको सुना रही है मंजू बत्रा और ये कहानी भी उन्हीं की कलम से, तो आइए सुनते हैं। एक बात और कह दूं, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है या कुछ और कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में तो हमें जरूर मैसेज करें व्हाट्सएप पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप सभी को मालूम है, fmgoldairdelhi@gmail.com। दोस्तों, हमें आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी। आपके संदेश हमें अगली कहानी को और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आइए सुनते हैं ये कहानी।
1: रेलवे स्टेशन पर धक्का मुक्की और शोरगुल के बीच गरिमा दौड़ती भागती प्लेटफॉर्म पर दाखिल होती है। वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी, इस इंटरनेट पैक को भी आज ही खत्म होना था। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, सुबह से ही इतनी हड़बड़ी में रही कि मोबाइल रिचार्ज करने का ना तो मुझे ख्याल रहा और ना ही वक्त। मैंने ट्रेन की लाइव लोकेशन भी चेक नहीं की। कोई मेरे जितना लापरवाह कैसे हो सकता है। गरिमा ने ध्यान से प्लेटफॉर्म पर होने वाली अनाउंसमेंट को सुना।
2: कृपया ध्यान दीजिए, 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस नागपुर भोपाल के रास्ते।
1: अनाउंसमेंट हो रही थी चेन्नई एक्सप्रेस अपने तय समय से ठंड और कोहरे की वजह से 4 घंटे देरी से है।

चार घंटे इंतजार, गरिमा का दिल बैठ गया। वो बेमन से सामान की ट्रॉली और अपने शरीर को खींचते हुए वेटिंग रूम के बारे में पता करने लगी। मैम, यहाँ दो तरह के वेटिंग रूम हैं, नॉन एसी और एसी, आप कौन सा वाला लेंगी? अच्छा, ये बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? फैसिलिटी और सर्विस का डिफरेंस है मैम। अच्छा अच्छा, ऐसा करो मुझे एक एसी वेटिंग रूम का टिकट दे दो। अच्छा मैम। टिकट लेने के बाद गरिमा मन ही मन सोचने लगी, यात्राएं तो महंगी सस्ती होती हैं, पर इंतजार भी महंगा और सस्ता होता है, इस बात पर तो उसने कभी गौर ही नहीं किया। वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। एसी वेटिंग रूम का टिकट अपने पॉकेट में रखकर गरिमा प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आसपास नजरें दौड़ाने लगी। प्लेटफॉर्म पर कोने में एक फकीर और उसकी बेटी गाना गा रहे थे।

रेलवे स्टेशन पर मध्यम रोशनी है, ऐसी रोशनी की जिसे ना तो उजाला कहा जा सकता है और ना ही ऐसी ओझलता कि जिसे अंधेरा ही कह दिया जाए। रेलवे लाइन आपस में कितनी टकराती हैं, पर मजाल है किसी ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को रास्ता ना दिया हो। गरिमा ठंड से कांप रही थी, दिसंबर की ठंड उछल कर जनवरी के महीने में कूद आई थी। ऐसा लग रहा था मानो ठंड ने कोहरे को अपने बच्चे की तरह गोद

रफ्तार को लिख लिया जाए। यही सोचकर गरिमा ने स्टॉल से एक ग्रीटिंग कार्ड खरीद लिया। ग्रीटिंग कार्ड लेकर गरिमा वेटिंग रूम में आ जाती है और कोने में रखी टेबल कुर्सी पर बैठकर ग्रीटिंग कार्ड लिखने लगी। लिखते हुए वो सोचती है उसके पास वक्त भी निर्धारित है और स्पेस भी। ग्रीटिंग कार्ड के सिर्फ 2 पेज और इंतजार के 4 घंटे। सिर्फ इस टाइम और स्पेस में उसे अपनी बात खत्म करनी होगी। इसलिए गरिमा ज्यादा स्मृतियों में ना जाकर पिछले दिसंबर के महीने में खुद को उतार देती है। हाँ, दिसंबर के ठंड के दिन ही थे जब उसकी डॉक्टर कार्तिक से मुलाकात हुई थी। डॉक्टर कार्तिक 2 गली छोड़कर गरिमा के फ्लैट के सामने वाले बंगले में रहते हैं। डॉक्टर कार्तिक ने पूरे बंगले को ही हॉस्पिटल बना रखा है। बेसमेंट में मरीजों को एडमिट करने का अरेंजमेंट है। फर्स्ट फ्लोर पर रूटीन चेकअप के बाद प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। सेकंड फ्लोर ही है जहां पर दवाइयों की स्मेल नहीं आती और वो है उनका बेडरूम। एक दिन गरिमा एक बच्चे का इलाज कराने डॉक्टर कार्तिक के घर गई। क्या हुआ इन्हें? पैर में हल्की सी मूंछ है डॉक्टर। क्या कर रहे थे नन्हे जनाब कि आपके पैर में मूंछ आ गई? विभू डर के मारे गरिमा की तरफ देखता है और गरिमा डॉक्टर को जवाब देती है, कुछ नहीं डॉक्टर, कल रात रजाई में बैठकर शक्तिमान देखते रहे और सुबह मुंह से स्मोक धुआं निकाल निकाल कर अपने दुश्मनों को मारते फिर रहे थे और फिर भी तमराज किलविश नहीं मरे तो छत पर जाकर शक्ति शक्ति शक्तिमान शक्ति शक्ति शक्तिमान बोलकर गोल गोल घूमकर सीधा टेरेस से बालकनी में आ गिरे हैं और नतीजा आपके सामने हाजिर है। डॉक्टर कार्तिक और गरिमा दोनों विभू के बालमन पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसे देखकर विभू शर्मा जाता है और गरिमा को जोर से पकड़ लेता है। गरिमा के जाने के बाद डॉक्टर कार्तिक गरिमा की पर्सनैलिटी और बिहेवियर से बड़ा खुश होते हैं, पर डॉक्टर कार्तिक समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी कम उम्र लड़की का बच्चा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो अपने नौकर मनोहर से पूछते हैं, कौन थी ये मैडम? साहब प्रोफेसर है, अनाथ बच्चों को पालती है। सामने वाली बिल्डिंग में पूरे 2 फ्लैट पर कब्जा किया हुआ इसने, ना जाने कहां से किस किस को उठा लाती है। कभी भी कहीं से भी कोई भी जख्मी कुत्ता उठा लाती है, फिर उसकी मरहम पट्टी करती है, खाना खिलाती है, ठंड में कपड़े पहनाती है, गरीब बच्चों को पेंसिल किताबें बांटती फिरती है। अभी पिछले संडे कॉलोनी के पीछे वाले पार्क में लोगों के सामने भाषण दे रही थी और बोल रही थी कि सभी अपने बच्चों को जरूर स्कूल भेजें, सरकारी स्कूल में शिक्षा और खाना बिल्कुल मुफ्त मिलता है। पूरी बिल्डिंग के नाक में दम कर रखा है साहब इसने। साहब खुद का कोई घर परिवार तो है नहीं, इसलिए अनाथों को पालती फिरती है। घर गृहस्थी की कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, शादी तो की नहीं इसने। क्या कहना चाहते हो तुम? शादी तो मेरी भी नहीं हुई। साहब आपकी बात अलग है। कैसे अलग है? डॉक्टर कार्तिक ने चश्मे को टेबल पर रखते हुए पूछा। वो हमें नहीं मालूम साहब, लेकिन आप इन मैडम से बहुत बेहतर हैं। और हाँ, इन मैडम से थोड़ा दूर ही रहिए। लोगों से कपड़े मांगती फिरती है, कभी कुत्तों के लिए खाना मांगती है, कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है। छोड़िए साहब, आप भी क्या बात लेकर बैठ गए, मैंने खाना लगा दिया है, आइए खाना खाते हैं। डॉक्टर कार्तिक को मनोहर की बातों में एक संकीर्णता नजर आई और वो पूरी रात गए।

एक दिन मॉर्निंग वॉक के दौरान कॉलोनी के पार्क में डॉक्टर कार्तिक को गरिमा नजर आती है। उनके कदम ना चाहते हुए भी गरिमा की ओर खींचे चले आते हैं। गुड मॉर्निंग गरिमा जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर कार्तिक, आप कैसी तबीयत है नन्हे शक्तिमान की? अच्छा है, मैंने सुना है बहुत बड़ा परिवार है आपका। जी हाँ, पूरे 16 बच्चे और 18 स्ट्रीट डॉग्स की माँ हूँ मैं। और एक हमें देखिए, पूरे घर में एन मीन तीन लोग भी नहीं। अच्छा गरिमा जी, मैं चलता हूँ। मॉर्निंग वॉक पर रोज ही डॉक्टर कार्तिक और गरिमा अपनी दिनचर्या को लेकर अक्सर बातें करने लगे। एक दिन डॉक्टर कार्तिक गरिमा को अपने घर पर चाय के लिए इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि उनका एक दोस्त कल शाम उनसे मिलने अमेरिका से आ रहा है और कल शाम का वक्त वो उनके और उनके फ्रेंड के साथ बिताए तो उन्हें अच्छा लगेगा। गरिमा भी हाँ कह देती है। डॉक्टर कार्तिक केतली से कप में चाय डालते हुए कहते हैं, गरिमा जी इनसे मिलिए, ये हैं अंकुर सक्सेना। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, हमने साथ साथ स्कूलिंग की, कॉलेज भी साथ गए और फिर हम दोनों हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए। मैं MBBS करके लौट आया पर अंग्रेजी जर्नलिज्म ने इसके पैर बांध दिए और ये वहीं सेटल हो गया। आजकल ये अमेरिका की किसी न्यूज एजेंसी में सीनियर जर्नलिस्ट है। और अंकुर अब इनसे मिलिए, ये हैं प्रोफेसर गरिमा, ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। तुम्हें मालूम है कितनी बड़ी फैमिली है इनकी? पूरे 16 बच्चे और 18 डॉग्स की माँ है ये। डॉक्टर कार्तिक, मैं तो इस फैमिली को और भी बड़ा करना चाहती हूँ पर मैं करूँ क्या? मैं तो अपने आप को इस मामले में बहुत बेबस और लाचार समझती हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ वो बच्चे हैं जिनका इस संसार में कोई नहीं है, जो पूरी तरह से अनाथ हैं, जो चाय की दुकानों पर, ढाबों पर लोगों की जूठन धोते हैं, जो रेड लाइट रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं, नाम के नाम पर, पहचान के नाम पर जिनके हिस्से में छोटू गुड्डू जैसे शब्द ही आ पाते हैं। आपको मालूम है जब मैं इनके शरीर पर स्कूल यूनिफॉर्म देखती हूँ, कंधों पर स्कूल बैग, हाथों में रंगीन किताबें देखती हूँ, स्कूल जाते इनके नन्हे नन्हे कदमों की आहट सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मानो पूरी पृथ्वी बौनी हो गई हो, मानो इन कदमों ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया हो। मेरे भीतर की इस माँ को समझा है कभी किसी ने? मैं चाहती भी नहीं कि लोग मुझे समझें, पर मुझे वो ना समझें जो मैं नहीं हूँ। मेरी सैलरी से मैं बस इतने ही अनाथ बच्चों को पाल पाती हूँ। जब कोई अनाथ बच्चा मेरे दरवाजे से बिना शरण लौट जाता है, मैं समझा नहीं सकती मेरा दिल कितने टुकड़ों में फट जाता है। क्या महसूस किया है आपने कभी ऐसी माँ के कलेजे को?

लंबी और गहरी सांस भरते हुए अंकुर ने गरिमा से कहा, तो आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स क्यों नहीं लिखती? बहुत सी एनजीओज हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। मेरी कलम घिस गई है आर्टिकल लिखते लिखते। और आर्टिकल ही क्यों, मैंने तो कई कॉन्फ्रेंसेस में लंबे लंबे भाषण भी दिए हैं, पर मुझे कहीं से भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। आई एम स्टिल हेल्पलेस मिस्टर अंकुर, आई एम स्टिल हेल्पलेस। मैं आज भी बेसहारा हूँ, मैं आज भी बेबस हूँ। गरिमा डॉक्टर कार्तिक और मिस्टर अंकुर के चेहरों की तरफ देखती है और कहती है, आई एम सॉरी डॉक्टर कार्तिक, मैं भावनाओं में बह गई थी, इस खुशी के मौके पर न जाने क्या उटपटांग बात लेकर बैठ गई। अच्छा डॉक्टर कार्तिक, मुझे इजाजत दीजिए, मेरे बच्चों का डिनर का वक्त हो गया है, मुझे खाना बनाना है। क्या मेड नहीं रखी आपने? मेड? नौकर रखने का मतलब है मेरे एक बच्चे की एजुकेशन का खत्म हो जाना। नाइस टू मीट यू मिस्टर अंकुर, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लिसन गरिमा जी, ये मेरा कार्ड है, आप इस पर मुझे अपने आर्टिकल्स भेजिएगा।

0: वॉक करते हुए गरिमा नोटिस करती है पिछले 3 दिनों से डॉक्टर कार्तिक मॉर्निंग वॉक पर नहीं आए हैं। गरिमा सोच में पड़ जाती है कि कहीं उस दिन चाय पर उनके दोस्त के सामने वो कुछ ज्यादा तो नहीं भूल गई थी। उसका मन बेचैन हो उठता है और वो शाम को डॉक्टर कार्तिक के घर जाती है। डॉक्टर कार्तिक अपने अंधेरे कमरे में लेटे हुए हैं। डॉक्टर कार्तिक कौन? गरिमा जी? जी हाँ, क्या हुआ आपको? आजकल आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं आते?
1: कुछ नहीं,
0: थोड़ी तबीयत खराब है। डॉक्टर होकर आप भी बीमार हो गए? यही तो गलत फहमी है आप लोगों की कि डॉक्टर बीमार नहीं हो सकते। डॉक्टर्स का दिल धड़कना बंद नहीं करता। हम डॉक्टर को भी कई बार दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो फिर आपने किसे बुलाया अपने इलाज के लिए? डॉक्टर साहिबा आज खुद ही चली आई हमारी बीमारी पूछने। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर कार्तिक?
1: नहीं, मैं कहना नहीं, समझाना चाहता हूँ।
0: क्या? यही कि आपसे मिलने से पहले मेरी सोच कितनी सीमित थी। मुझे ऐसा लगता था कि गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करके मैं कोई बहुत महान काम कर रहा हूँ। और कई जगहों पर तो मैंने ये भी कहा कि मैं लोगों की मदद करने में इतना मसरूफ हूँ कि मुझे शादी करने का भी वक्त नहीं मिला। शादी ना करना मेरे लिए ऐसा त्याग रहा जो मैं समाज पर उधार की तरह वसूलता रहा। पर उस दिन जब मैंने आपको सुना तो लगा एक ऐसा इंसान जिसने अपना सब कुछ लोगों में बांट दिया और फिर भी अपने आप को कितना बेबस और लाचार समझती है। गरिमा जी, मेरा दिल आपकी तरह तो नहीं है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपके किसी काम आ सकूँ। मुझे अपना ये बड़ा घर अब तहखाना सा लगता है। आप बुरा ना माने तो अपने नए बच्चों को यहाँ जगह दे सकती हैं। आपको पता है गरिमा जी, मुझे अभी तक जिंदगी से यही शिकायत रही कि मुझे मुझ जैसा कोई सोलमेट क्यों नहीं मिला। पर आपसे मिलने के बाद मेरी शिकायत भी खत्म हो गई। गरिमा जी, मैं आप पर कोई हक नहीं चाहता, आपका साथ चाहता हूँ। आप एक और अनाथ को अपने परिवार में शामिल कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। देखिए डॉक्टर कार्तिक, आप मुझे बेबस और लाचार समझने की भूल ना ही करें तो बेहतर है।
1: क्या कहा?
0: बेबस और लाचार? और नहीं तो क्या। खूब समझती हूँ मैं आप जैसे पुरुषों को जिन्हें बौद्धिक और आत्मनिर्भर महिलाएं आकर्षित तो करती हैं, पर वो सिर्फ उन्हें घर की चार दीवारी के खूंटे में ही बांधना चाहते हैं। गरिमा, मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारे दिल की तरह तुम्हारा दिमाग भी विशाल है, लेकिन मैं गलत हूँ। तुम बहुत ही आत्मकेंद्रित महिला हो। तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे तुम्हारे बच्चे छीन लूंगा? विचारों के स्तर पर बहुत बौनी हो तुम, जो अनाथ बच्चों की सेवा पर सिर्फ अपना अधिकार समझती है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सेल्फ ओरिएंटेड के साथ साथ लालची भी हो। डॉक्टर कार्तिक, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लालची और आत्मकेंद्रित कहने की? मैंने तो सही को सही और गलत को गलत कहा है। अब समझ आता है कि क्यों तुम्हारा सच जो जायज है व्यक्तिगत स्तर पर सिमट कर रह गया है। शट अप डॉक्टर कार्तिक।
1: शट अप डॉक्टर कार्तिक कहकर वो डॉक्टर कार्तिक के घर से लौट आई थी।
0: ऐसा लग रहा था ग्रीटिंग कार्ड ने भी उसे शट अप कह दिया था। ग्रीटिंग कार्ड के पन्ने खत्म हो गए थे। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे और वक्त ने भी उसे स्टैचू बोल दिया था।
2: कृपया ध्यान दीजिए, 12

0: 621।
1: प्लेटफॉर्म पर चेन्नई एक्सप्रेस के खड़े होने की लगातार अनाउंसमेंट हो रही थी। गरिमा का वक्त और स्पेस खत्म हो चुका था, पर कहानी अभी अधूरी थी। एक हाथ में ग्रीटिंग कार्ड और दूसरे हाथ में टिकट, गरिमा अपने विकल्प के मझधार में फंस जाती है। ग्रीटिंग कार्ड उसे उसके प्यार तक ले जा सकता है और टिकट उसे उसकी मंजिल की ओर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गरिमा बहुत सोचने के बाद प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगती है और अपने लिखे हुए ग्रीटिंग कार्ड को डस्टबिन में फेंकने लगती है, पर वो देखती है कि डस्टबिन में बहुत से ग्रीटिंग कार्ड के टुकड़े पहले से मौजूद हैं। उसे लगता है कि शायद किसी ने अपनी रेल की टिकट को नहीं फाड़ा है, इसलिए ये मोहब्बत के परचम डस्टबिन में अभी भी किसी के इंतजार में सांसें भर रहे हैं। गरिमा अपने रेल टिकट के टुकड़े टुकड़े कर डस्टबिन में ग्रीटिंग कार्ड के कचरे पर फूल की तरह बिखरा देती है और दौड़ती हुई रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर एक

टैक्सी में बैठी गरिमा को याद आता है कि जिस दिन उसका और डॉक्टर कार्तिक का झगड़ा हुआ था, तब से डॉक्टर कार्तिक मॉर्निंग वॉक पर नहीं आए हैं। उनके घर के बाहर मरीजों की भीड़ भी नहीं दिखी। कल दोपहर को लंच के बाद उसने सेकंड फ्लोर से डॉक्टर कार्तिक की खिड़की की ओर देखा तो विंडो पर काले पर्दे लगे हुए थे। ओह माय गॉड, ये क्या किया मैंने, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। सच ही तो कहा था डॉक्टर कार्तिक ने कि मैं बहुत आत्मकेंद्रित हूँ। गरिमा डॉक्टर कार्तिक के घर पहुंचकर डोरबेल बजाती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। दरवाज़ा ना खुलने पर गरिमा जोर जोर से दरवाज़ा पीटती है। दरवाज़ा खोलो कार्तिक, ओपन द डोर। तुम सही थे कार्तिक, मैं अपने बच्चों के प्यार में बहुत लालची हो गई थी, जिसने आपके प्यार की गहराई को नहीं समझा। सही कहा था डॉक्टर कार्तिक आपने, अगर तुम्हारा साथ रहेगा तो अंधेरे में भी रोशनी खिल जाएगी। वी लव यू कार्तिक, वी ऑल लव यू।

थोड़ी देर बाद गेट खुलने की आवाज आती है। गेट पर कार्तिक खड़े हैं। गरिमा तुरंत डॉक्टर कार्तिक के गले लग जाती है और बहुत रोती है। कार्तिक गरिमा का हाथ पकड़कर अंदर लाता है। बहुत ठंड है बाहर। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। तो चेन्नई एक्सप्रेस की टिकट फाड़ ही दी तुमने, चाय का कप थमाते हुए कार्तिक ने कहा। गरिमा शर्म से अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। मुझे मालूम था कि तुम जरूर लौटोगी, कल शाम को कॉन्फ्रेंस है ना तुम्हारी। देखो मैंने आज दोपहर की 2 AA टिकट चेन्नई के लिए पहले से ही बुक की हुई है। तभी कार्तिक का मोबाइल रिंग करता है। हेलो कार्तिक, मैं अंकुर बोल रहा हूँ। सुन, प्रोफेसर गरिमा को कांग्रेस कह देना। कार्तिक अपने मोबाइल का लाउडस्पीकर ऑन कर देता है। क्यों कांग्रेस कह दूं गरिमा जी को? अरे उनके आर्टिकल्स ने हंगामा मचा दिया है। मैंने उनके आर्टिकल्स का एक कोलाज बनाया था और वो स्टोरी इतनी हिट हुई कि एक बहुत बड़ी चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन उनके साथ काम करना चाहती है और एक डॉक्यूमेंट्री कंपनी उनके बच्चों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाना चाहती है। और तुझे पता है सबसे खास बात क्या है? क्या है कि वो सभी भारत में रहकर भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सच कहूं कार्तिक, मैं भी विदेश में रहकर थक गया हूं। मुझे भी अपने देश की मिट्टी बुलाती है। मैं भी अपने देश के लिए काम करना चाहता हूं। मैं भी अपने देश के लिए लिखना चाहता हूं। अच्छा सुन, मैं मीटिंग में हूं। मैं तुझसे और गरिमा जी से बाद में डिटेल में बात करता हूं। कार्तिक और गरिमा दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। कार्तिक एयर टिकट्स की ओर इशारा करके कहते हैं, हम इनका क्या करूं? गरिमा टिकट्स को कार्तिक से छीनकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है और कार्तिक के गले लग जाती है। मन ही मन बुदबुदा रही थी। सभी ने आधी

0: रात के बाद होने वाले उजाले को पा लिया है। मिस्टर अंकुर को अपना देश मिल गया, डॉक्टर कार्तिक को उनका प्यार, गरिमा के बच्चों को उनका पिता और गरिमा को अपने हिस्से के और नए बच्चे। दोस्तों, कुछ लोग सूरज की तरह होते हैं जिनका उद्देश्य होता है लोगों के जीवन में उजाला फैलाना। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति है रश्मि कुकरीति की। मंजू बत्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, अभी आपने ये कहानी सुनी, मंजू बत्रा की लिखी, उन्हीं की जुबानी, उजाले की ओर। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है fmgoldaird@gmail.com।

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे पानी पर लिखी कहानी। बेहद प्यारी सी ये कहानी सुनकर हर किसी को बहुत ही प्रेरणा मिलती है, लोग मोटिवेट होते हैं और इसी तरह हर किसी की मदद करते हैं। मैं हूं श्रेयसी और पानी पर लिखी कहानी के बाद अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कुछ प्यारे से नगमे के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं, उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि फलता विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को हुए मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। अब इन सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना क्षेत्र कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर है। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय मौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर सहित कई राज्यों में कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. In West Bengal, nearly 90%

कार्यक्रम गीत सुहाने और संग हूं मैं श्रेयसी इस गाने के नजराने के साथ। तो इसी तरह हम अपने इस गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और फिर छेड़ते हैं वो रात गीतों वाली।

खुशबू फिल्म का ये प्यारा सा नगमा आपने अभी सुना दोस्तों, आशा भोसले की आवाज़ में बोल सजाए गुलजार ने और म्यूजिक दिया आर डी बर्मन साहब ने। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने संग, हूँ मैं श्रेयसी और पूरी कोशिश है कि आपको एक से एक प्यारे सुहाने गीतों का संकलन यहाँ मिल सके। बढ़ते हैं अब अपने इस अगले गीत की तरफ।

देश परदेश फिल्म से ये गीत हमने लिया दोस्तों, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, बोल सजाए अमित खन्ना ने और संगीत दिया राजेश रोशन ने। जब हम बात करते हैं किसी प्यारे, किसी बड़े ही दिल को छू जाने वाले नगमे की, तो कहीं ना कहीं वो नगमा हमारे किसी पुरानी यादों के झरोखों से होकर गुजर जाता है और फिर बस दिल यूं ही कह उठता है, बेखुदी कहाँ ले गई हमको, बेखुदी कहाँ ले गई हमको, देर से इंतजार है अपना, रोते फिरते हैं सारी सारी रात, अब यही रोजगार है अपना। बढ़ते हैं अब हम इस अगले गीत की तरफ। फिल्म साथ साथ से ये गीत लिया हमने, आवाज है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की, बोल सजाए जावेद अख्तर ने और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने।

प्यार मोहब्बत जब अपना सही रूप ले लेता है, जब प्यारा सा दिल एक सही नाम पे आ जाता है, एक सही पहचान में आ जाता है, तो एक प्यारा सा घर यूं ही बसता जाता है। बिक जाते हैं यहां चंद सिक्कों के लिए लोग, बिक जाते हैं यहां चंद सिक्कों के लिए लोग, चीखता हुआ उनका जमीर देखता रहता है। तख्त पे बैठा हुआ वो मीर, तख्त पे बैठा हुआ वो मीर, रोज रहता है परेशान, रोज झूमता हुआ एक मस्त फकीर देखता रहता है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म हीरा पन्ना से ये नगमा हमने सुना। बोल सजाए थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया आरडी बर्मन साहब ने। आनंद बख्शी जी का ही एक और प्यारा सा गीत मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। फिल्म सुहाग का ये गीत है। बोल आवाजें हैं शैलेंद्र, आशा भोसले और रफी साहब की, और गीत संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनते हैं ये गीत।

फिल्म उमराव जान से ये गीत अभी आपने सुना दोस्तों, आशा भोसले की आवाज, खयाम के सजाया संगीत और बोल शहरयार के। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने, संग हूं मैं श्रेयसी और गीतों का सिलसिला एफएम गोल्ड पर यूं ही जारी है।

और इस गीत के साथ दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने को हमें देना होगा विराम। जल्द आप सुनेंगे समाचार और समाचारों के पार फिर से मैं श्रेयसी जुड़ूंगी आपके साथ। धन्यवाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक बूथ भी शामिल है उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरों की जगह वोट डालते हुए देखा गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, बिहार, पंजाब में अगले 2 दिनों तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Paschim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल कार्यक्रम रात सुरमई लेकर आपके संग हूं मैं श्रेयसी। तो आइए इस रात को बेहतरीन बनाएं कुछ बेहतरीन गीतों के संग। शुरुआत करते हैं हम इस गीत से, फिल्म मन मंदिर का ये नगमा किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में बोल सजाए हैं राजेंद्र किशन ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये गीत भी कितने अजीब होते हैं ना। कुछ गीत हमें किसी यादों में ले जाते हैं तो कुछ गीत हमें फ्यूचर प्लानिंग में लगा देते हैं। इसी तरह से कई सारे गीत हमें किसी के करीब भी होने का एहसास कराते हैं। कभी लोग पास होकर भी अजनबी लगते हैं और कभी अजनबी भी अपने से करीब लगते हैं। जिंदगी की यही सबसे अजीब सच्चाई है, रिश्ते खून से नहीं एहसास से जुड़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अब अपने इस अगले गीत की तरफ।

गाना मेहंदी अली खान के सजाए बोल थे और संगीत मदन मोहन का। अगला नगमा आपके साथ साझा करने जा रही हूँ फिल्म पत्थर के सनम का। ये बेहतरीन गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, बोल सजाए हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये गीत ही तो हैं जो हमारे जज्बातों को शब्दों में पिरो करके और बस बयां कर जाते हैं। तेरी अहमियत बयां कर पाऊं इतनी मेरे शब्दों में बात नहीं, तेरी अहमियत बयां कर पाऊं इतनी मेरे शब्दों में बात नहीं, और तू रूह तक बसा है मेरे, तुझे मुझसे अलग कर पाना इतना आसान नहीं।

फिल्म अजनबी का ये नगमा दोस्तों सुना आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के सजाए बोल और संगीत आर डी बर्मन साहब का। अगला गाना जो आपके साथ साझा कर रही हूँ, दाग फिल्म से लिया हमने किशोर कुमार की आवाज़ और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल हैं साहिर लुधियानवी के।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म ज्वेल थीफ का ये नगमा आपने सुना दोस्तों। बोल सजाए मजरू सुल्तानपुरी के और म्यूजिक दिया है एसडी बर्मन साहब ने। आइए अब चलें अगले गीत की तरफ। फिल्म वो कौन थी का ये नगमा आपके साथ साझा करने जा रही हूं। लता मंगेशकर की आवाज में है, बोल हैं अनजान के और संगीत दिया है आरडी बर्मन साहब ने।

किसी ने खूब कहा है, अधूरा ही सही पर हमने तुम्हें पाया तो है। अधूरा ही सही पर हमने तुम्हें पाया तो है, लिखने वाले ने लिखा नहीं किस्मत में, मगर जिंदगी ने हमें तुमसे मिलाया तो है।

ये गीत भी कितना अजीब है दोस्तों। कुछ कहने के लिए तो हमेशा ही हमारे पास एक से एक बेहतरीन गीत होते हैं, कुछ बयां करने के लिए, कुछ जताने के लिए, मोहब्बत दिखाने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए, हर चीज़ के लिए हमारी बॉलीवुड में एक से एक बेहतरीन नगमे हैं। अब ये गीत भी अपने आप में एक उम्दा मिसाल है उन फनकारों की, जो कुछ ना कहने पर भी, किसी जज्बात को ना बयां करने पर भी एक गीत बना बैठे। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का ये नगमा बोल सजाए गुलजार साहब ने, म्यूजिक दिया खयाम ने और आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। लता मंगेशकर का ही एक और नगमा आपके साथ साझा करने जा रही हूं, जो मेरे लिए काफी प्रिय है। फिल्म चुपके चुपके का ये गीत आनंद बख्शी के सजाए बोल और एसडी बर्मन साहब का संगीत। आइए सुनते हैं ये नगमा।

गीतों का सिलसिला बस इसी तरह जारी है। कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई और संग हूं मैं श्रेयसी। किसी से रूठो तो संभल कर रूठो। जी हाँ जनाब, किसी से रूठो तो जरा संभल कर रूठो। आजकल मनाने का नहीं छोड़ देने का रिवाज है।

फिल्म प्रेम पुजारी का ये नगमा दोस्तों अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, बोल सजाए नीरज ने और संगीत एसडी बर्मन साहब का। और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम रात सुरमई को हमें देना होगा विराम। जल्द मिलने के वादे के साथ मैं श्रेयसी लेती हूँ अब विदा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था।

0: से ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरी के जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र पर दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाला एलपीजी वाहक पोत एमटी सर्वशक्ति जिसमें भारत के लिए 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी लदा हुआ है होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 13 मई को इसके विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Pashim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the 2 assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 114 Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की सागर फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ।

रात की खामोशी में दिल एक ही सवाल दोहराता है, क्या ये धड़कनें सिर्फ मेरी हैं या इनमें तुम्हारा भी कोई राज बसता है। प्यार कभी पूछता नहीं, प्यार कभी पूछता नहीं, वो तो बस महसूस होता है।

मेरे हम सफर, ये रातें गवाह हैं हमारे साथ की। चांद भी ठहर जाता है जब तुम मेरे करीब होते हो। सफर लंबा हो या छोटा, सफर लंबा हो या छोटा, अगर साथ हो तुम तो हर रास्ता खूबसूरत लगता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है हम राही। वादा रहा सनम, ये दिल अब सिर्फ तुम्हारा है, हर खुशी हर ख्वाब अब तुमसे ही जुड़ा है, चाहे वक्त बदले या

हमें कितनी हसरत थी इन राहु में हर मोड़ पर बस उनका ही इंतजार था। और जब वो सामने आए तो लगा जैसे किस्मत खुद मुस्कुरा उठी हो।

मुलाकात जैसी अधूरी दुआ का पूरा हो जाना, और वो पल ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए धड़कन में बस से जाते हैं।

और इस समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कुछ ही देर के लिए आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरों की जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उसमें विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना कल सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का कार्य 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर स्वगणना सुविधा के माध्यम से इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Renu Kataria. In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Pashim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Keralam and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal, covering 152 seats, was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Falta Assembly constituency of South 24 Parganas district, West Bengal. Fresh polling will be held on 21st May 2026 across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes is scheduled for 24th May 2026. In its statement, the Commission explained

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और समय हो गया है अब प्रोग्राम अरुणिमा का। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की इस प्यारे गीत के साथ। गीत है फिल्म सफर से मुकेश की आवाज़ में, गीतकार इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म दिल तुझको दिया से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार राजेश रोशन और संगीतकार भी राजेश रोशन।

अभी गीत आपने सुना सहरा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार रामलाल और गीतकार जो हैं वो हैं हसरत जयपुरी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम अरुणिमा को। सुनते हैं अगला गीत फिल्म उपहार से मुकेश की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आपने गीत सुना फिल्म मौसम से लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज में, संगीतकार मदन मोहन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और प्रोग्राम है अरुणिमा। और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम अरुणिमा को, सुनते हैं अगला गीत फिल्म मेरा नाम जोकर से। जिसे अपनी आवाज से सजाया है मुकेश ने, और गीतकार और संगीतकार है शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी।

और छोड़ी जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। मैं आपसे मिलूंगी 5:10 पर लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी, और आप इंजॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को और कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये गीत है फिल्म सपने से, और इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है हिमा सरदेसाई ने और मलेशिया वासुदेरा ने। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार AR रहमान। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। मैं आपसे लेती हूँ अनुमति, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं उन पर दोबारा मतदान होगा। मतगणना 24 मई को होगी। आयोग ने बताया कि ये फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अनियमितताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर से इशारा किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों को उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पाया। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में घुसते और दूसरे की जगह वोट डालते हुए पाया गया। वीडियो फुटेज का गायब होना या उससे विसंगतियां मिलना पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 202 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।

0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सरकार ने रोहित जैन को रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का कार्य 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर स्वगणना सुविधा के माध्यम से इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Election Commission has ordered re-polling in all 285 polling stations, including auxiliary polling stations in Falta Assembly constituency of West Bengal. The Commission mentioned that there has been severe electoral offences and subversion of democratic process during the polling in a large number of polling stations in Falta Assembly constituency on Wednesday. Fresh poll will be held in all polling stations on 21st of this month from 7 a.m. to 6 p.m. Counting of votes will take place on 24th May. In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held yesterday across 15 booths in South 24 Parganas district. Re-polling remained largely peaceful across the two assembly segments. The re-polling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held tomorrow. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Joymalya Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for the Trinamool Congress, which had challenged the move. The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG for admission to undergraduate medical education will be held today. The examination will begin at 2 p.m. and will conclude by 5 p.m. According to the NEET's information bulletin, last entry to the examination center will be allowed till 1:30 p.m. The NEET UG is being conducted by National Testing Agency since 2019 for admission to the undergraduate medical education with the approval of the

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत कर दें प्रोग्राम भोर सुहानी की इस प्यारे से भजन के साथ।

जीवन में कभी धूप है तो कभी छांव है, और उस धूप और छांव में हमें वो पल ढूंढना है जिसमें नए तराने छुपे हों, जिसमें जीवन के परेशानियां, जीवन की दुख तकलीफ से निकलने का तरीका छुपा हो।

आजकल की भागदौड़ में खुद को कभी खोना नहीं है, अपने सपनों से कभी समझौता भी नहीं करना है। नई सुबह में नए सपने, और जो सपने रह गए हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करनी है।